मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम भी 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर इस समय 6:00 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो

0: गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम ही देख सकते हैं देखा सकता है इस पर ये आकाश आगरा प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, हम जब भी श्री कृष्ण का नाम सुनते हैं तो हमारे हृदय में एक चित्र उभर आता है। सिर पर मोर के पंख का मुकुट, हाथ में बंसी, पीले वस्त्र और मुखक मुस्कान, ऐसा रूप है हमारे कृष्ण कन्हैया का।

0: दिल से।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे सुमन कल्याणपुर, पंडित भीमसेन जोशी और साथियों के।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं प्लेटो के विचार।
3: कल्पना करो कि पृथ्वी की सतह के नीचे एक गुफा है, उसके ऊपर एक खुला मुहाना है जिसमें प्रकाश दाखिल होकर सारी गुफा को प्रकाशित करता है। गुफा में जो मनुष्य हैं, वो जन्म से वहीं रह रहे हैं और शरीर के जकड़े होने के कारण पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, केवल सामने ही देख सकते हैं। उनके ऊपर और पीछे कुछ दूर अग्नि जल रही है। अग्नि और गुफा में रहने वाले कैदियों के बीच में एक ऊंची दीवार है, सामने एक नीची दीवार है जिस पर उन लोगों के चित्र पड़ते हैं जो ऊंची दीवार के साथ साथ चल रहे हैं। उनमें कुछ बोलते हैं, कुछ चुप हैं। ये भी कल्पना करो कि गुफा में गूंज होती है। कैदी दीवार के साथ आने जाने वालों को देखते नहीं न

0: सकते हैं। वो उन चित्रों को जो नीचे दीवार पर पड़ते हैं देखते हैं और भ्रम में उन्हें वास्तविक मनुष्य समझते हैं, गूंज सुनते हैं और उसे काल्पनिक मनुष्यों की आवाज समझते हैं। इन कैदियों की स्थिति शोचनीय है। वो असत की दुनिया में रहते हैं और उसे सत समझते हैं। साधारण मनुष्य जीवन भर छाया को वास्तविक सत्ता समझते रहते हैं और अपने अज्ञान में ही संतुष्ट रहते हैं। तत्वविद पुरुष को इस अज्ञान गुहा से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। पहले तो प्रकाश की अधिकता के कारण उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और उसे कुछ देखता ही नहीं। प्रकाश का अभाव और प्रकाश की अधिकता दोनों ही अंधा कर देते हैं। दार्शनिक नई दुनिया में अपने आप को स्थिर करने लगता है। पहले सूर्य के प्रकाश से अन्य प्रकाशित पदार्थों को देखता है, सूर्य को जल में देखता है और अंत में स्वयं सूर्य को, जो सारे प्रकाश का स्रोत है, साक्षात देखने के योग्य हो जाता है। ये सूर्य परमात्मा है। दृष्टि जगत में प्राकृत पदार्थों के साथ चेतन जीव भी विद्यमान है। जिस तरह मानव शरीर में जीवात्मा क्रिया कर रहा है, उसी तरह सारे जगत में भी विश्वात्मा क्रिया कर रहा है। मनुष्य की तरह सारा संसार भी जीवित है। मैं अपने मानसिक जीवन में तीन अंश देखता हूं। प्रथम तो भोग प्रवृत्तियां हैं, जिनका निवास स्थान कमर में है। इनके अतिरिक्त साहस और अन्य श्रेष्ठ उत्तेजन है, जिनका निवास स्थान हृदय है। ये दोनों अंश मनुष्यों और पशु पक्षियों में एक समान पाए जाते हैं। मनुष्य का विशेष गुण बुद्धि है। बुद्धि से ही मनुष्य प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तीन अंशों में केवल बुद्धि नित्य और अमर है, शेष दोनों अंश मरते हैं। प्लेटो के विचार में सृष्टि रचना एक सृष्टा की क्रिया है। सृष्टा प्रकृति को प्रत्ययों का रूप देता है। ऐसी क्रिया के पहले प्रकृति आकार रहित अभेद होती है। प्लेटो ने ज्ञान के तीन स्तर माने। सबसे निचले स्तर पर विशेष पदार्थों का इंद्रिय जन्य ज्ञान है। ऐसे ज्ञान में सामान्यतः का अंश नहीं होता। जो पदार्थ मुझे हरा दिखाई देता है, वही दूसरे को लाल दिखाई देता है और तीसरे को रंग विहीन दिखाई देता है। पदार्थों के रूप, उनके परिमाण आदि की बाबत भी ऐसा ही भेद होता है। प्लेटो के ख्याल में ऐसा बोध ज्ञान कहलाने का पात्र ही नहीं, इसका पद व्यक्ति की सम्मति का है। इसके ऊपर के स्तर का ज्ञान रेखा गणित में दिखाई देता है। हम एक त्रिकोण की हालत में सिद्ध करते हैं कि उसकी कोई दो भुजाएं तीसरी से बड़ी हैं और कहते हैं कि ये सभी त्रिकोणों की बाबत सत्य है। गणित के प्रमाणित सत्यों से भी ऊंचा स्तर तत्व ज्ञान का है, जिसमें हम सत को साक्षात देखते हैं। तत्व ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान कहलाने के योग्य है।
1: कार्यक्रम चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे प्लेटो के विचार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:45 पर कार्यक्रम खेती की पाती में सुनी जा सकेगी कंपोस्ट की उपयोगिता के विषय में डॉ. एम. सी. अग्रवाल की वार्ता।

मुस्कान। 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर तिरुपति नाथ ग्लूकोमा के कारण और निवारण के विषय में जानकारी देंगे। कृष्णा कुमारी माथुर के गाय लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर। प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा पंडित विश्वनाथ का राग ललित में ख्याल गायन। 11:00 आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ के बारे में और सुनवाएंगे उनकी ही फिल्मों के कुछ गीत।

समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ। चर्चा का विषय होगा कृषि के लिए जैव विविधता जरूरी। 12:00 सुनी का प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में आप सुनेंगे मयूरी शर्मा की वार्ता, जिसका विषय होगा महिलाओं के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से करियर बनाने के अवसर। इसी कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा सुरक्षित और संवेदनशील समाज का निर्माण आवश्यक है।

गौरी खन्ना की गायकी की तौर भजन हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर। दिन में 3:30 पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के अंतर्गत आप सुनेंगे स्वस्थ भारत निर्माण में चिकित्सकों की भूमिका के विषय में डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी से श्री अनिंद्र सिंह की बातचीत। हमारी सांध्यकालीन सभा में फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा 5:10 पर। हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी में 5:30 पर सुनी जा सकेगी वार्ता जिसका विषय होगा समर्पण और सांप्रदायिक सौहार्द के अग्रदूत देशबंधु चितरंजन दास। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत। हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विषय में। क्वेस्ट वर्ल्ड के तहत हम जानकारी देंगे वैश्विक डिजिटल व्यापार व्यवस्था के विषय में। 6:00 ग्रामीण कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी बोगन बेलिया घरेलू बागिशान। इस विषय पर डॉ मुकुल पंड्या से डॉ ब्रजेंद्र नारायण की बातचीत। इसी कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ चर्चा का विषय होगा आधुनिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य। साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा लोकतंत्र की मजबूती में न्यायपालिका की भूमिका के विषय में डॉ सुरेंद्र पाल सिंह की वार्ता। और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉ सत्यभान शर्मा का राग मल्हार में धमार गायन। श्रोताओं अभी आप हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्रीराम चरित मानस गान।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद

विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देखाने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्रीराम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थी शोभना जोशी। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए आपको सुनवाते हैं कंपोस्ट की उपयोगिता के विषय में डॉक्टर एमसी अग्रवाल की वार्ता।
1: पौधों का भोजन 20 सरल पदार्थों से बना होता है, जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की पूर्ति जल एवं वायु से होती है तथा से 17 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, सोडियम, कोबाल्ट आदि के लिए पौधे भूमि पर निर्भर करते हैं। विभिन्न फसलों हेतु इन तत्वों की अलग अलग मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु प्रत्येक तत्व पौधों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना दूसरे तत्व। जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अधिक उपजदायी फसलों के चलन तथा फसल सघनता वृद्धि के कारण इन तत्वों का और अधिक मात्रा में भूमि से दोहन हो रहा है। इससे भूमि में उनकी मात्रा में लगातार कमी होती जाती है। जीवांश खादों जैसे गोबर की खाद,

कंपोस्ट खाद जल में सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं बहुत कम मात्रा में प्रयोग की जा रही है, तथा खेती रसायनिक खादों उर्वरकों जल में एक या दो तत्व ही पाए जाते हैं पर आधारित है। फलस्वरूप अन्य पोषक तत्व की भूमि में कमी होती जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि इन तत्वों के आपसी संतुलन बिगड़ जाता है। इस प्रकार भूमि का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तथा मनुष्य की तरह मिट्टी भी बीमार हो जाती है, जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता प्रभावित होती है। पुनः इन उर्वरकों से किसी तत्व की अधिक मात्रा होने पर दूसरे तत्व की उपलब्धता कम हो जाती है, जिसके कारण भी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए डीएपी अधिक मात्रा में प्रयोग करने से जस्ता की कमी हो जाती है, जिससे उत्पादन में जस्ता की कमी के कारण गिरावट आती है। यदि हम भूमि परीक्षण के आंकड़ों का विवेचन करें, उनसे स्पष्ट है कि यहाँ के भूमियों में जीवांश का स्तर 0.02 से लेकर 0.4% के ही बीच है। एक स्वस्थ मिट्टी में जीवांश की मात्रा 0.5% से अधिक होनी चाहिए। यहाँ की भूमियों में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की पहले से ही कमी थी, परंतु पोटेशियम जो कि यहाँ की भूमियों में पर्याप्त मात्रा में था की मात्रा में भी लगातार कमी आ रही है। भूमियों में इसका स्तर उच्च से मध्यम तक आ पहुँचा है। इसी प्रकार धान गेहूं के खेतों में जस्ता, तिलहन के खेतों में गंधक तथा कहीं कहीं लोहा की भी कमी आ रही है। इस प्रकार उर्वरक आधारित कृषि में अन्य तत्वों के स्तर में कमी आ रही है जो पोषक तत्व असंतुलन को बढ़ावा दे रहे हैं। पुनः यदि जीवांश खाद की तरफ दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होगा कि अधिकांश गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में हो रहा है तथा मात्र वर्षा के दिनों में ही गोबर खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं का अवशेष चारा, फार्म तथा घर के अवशेष पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनकी कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है। इस प्रकार कंपोस्ट खाद की पोषक तत्वों की पूर्ति तथा पोषक तत्व असंतुलन दूर करने का महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। आज के समय कंपोस्ट की क्या उपयोगिता है? उर्वरकों के लगातार प्रयोग से भूमि की जल रोकने की क्षमता में कमी आती है। कंपोस्ट खाद के प्रयोग से जमीन की जल रोकने की क्षमता बढ़ती है। पौधों की वृद्धि जड़ क्षेत्र में उपलब्ध नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार अधिक उत्पादन होना संभव होगा। कंपोस्ट खाद के द्वारा मिट्टी में दानेदार कड़ी रचना विकसित होती है। ऐसी भूमियों में जल तथा वायु का उचित संचार होने से पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। कंपोस्ट खाद के प्रयोग से भूमि में जीवधारियों की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, विशेषकर केंचुए जो मिट्टी में कई गुना नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं कैल्शियम आदि तत्वों की वृद्धि करते हैं। कंपोस्ट खाद में सभी तत्वों की पूर्ति होने से उनका पारस्परिक असंतुलन दूर होगा तथा मिट्टी के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा में भी वृद्धि होगी। उर्वरकों में उपलब्ध नाइट्रेट तथा फास्फेट जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न करते हैं। कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन तथा फास्फेट धीरे धीरे प्राप्त होती है, अतः किसी समय भूमि में इनकी अधिक घुलनशील मात्रा न होने के कारण प्रदूषण में भी गिरावट आएगी। उर्वरकों के लगातार उपयोग से मृदा प्रतिक्रिया पीएच मान क्षारीयता की ओर बढ़ रहा है। जीवांशित कंपोस्ट खाद में पीएच में वृद्धि को रोकने का गुण होता है, जिसके कारण पोषक तत्वों की उपलब्धता तथा लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता अप्रभावित रहती है। उर्वरकों के लगातार उपयोग से भूमि की भौतिक दशा खराब होती है। कंपोस्ट खाद भूमि की भौतिक दशा को सुधारती है। कंपोस्ट पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के संरक्षण में सहायक है। कंपोस्ट खाद में पोषक तत्व धीरे धीरे पौधों को प्राप्त होते हैं। किसी समय पोषक तत्वों के अधिक मात्रा न होने से रिसाव द्वारा उनकी कम हानि होती है। वर्तमान समय में अवशेष पदार्थों का निस्तारण प्रमुख समस्या है। कंपोस्ट खाद में अवशेष पदार्थों के प्रयोग होने से इनके निस्तारण में भी की भी समस्या नहीं रहती है। अब हम कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। इस विधि के अंतर्गत खरपतवार, भूसा, फसलों, डंठल, चारे आदि के अवशेष से कंपोस्ट खाद को

0: क्या कर सकते हैं। फार्म के अवशेष पदार्थों से कंपोस्ट बनाने के लिए 15 से 20 फीट लंबा, 5 से 6 फीट चौड़ा तथा 3 से 3.5 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। फार्म के एकत्र अवशेष पदार्थ को भली भांत मिलाकर इसकी 1 फीट मोटी परत बिछाई जाती है। इसके ऊपर गोबर तथा पानी का घोल या मिट्टी तथा पानी का घोल छिड़क कर नम बनाया जाता है। यह क्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक जमीन की सतह से इसकी ऊंचाई 1.5 फीट से 2 फीट तक न हो जाए। फिर इस ढेर को मिट्टी की एक पतली परत से ढक देते हैं। 3 महीने तक सड़ाने के पश्चात इसको गड्ढे से बाहर निकालकर जमीन के ऊपर एक ढेर के रूप में लगाते हैं। पानी से नम बनाने के बाद मिट्टी की परत से ढक देते हैं। 1 या 2 महीने के बाद खाद प्रयोग के लिए तैयार हो जाती है। कंपोस्ट में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा अवशेष पदार्थों के आधार पर इसमें उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। औसतन इस कंपोस्ट में 0.5% नाइट्रोजन, 0.15% फॉस्फोरस तथा 0.5% पोटाश पाई जाती है।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुनी कंपोस्ट की उपयोगिता के विषय में डॉक्टर एमसी अग्रवाल की वार्ता। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनेगा हिंदी में समाचार और उसके बाद सुने जा सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। केंद्रीय मंत्रिमंडलेन भारतस्य सेमीकंडक्टर इति परिकल्पना निर्माण परिवेशस्य सुदृढ़ीकरणाय पंचशताधिक सप्तविंशति सहस्राधिकैक लक्ष कोटि रूप्यकाणां विनियोगेन सेमीकॉन 2.0 इत्येषा योजना अनुमोदिता। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः एतान् मंत्रिमंडल निर्णयान् उद्घोषितवान्। असौ अवदत् यत् सेमीकॉन 1.0 इति योजनायाः सफलताम् अनुवर्तमाना एषा योजना भारतं वैश्विकं सेमीकंडक्टर इति केन्द्रं स्थापयितुं प्रशासनस्य दृढ़ प्रतिबद्धतां द्योतयति। मंत्रिमंडलेन पंचशताधिक द्विषष्टि सहस्र कोटि रूप्यकाणां विनियोगेन चलदूरभाष विनिर्माण योजना अपि अनुमोदिता। एवमेव उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी नगरे मार्ग संयोजनस्य

0: सुदृढ़ीकरणाय यातायातावरोधस्य न्यूनीकरणाय यात्रासमयस्य च संक्षेपणाय द्वे उन्नतमार्ग परियोजने अपि अनुमोदिते। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः विश्वासं व्यक्तवान् यत् भारत यूरोपीय संघयोः व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनेन द्वयोः पक्षयोः सहकार्यम् अधिकं सुदृढं भविष्यति। ब्रुसेल्स नगरे सम्पन्नस्य तृतीय भारत यूरोप संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषदः उपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् असौ अवदत् यत् भारत यूरोपीय संघयोः मध्ये मुक्त व्यापार सन्धिः सुरक्षा रक्षा सहकारः अथ गमनागमन रूपरेखा इत्येतेषां माध्यमेन विकसितः सहयोगः अग्रे अपि प्रवर्धिष्यते।
1: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
0: केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त व्यापार सन्धिं निष्पक्षं न्यायसंगतं संतुलितं च निरूप्य अवदत् यत् एषः सन्धिः उभय देशयोः सर्वेषां क्षेत्राणां कृते परस्पर हितकरः भविष्यति। भारतीय निर्वाचनायोगेन पंजाब कर्नाटक तेलंगाना दिल्ली इत्येतेषु नगरेषु प्रचलितस्य मतदात्री सूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य समय सीमा विस्तारितास्ति। दिल्ली कर्णाटकयोः मतदान केन्द्र स्तरीयाधिकारिभिः प्रतिगृहं गत्वा क्रियमाणं सत्यापन कार्यं यत् अस्य मासस्य नवविंशति दिनांक पर्यन्तं निर्धारितमासीत् अधुना आगामी मासस्य अष्टम दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। पंजाब तेलंगाना इत्येतयोः तु प्रतिगृहं गत्वा सत्यापन कार्यं आगामी मासस्य तृतीय दिनांक पर्यन्तं एव अनुवर्तिष्यते। विश्वविख्याता पुरी रथयात्रा अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते। अस्याम् वार्षिक रथयात्रायाम् जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति। फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपांत्य चक्रे अर्जेंटीना दलम् अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम अकरोत्। जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम् स्पेन दलम् सम्मुखी करिष्यति। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये त्रिदिवसीय एक दिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और विनिर्माण के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।
3: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू

0: गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की क्षमता मजबूत करेगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में कल आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, लेकिन अब ये घटकर 12 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। श्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री यादव भारत और विदेशों के प्रमुख वस्त्र निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से बातचीत करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पेविलियन का भी अवलोकन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मजबूत गति मिलेगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा की जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद की एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,770 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ये आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पासधारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। यात्रा का समापन श्री गुंडिचा मंदिर में होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. The minister said cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub. The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana in Chandigarh and Punjab tomorrow. The

0: या कह सकते हैं कि मुख्य कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बीमारी आंख के अंदर हो सकती है, जैसे कि परिवार में अतीत में किसी को काला पानी रहा हो, ऐसे परिवार के अंदर ये बीमारी वंशानुगत चलती रहती है। 40 की उम्र के बाद अमूमन जो एशियन पॉपुलेशन यानी कि जो यहाँ की जनता है, एशिया की जनता है, उसके अंदर देखा गया कि 40 या उससे ज़्यादा उम्र में ये बीमारी वास्तविक तौर पर पाई जाती है। किसी को बहुत ज़्यादा आँख के अंदर नंबर हो, चाहे वो मायोपिया यानी माइनस का नंबर हो या वो प्लस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया हो, ऐसे भी मरीजों को काला पानी होने की संभावना अधिक होती है। जिन मरीजों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर यानी कि मधुमेह और हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उनके अंदर भी काला पानी ज़्यादातर पाया जाता है। किसी भी आँख में जिसमें कभी कोई चोट लगी हो, ऐसी आँखें भी काले पानी में आगे चल के परिवर्तित हो सकती हैं। तो अगर हम अन्य शब्दों में कहना चाहें तो काला पानी एक गुप्त हत्यारा है, क्योंकि अधिकांश रोगियों को प्रारंभिक तौर पर कोई भी लक्षण महसूस नहीं होते हैं, जिसके कारण वो इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि काला पानी या ग्लोकोमा चुपचाप रोगी को स्थायी अंधेपन की ओर धकेल देता है। ये एक दीमक की तरह नजर को धीमे धीमे खत्म करता रहता है और मरीज को पता भी नहीं चलता। तो अब समझने की बात यह है कि हम इस बीमारी के बारे में कैसे पता कर पाए कि ये बीमारी हमें है या नहीं है। यही चीज को जानने के लिए हमें अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ को समय समय पर दिखाना चाहिए और आंख की पूर्ण तरीके से पूर्ण जांच करानी चाहिए। और अगर जो नेत्र चिकित्सक आपका परीक्षण कर रहा है उसको ऐसा कोई भी लक्षण आपकी आंख में नजर आता है जो कि काले पानी की तरफ या ग्लोकोमा की तरफ या संबल वायु की तरफ इशारा करता है, तो उस नेत्र परीक्षक के द्वारा बताए गए वे जो विशेष परीक्षण होते हैं, कुछ विशेष जांचें होती हैं, उनको कराया जाना बहुत जरूरी है, जिससे कि इस बीमारी का सही तौर पे क्या कारण है, क्यों ये आंख में हो रहा है और हमें उसके इलाज में क्या क्या करना है, इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मैं फिर ये बताना चाहूंगा कि नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा बताई गई जांचें कराना जरूरी होता है, जिससे कि इस बीमारी की रोकथाम में उस नेत्र विशेषज्ञ को और सफलता मिल सके। प्रारंभिक तौर पे जब काले पानी का पता चलता है तो या तो मरीज को वो काला पानी बहुत शुरुआती दौर में होता है या हो सकता है कि काफी आगे बीमारी बढ़ चुकी हो। तो बीमारी के स्टेज यानी कि बीमारी कितनी गंभीर है, उस गंभीरता के ऊपर ही उसका इलाज निर्भर करता है। अगर आपका काला पानी के बारे में पता चल जाना, समझ लीजिए कि अगर काला पानी का पता चल जाता है कि आपको बहुत जल्दी शुरुआती स्टेज में पता चल गया कि बहुत अभी गंभीर नहीं है, अभी शुरू ही हुई है बीमारी, तो इस बीमारी से आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। परंतु अगर आपका नुकसान या आपकी आंख का नुकसान काफी हद तक बढ़ चुका है और आपको बीमारी का पता अंतिम क्षणों में चलता है, यानी कि बीमारी काफी गंभीर हो चुकी है, उसने काफी नुकसान आपको पहुंचा दिया है, और तब हमें पता चल पाता है कि हाँ, अब हमारी आंख में काला पानी है और इससे नुकसान काफी हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में जो नुकसान हो चुका है वो तो हमेशा के लिए हो गया। आगे आंख के अंदर जितनी भी ताकत है उसे बचाने का प्रयास करना ही इसका इलाज है। अन्य शब्दों में काले पानी का इलाज आगे होने वाले नुकसान से बचाने के लिए होता है। जो नुकसान हो गया उसको वापस पूर्ण रूप से नॉर्मल नहीं किया जा सकता। काला पानी या ग्लोकोमा, इसका उपचार दवाइयों के रूप में है, जो कि बूंद की दवाइयां होती हैं, खाने की दवाइयां होती हैं, कुछ विशेष प्रकार के लेजर होते हैं जो आंख की सिकाई होती है, जिसको हम और साधारण भाषा में आंख की सिकाई बोलते हैं। और अगर यह सभी प्रयास हमारे सफल नहीं हो पाते हैं या हमें जितना असर उनका चाहिए उतना असर नहीं मिल पाता है, तो हमें फिर काले पानी का ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है। ऑपरेशन काले पानी का आखिरी इलाज है, और जिनके अंदर अगर काले पानी का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो ऐसी आंखों में अंधेपन की तरफ जाते हुए कदमों को रोक पाना काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, सूर्योदय सुनाई नहीं देता है, खूबसूरती जो सूर्योदय की है वो सिर्फ देखी जा सकती है, तो इस चीज को समझना जरूरी है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी आंखों की रोशनी को बचाए रखने के लिए समय से नेत्र परीक्षण कराते रहें, समय से अपनी आंखों का अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराते रहें। कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी और काला पानी जैसी बीमारी, इनका इलाज हमें जिंदगी भर लेना होता है, तो उस लय को बीच में न तोड़ें और अपने जीवन को रोशनी से भरपूर रखें। अपने जीवन में अपनी आंखों की जो कीमती कहेंगे बहुमूल्य गिफ्ट भगवान ने जो आपको दी है उसे बचा के रखें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी ग्लूकोमा के कारण और निवारण के विषय में डॉक्टर तिरुपति नाथ की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वर में गीतेश गान।

0: पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ लागू, प्रदेश के लेदर और फुटवियर सहित दूसरे उत्पादों के लिए मिलेगा बड़ा बाजार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक पूरी हुई। समिति को अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिले कई अहम सुझाव। और वाराणसी में पंच सम्मेलन का आयोजन आज, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के करीब 500 ग्राम प्रधान करेंगे प्रतिभाग। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए वरुणा नदी के किनारे 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को कल मंजूरी दे दी। 43 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 10,958

0: करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये वाराणसी के प्रमुख स्थलों को कनेक्ट करेगा।
1: एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए जो बहुत पुराने शहर हैं उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल 7 महत्वपूर्ण फैसलों को स्वीकृति दी गई। श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने काशी में कंप्लीट 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी। गंगा किनारे वाला ये कॉरिडोर 46 किलोमीटर लंबा होगा जिस पर 14,448 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये दोनों परियोजनाएं शहरों में विकास का पूरे देश में मॉडल बनेंगी।
1: गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: केंद्रीय कैबिनेट ने के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: कैबिनेट ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सेमिकॉन 2.0 को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 की राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी स्वीकृति दी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वाराणसी के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भव्य काशी सुगम काशी को समर्पित ये परियोजनाएं श्रद्धालुओं की यात्रा को अधिक सुगम बनाएंगी, यातायात को नई गति देंगी और पर्यटन व्यापार तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही ये कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। कल देश भर के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर यूके को जाने वाले सामानों के लिए एक साथ फ्लैग ऑफ सेरेमनी का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इसी क्रम में कानपुर नगर में भी फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित हुआ। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस समझौते से स्थानीय निर्यातकों को लेदर और फुटवेयर सहित दूसरे उत्पादों के लिए बड़ा बाजार मिलेगा।
3: अगर हम लेदर की बात करें तो अभी तक लेदर के उत्पादों में या फुटवेयर में या तमाम अन्य उत्पादों में 16% का शुल्क लगाया जाता था, ये शुल्क 0 हो जाएगा। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, अपैरल्स की बात करें, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो ये भी शुल्क 0 हो जाएगा, जिसमें 12% का शुल्क लगाया जाता था। और अब लगातार हमारा जो एक्सपोर्ट है यूके को वो बढ़ेगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस 2026 पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रोजगार और उद्यमिता से आत्मनिर्भर बने युवाओं को सम्मानित किया। समारोह में केंद्र सरकार के 12 वर्षों में प्रदेश में हुए कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका कौशलम का विमोचन भी किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार कौशल विकास का मंत्रालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
4: सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है। यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक कल संपन्न।

0: हो गई। अंतिम दिन समिति ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों, निदेशकों और विधि एवं राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ बात की। समिति ने प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ भी संवाद किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से कई अहम सुझाव भी मिले।
1: 10 राज्यों में हम जा चुके हैं, जिसको हम कह सकते हैं काफी लोगों से सुनवाई, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को, हर तरह के स्टेक होल्डर्स को सुना। हम कमिटी इससे बहुत बेनिफिट हुई, कई ग्रेट इनपुट हमें मिले। पूरा टीम रूप में हम काम कर रहे हैं कि हम सब अपनी अपनी बात कहते हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा होगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, वो हम पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन देंगे।
0: प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में लापरवाही बरतने के आरोप में बिजनौर जिले के 16 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना एजेंसी साचीज के 3 सदस्यीय विशेष दल ने बिजनौर के 20 अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया था। साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 16 अस्पतालों में निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हुए पाया गया। इनमें से 6 अस्पतालों को निलंबन नोटिस जारी किए गए हैं और उनके भुगतान रोकने के आदेश दिए गए हैं। बाकी 10 अस्पतालों को अनियमितताओं के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज पंच सम्मेलन का आयोजन होगा। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के करीब 500 ग्राम प्रधान शामिल होंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाना है। साथ ही इस सम्मेलन के जरिए VBG रामजी अधिनियम 2025 के प्रावधानों और उद्देश्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों की समझ को भी मजबूत किया जाएगा। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बारिश के कारण बाराबंकी में घाघरा, कानपुर में गंगा और कुशीनगर में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। वहीं देवरिया में भी सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आज कहीं कहीं बारिश, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने, गर्मी और उमस भरी स्थितियां बने रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फैसले का स्वागत। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ लागू। प्रदेश के लेदर और फुटवेयर सहित दूसरे उत्पादों के लिए मिलेगा बड़ा बाजार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक पूरी हुई। समिति को अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिले कई अहम सुझाव। और वाराणसी में पंच सम्मेलन का आयोजन आज। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के करीब 500 ग्राम प्रधान करेंगे प्रतिभाग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य

0: आरोग्य को हानि पहुंचाए।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। और अब शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला। श्रोताओं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2026 की काउंसलिंग प्रक्रिया का अंतिम तीसरा चरण आज से प्रारंभ होगा। जिन अभ्यर्थियों को अब तक सीट आवंटित नहीं हुई है उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस चरण की सीटों का आवंटन 20 जुलाई को किया जाएगा। इसके बाद केवल स्पेशल राउंड आयोजित होंगे जिनका कार्यक्रम भी तिथिवार घोषित किया गया है। तीसरे चरण की काउंसलिंग 16 से 19 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण, चॉइस फिलिंग और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर सकेंगी। 20 जुलाई को सीटों का आवंटन होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। और चौथे चरण की काउंसलिंग 27 से 29 जुलाई तक होगी, जबकि 30 जुलाई को सीटों का आवंटन होगा। श्रोताओं, अंतिम चरण की काउंसलिंग 6 से 10 अगस्त तक चलेगी और 11 अगस्त को अंतिम सीट आवंटन किया जाएगा और अंतिम तिथि के बाद किसी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

शुदा खेल निदेशालय की ओर से 21 और 22 जुलाई को सिद्धार्थनगर में प्रदेश स्तरीय महिला टेबल टेनिस और तैराकी प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगरा मंडल की टीम का चयन होना है। इसके लिए जिला स्तरीय ट्रायल 17 जुलाई को सुबह 11 बजे और मंडल स्तरीय ट्रायल्स 18 जुलाई को सुबह 11 बजे एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। ट्रायल में केवल वे बालिकाएं भाग ले सकती हैं जिनकी आयु 31 दिसंबर 2026 को 25 वर्ष से ज्यादा न हो। इच्छुक महिला खिलाड़ी 17 और 18 जुलाई को सुबह 11 बजे अपने आधार कार्ड के साथ एकलव्य स्टेडियम में संपर्क कर सकती हैं।

यूएमए स्नातक में दाखिले की प्रक्रिया का सबसे अहम चरण आज से शुरू होगा। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के तहत पहली सीट आवंटन सूची आज शाम 5 बजे जारी की जाएगी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा और उन्हें पता चल जाएगा कि किस कॉलेज और पाठ्यक्रम में उन्हें सीट मिली है। सीट आवंटित होने के बाद विद्यार्थियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी सीट स्वीकार करनी होगी। संबंधित कॉलेज दस्तावेज का सत्यापन करेगा। इसके बाद छात्र प्रवेश शुल्क जमा कर सकेंगे। फीस जमा होने के बाद विद्यार्थियों के पास दो विकल्प होंगे। अगर वे आवंटित कॉलेज और पाठ्यक्रम से संतुष्ट हैं तो सीट को फ्रीज कर अपना प्रवेश पक्का कर सकते हैं। वहीं बेहतर कॉलेज या पाठ्यक्रम की उम्मीद रखने वाले छात्र अपग्रेड या विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की वर्तमान सीट सुरक्षित रहेगी और अगले आवंटन चरण में उनकी उच्च वरीयताओं पर विचार किया जाएगा। इस वर्ष डीयू ने शुल्क की भुगतान प्रक्रिया को भी आसान बना दिया है। डीयू ने वर्चुअल वॉलेट सिस्टम लागू किया है। इसके तहत यदि किसी छात्र को अगले राउंड में बेहतर कॉलेज या पाठ्यक्रम आवंटित होता है तो पहले जमा की गई फीस स्वतः नई सीट पर समायोजित हो जाएगी। इससे विद्यार्थियों को बार बार पूरी फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रोताओं, डीयू का लक्ष्य 28 जुलाई तक दाखिले के शुरुआती चरण पूरे करके समय पर नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने का है। ऐसे में पहली आवंटन सूची लाखों अभ्यर्थियों के लिए उनके उच्च शिक्षा के सफर का

उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने स्कूल और शिक्षण संस्थानों में पढ़ रही दिव्यांग छात्राओं को निःशुल्क ई ट्राईसाइकिल देने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र की दिव्यांग छात्राएं जो किसी विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ रही हैं लाभ ले सकती हैं। पात्रता के लिए जरूरी है कि उनकी परिवार की आय गरीबी रेखा से नीचे हो और परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता ना हो। योजना में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20 दिव्यांग छात्राओं को ई ट्राईसाइकिल वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभिन्न दस्तावेज जरूरी हैं, जिनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, तहसील से जारी आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता दिखाते हुए 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, विद्यालय या शिक्षण संस्थान का अध्ययन प्रमाण पत्र का होना जरूरी है।

जो लोग रेल यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए कुछ सूचनाएं हैं। गाड़ी संख्या 17631 और 17632। नांदेड़ टनकपुर नांदेड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस का संचालन 12 जुलाई से शुरू हो चुका है। ये ट्रेन नांदेड़ से 12 जुलाई और टनकपुर से 14 जुलाई से चलना प्रारंभ हो गई है। ट्रेन नांदेड़ से हर रविवार रात 11:40 पर चलकर अगले दिन रात 9:50 पर आगरा कैंट और सुबह 5 बजे टनकपुर पहुंचेगी। श्रोताओं, इसके साथ साथ गाड़ी संख्या 6416761168 गाजियाबाद टुंडला ईएमयू का परिचालन 15 जुलाई से अस्थायी रूप से आगरा सिटी स्टेशन तक बढ़ा दिया गया है। ये ट्रेन गाजियाबाद से प्रातः 6:10 पर चलकर सुबह 11:25 पर टुंडला और 11:35 पर एतमादपुर, 12:13 पर यमुना ब्रिज और 12:45 पर आगरा सिटी पहुंचेगी। श्रोता, इसके साथ साथ गोरखपुर कैंट और उनौला सेक्शन में दोहरीकरण के कारण ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। खातीपुरा दरभंगा एक्सप्रेस 21 जुलाई को बाराबंकी, अयोध्या कैंट शाहगंज मऊ भटनी भावे कप्तानगंज के रास्ते चलेगी। इसी तरह मथुरा छपरा एक्सप्रेस 20 जुलाई को कानपुर सेंट्रल प्रयागराज प्रयागराज रामबाग बनारस वाराणसी भटनी और छपरा से चलेगी। इसके साथ साथ रेलवे ने गाड़ी संख्या 09452 गांधीधाम भागलपुर साप्ताहिक ट्रेन के फेरे बढ़ाने की भी घोषणा की है। गांधीधाम से ये ट्रेन हर शुक्रवार और भागलपुर से हर सोमवार को चलने वाली ट्रेन को पूर्व में 29 जून तक चलाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब गांधीधाम से 31 जुलाई और भागलपुर से 3 अगस्त तक इसके फेरे बढ़ाने की घोषणा की गई है।

0: 3 और 05184 आजमगढ़ बांद्रा टर्मिनस आजमगढ़ स्पेशल ट्रेन की भी घोषणा की है। ट्रेन आजमगढ़ से 18 जुलाई से 26 सितंबर तक प्रत्येक शनिवार को और बांद्रा टर्मिनस से 20 जुलाई से 28 सितंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। ट्रेन आजमगढ़ से शनिवार रात 10:30 पर चलकर रविवार दोपहर 12:45 पर ईदगाह जंक्शन और सोमवार सुबह 8:10 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से सोमवार सुबह 10:45 पर चलकर मंगलवार सुबह 8:30 पर ईदगाह जंक्शन और मंगलवार रात 12:25 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। कार्यक्रम आसपास में सूचनाएं यूं ही जारी रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आइए सुनते हैं ये गीत।
1: आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे।

0: सोचना यूं ही जारी रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आइए सुनते हैं ये गीत।
1: आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं, सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी।

भप भप आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हें इंजन, डब्बू तुम्हें कोयले का डिब्बा, टुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक लोहे की सड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान।

मंगल की हार, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, पटलिपट्टनम दिल्लीपट्टनम दिल्लीपट्टनम पटलिपट्टनम, उंगोल निर्दिगोल निर्दिगोल उंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। आइए अब आपको जानकारी दे दें कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में। ज्योति पुत्री ओमवीर निवासी सुखावली थाना अग्रावाद जनपद अलीगढ़ से दिनांक 17 जून 2026 से लापता है। ज्योति की उम्र 16 वर्ष कद 5 फुट और रंग गोरा है। गुमशुदगी के समय ज्योति ने काले रंग का सूट और सलवार पहनी हुई थी। ज्योति के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना अग्रावाद जनपद अलीगढ़ के पते पर सूचित करें। अलीगढ़ से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार नेहा पुत्री रामकिशन निवासी सुखावली थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ से दिनांक 11 जून 2026 से लापता है। नेहा की उम्र 17 वर्ष कद 5 फुट और रंग गोरा है। गुमशुदगी के समय नेहा ने हरे रंग का सूट और सलवार पहनी हुई थी। नेहा के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ के पते पर सूचित करें।

25 जून सन 2026 से लापता है। गौरी की उम्र 16 वर्ष, कद 5 फुट, चेहरा गोल और रंग गोरा है। गौरी के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़ के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

और अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। श्रोता, श्रम विभाग ने निर्माण श्रमिकों को रोजगार और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए BOCW डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप विकसित किया है। ये ऐप निर्माण श्रमिकों और नियोजकों के बीच एक आसान डिजिटल मंच बनेगा। श्रमिक इस ऐप पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं, वहीं बिल्डर, ठेकेदार और निर्माण एजेंसियां अपनी जरूरत के अनुसार पंजीकृत और प्रशिक्षित श्रमिकों को आसानी से ढूंढ सकेंगी। इस ऐप के जरिए श्रमिक अपनी उपलब्धता दर्ज कर सकेंगे और नियोजक सीधे उनसे संपर्क कर सकेंगे। इससे दोनों पक्षों को फायदा होगा, श्रमिकों को काम मिलने में आसानी होगी और नियोजकों को तुरंत के मुताबिक श्रमिक तुरंत उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अलावा श्रमिक ऐप से भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे।

एक अन्य सूचना के अनुसार गौरी पुत्री रवि कुमार निवासी पंचनगरी थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़ से दिनांक

शुदा प्रदेश में पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाने के लिए 22 जुलाई से 8 सितंबर तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण होगा। हर गांव के लिए अलग माइक्रो प्लान और दैनिक रूट चार्ट तैयार किया जाएगा ताकि कोई भी पशु टीकाकरण से वंचित ना हो। तो हम आपको पुनः बता दें, ये अभियान खुरपका मुंहपका रोग से बचाने का अभियान 22 जुलाई से 8 सितंबर तक चलाया जाएगा।

साथियों, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कल बूंद बूंद पानी के लिए तरसना न पड़े, तो आज से ही हमें जल बचाने का संकल्प लेना होगा। आज से भूजल सप्ताह मनाया जाएगा। तालाबों के पुनरुद्धार से लेकर शहर से गांव तक जल संरक्षण और जन जागरूकता का संकल्प गूंजेगा। 16 और 17 जुलाई को ग्राम पंचायत स्तर पर संगोष्ठियां होंगी। 18 और 19 जुलाई को विकास खंड और क्षेत्र पंचायत स्तर पर जल गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। 20 और 21 जुलाई को नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में जन सहभागिता से कार्यक्रम होंगे और 22 जुलाई को कलेक्ट्रेट पर सभी विभागों के समन्वय से बैठक और इसका समापन होगा।

कार्यक्रम में कुछ अन्य सूचनाएं भी हैं। जलापूर्ति बाधित होने पर टैंकर मंगाने के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800 270 2722 या कंट्रोल रूम का नंबर 8192095401 पर संपर्क कर सकते हैं। संबंधित क्षेत्र में पानी का टैंकर उपलब्ध कराया जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको ये नंबर पुनः नोट करवा देते हैं। नंबर नोट कीजिए, क्या नंबर अगर आपने नोट कर लिया है तो उसका मिलान कर लीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800 270 2722 और कंट्रोल रूम का दूसरा नंबर

जदों बलकेश्वर महादेव मंदिर से श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आज दोपहर निकलेगी, इसे लेकर भक्तों में अधिक उत्साह है। पूरे शहर में भक्ति की लहर छाई हुई है। इससे पूर्व बुधवार शाम कमलानगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर इस्कॉन की ओर से आयोजित इस महोत्सव में 56 भोग और भव्य फूल बंगला सजाया गया। इसमें पूरा मंदिर फूलों और सजावट से जगमगा उठा। श्री जगन्नाथ मंदिर में केले के तनों पर आकर्षक नक्काशी की गई। अशोक, आम और केले के पत्तों के साथ साथ बेला, मोगरा, गुलाब और कमल के फूलों से मंदिर को सजाया गया। झालरों की जगमगाती रोशनी और रंग बिरंगी सजावट ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। भगवान श्री जगन्नाथ जी हल्की बैगनी रंग की जरी वाली आकर्षक पोशाक पहने सिंहासन पर विराजमान थे, और इतना ही नहीं, उनके साथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम भी थे। भक्त इस अलौकिक दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए। इसके साथ साथ कीर्तन का भी आयोजन किया गया। हवेली संगीत के मधुर धुनों पर सूरदास, कुंभनदास और चतुर्भुज दास जैसे प्रसिद्ध कवियों के दोहे और पद गाए गए। करताल, पखावज और हारमोनियम की संगत से भक्त झूम उठे। पूरा वातावरण भक्ति से गूंज उठा। भगवान को 56 प्रकार की व्यंजनों का 56 भोग अर्पित किया गया। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आज दोपहर 2 बजे बलकेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होगा। नंदी घोष रथ पर विराजमान श्री जगन्नाथ जी सतरंगी पोशाक पहनकर भक्तों को दर्शन देंगे। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम नगर भ्रमण पर निकलेंगे। भक्त 100 मीटर लंबी रस्सी से रथ को हाथों से खींचकर श्री जगन्नाथ मंदिर तक लाएंगे। इस दौरान मंडल के विभिन्न इलाकों के साथ साथ देश विदेश से आए श्रद्धालु भी इसमें शामिल होंगे, और इस रथ यात्रा का समापन श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचने पर भव्य स्वागत के साथ होगा।

और इसी के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय प्रातः के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: बचाना है तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से। आकाशवाणी से समाचार
2: प्रभात के साथ मैं नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है।

0: अदर वन है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड, और एटीएमपी ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें चार बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा।

0: हैं। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर त्रिगुंडिका मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव तीन शानदार ढंग से सजाया गया रथ नंदीघोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
2: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमा सा चेहरा।
3: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
4: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
5: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले

0: क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: यूनियन कैबिनेट क्लियर्स 2 एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 25,000 करोड़ रुपीज फॉर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his 2 siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of 3-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 2 elevated highway projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved these projects to improve road connectivity and reduce congestion and travel time in Varanasi. The projects include a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road on hybrid annuity model. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the other project is related to the development of around 43-kilometre long, 6-lane and 4-lane elevated corridor along Varuna River Bank in Varanasi.

0: Ashwani News, Delhi.
1: And now moving on to the world of sports. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. The first half ended goalless, but Anthony Gordon scored the opening goal for England in the 55th minute. Argentina's Enzo Fernandez equalized in the 85th minute, and Lautaro Martinez struck in the 90th minute to complete a dramatic 2-1 comeback victory for Argentina. And in men's cricket, second one-day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
2: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed the India-UK historic FTA coming into effect, setting a new path, and also the cabinet clearing major projects pushing for semiconductor chips and mobile phone production. Iran threatens regional oil blockade over U.S. sanctions is a headline in the Hindu. Well, the paper quotes Iran saying oil and gas will either be for everyone or no one as U.S. claims waves of strikes. As the world-famous Rath Yatra in Puri begins today, President Draupadi Murmu in an op-ed in Hindustan Times has written about her childhood memory of prayers and hymns to Sri Jagannath. She has expressed her feelings, saying 13 festivals are also said to be celebrated during the 12 months of the year in Kshi Kshetra. But the splendor of Rath Yatra is unique and incomparable. And finally, under the headline, Power of Second Life, the Times of India writes about discarded X-ray sheets transformed into stylish dresses, orange peels creating fabric and for use for shoes refurbished for school children in Ladakh, showing India's journey towards sustainability. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet clears two elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World-famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings begins today at Puri in Odisha. U.S. says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर आईआरसीटीसी वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों के आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को एक के मुकाबले दो गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो शाहराह प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तसादी उमूर की काबीना कमेटी ने वाराणसी में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और सफर में लगने वाला वक्त कम से कम करने की खातिर इन प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में नामानिकारों को जानकारी देते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा दूसरा प्रोजेक्ट वाराणसी शहर में तकरीबन 43 किलोमीटर तवील एलिवेटेड कॉरिडोर से मुतालिक है, जिसमें 6 और 4 लेन होंगी। इस पर तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
4: पहला है वरुणा नदी।

0: के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ है सेमीकॉन के दूसरे मरहले को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णो ने कहा कि सेमीकॉन के पहले मरहले की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए मस्कूरा स्कीम का मकसद आलमी सतह पर सेमीकंडक्टर मंजरनामे पर भारत को आगे रखने के सरकार के अहद के सिलसिले में कदम बढ़ाना है। वजीर मौसूफ ने बताया कि सेमीकॉन के दूसरे मरहले के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए की मालियत की सरमायाकारी होने की उम्मीद है।
0: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: जनाब वैष्णो ने कहा कि मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मोबाइल फोन तैयार करने की स्कीम को भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। IRCTC ने इस नई बीटा वेबसाइट को बेहतर बनाते हुए 4 अहम इकदाम किए हैं। मुसाफिर अब सभी जुमरों में सीटों की दस्तियाबी को देख सकेंगे। इसके अलावा टिकट बुक करने का अमल अब और ज्यादा सहल हो जाएगा। इसके साथ साथ वेबसाइट में अब मुसाफिरों की तफसीलात महफूज रहेंगी, जिससे उन्हें दोबारा बुकिंग करने में आसानी होगी। इसके लिए वेबसाइट का पता है irctc.co.in/e-ticket/। दिल्ली के तारीखी लाल किले कॉम्प्लेक्स को 15 अगस्त को होने वाली 80वीं योम आज़ादी की तकरीबात तक आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। योम आज़ादी के जश्न के लिए जारी तैयारियों के मद्देनज़र महकमे आसार कदीमा ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। महकमे के एक अहलकार ने कहा है कि योम आज़ादी से कबल हर साल इस तरह के अहकाम जारी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश से पहली बैन अलाक्वामी फ्लाइट सर्विस का आगाज किया गया है। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से मुत्तहिद अरब अमारात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली बराह रास्त परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम मोदी का हमेशा से ये मानना है कि एक आम आदमी को भी हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिलना चाहिए। रियासत की एविएशन पॉलिसी इसी नजरिए के तहत तैयार की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उड़ीसा के शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज शुरू हो रही है। रथ यात्रा के सालाना फेस्टिवल के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहन मखसूस रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हुए लोगों को दर्शन का मौका फराहम करते हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंद वहां जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडीचा मंदिर के अपने सालाना सफर पर रवाना हो रहे हैं और पुरी के पवित्र शहर की फजा जय जगन्नाथ की अकीदतमंदों के नारों से गूंज रही है। पुरी में आज सुबह सवेरे से तेज बारिश होने के बावजूद लाखों अकीदतमंद बारिश की परवाह न करते हुए पवित्र रथों का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खराब मौसम के तनाजुर में हुक्काम चौकसी बरत रहे हैं। मौसमियात महकमे ने खलीज बंगाल के ऊपर हवा के

0: दबाव का हल्का बनने के जेरे असर पुरी में बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: उधर झारखंड में सालाना रथ यात्रा पूरी रियासत में रवायती जोशो खरोश और अकीदत के साथ हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जगन्नाथ चक्कानेन लीला चलवारे।
3: रांची के दुर्वा में तारीखी जगन्नाथपुर के मंदिर में आज सुबह मजहबी रसूमात का आगाज हो गया है। दोपहर बाद देवी देवताओं को रथ पर विराजमान कराए जाने के बाद शाम 5 बजे रथ यात्रा मासीबाड़ी के लिए रवाना होगी। जिला इंतजामिया ने सीसीटीवी निगरानी और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती समेत वसी हिफाजती इंतजाम किए हैं। खुंटी में मकामी इंतजामिया ने कल तारीखी रथ मेले के लिए किए गए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अली।
2: तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
1: गुजरात में अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में भी 400 साल कदीम जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है। इसके लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर के अहाते में इकट्ठा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के शुभ मौके पर भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा पूरी मजहबी अकीदत और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आज सुबह मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने जमालपुर में तारीखी जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शिरकत की और भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सुनहरी झाड़ू से रथों के रास्तों को साफ करने की अलामती पाहिंद विधि की रस्म अंजाम दी और बाजाब्ता तौर पर रथ यात्रा का आगाज किया। भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के अजीम शान रथ दर्जनों अखाड़ों भजन मंडलियों और लोक रक्स करते हुए ग्रुपों के हमरा 16 किलोमीटर के रिवायती रास्ते से गुजर रहे हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जनाब अमित शाह ने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता जगन्नाथ रथ यात्रा पुख्ता अकीदे एतमाद और भक्ति की अलामत है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र रथ यात्रा से भारत के शानदार सकाफती विरसे और भगवान के तई गैर मुतजलजल अकीदत की अक्कासी होती है। केरलम में सबरीमाला मंदिर के कपाट महाना पूजा अर्चना के लिए आज खोले जा रहे हैं। ये मंदिर इस महीने की 21 तारीख तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। अकीदतमंदों को कतार के वर्चुअल निजाम के जरिए ही वहां दाखिल होने की इजाजत होगी ताकि लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ न हो सके। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करने के लिए कल भी ईरान पर हमले किए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमियत के हामिल आबी गुजरगाह पर ईरान की गिरफ्त को कमजोर करने की खातिर फौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों का जायजा ले रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरैन और कुवैत समेत खित्ते में अमरीकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का ईरान का कोई मंसूबा नहीं है। अब कुछ खबरें फीफा वर्ल्ड कप की। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। अमेरिका के एटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1-2 से हरा दिया। वक्फे से पहले कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी लेकिन खेल के 55वें मिनट में एंथनी गोर्डोन ने इंग्लैंड की तरफ से पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया जबकि लुटारो मार्टिनेज ने 90 मिनट में गोल करके 2-1 से अर्जेंटीना की जीत में अहम रोल अदा किया। अब इतवार की रात को फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में शोपिया गार्डन्स में खेला जाए।

0: जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले एक रोजा मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और उड़ीसा में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरकी राजस्थान, मगरबी राजस्थान और मगरबी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के बाज हिस्सों में आज शदीद गर्मी का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में जुजवी तौर पर बादल छाए रहने और हवा में नमी के साथ मौसम गर्म रहने की पेशगोई की गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी से शायद

0: कान जाहिर किया है। दिल्ली में जुजवी तौर पर बादल छाए रहने और हवा में नमी के साथ मौसम गर्म रहने की पेशगोई की गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप ने भारत और बरतानिया के दरमियान हुए जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे के नाफिजुल अमल होने की खबर को अपने पहले सफे की बड़ी खबर के तौर पर शाये किया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि ये भारत बरतानिया शराकत दारी में एक अहम लम्हा है। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने पार्लियामेंट हाउस में दो नौ मुंतखब अरकान मंसूर अली खां और रजनीश कुमार अग्रवाल को राज्यसभा की रुकनियत का हलफ दिलाया। इस खबर को प्रताप ने पहले सफे पर पेश किया है। सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए की लागत वाली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस खबर को कई अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-2 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

साथियों, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे समीर की शब्द रचना। स्वर थे अलका याग्निक और कुमार सानू की फिल्म थी दिल का रिश्ता।

श्रोताओ, कार्यक्रम का ये गीत आपने सुना फिल्म यस बॉस से, स्वर थे अलका याग्निक और अभिजीत के। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीतकार थे जतिन ललित।

इस गीत में स्वर थे हरिहरन और सुखविंदर सिंह की। आनंद बख्शी के बोलों को संगीतबद्ध किया था ए आर रहमान ने। फिल्म का नाम था ताल।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

साथियों, कार्यक्रम का ये गीत आपने सुना कुमार सानू और संजीवनी के जुगल स्वरों में। गीतकार थे राहत इंदौरी, संगीतकार थे अनु मलिक। फिल्म का नाम था करीब। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म है तक।

आशा भोसले की गाई इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, आप कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे जिले की हलचल।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए ललितपुर और मथुरा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
1: ललितपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और समृद्ध जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों को अनावश्यक रूप से दूसरे जिलों में रेफर करने की प्रवृत्ति पूरी तरह से समाप्त की जाए। उन्होंने कहा कि जिन बीमारियों का इलाज जिले में संभव हो उनके लिए मरीजों को बाहर भेजना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की व्यवस्था का भी जायजा लिया और निर्देश दिए कि सभी मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। यदि कोई चिकित्सक बाहर की दवा लिखता है या बिना ठोस कारण मरीज को रेफर करता है तो संबंधित चिकित्सक की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने प्रसव कक्ष SNICU औषधि भंडार और विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों के स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया। ड्यूटी से अनुपस्थित मिले चिकित्सकों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण भी मांगा गया। साथ ही अस्पताल परिसर के सामने दो चरणों में पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए गए। बरसात के मौसम को देखते हुए ललितपुर में संचालित रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान शुरू होने से पहले जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता व अंतर विभागीय समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सभी विभागों को माइक्रो प्लान के अनुसार 100% कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाकर नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और जल भराव रोकने पर जोर दिया। जिला मलेरिया अधिकारी अनिल क्रिस्टोफर मैसी ने बताया कि हाई रिस्क में लार्वानाशक दवा का छिड़काव, गड्ढों को भरने, रुके पानी की निकासी और साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के 35 करोड़ वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत ललितपुर में भी मेगा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। जिले में एक ही दिन में करीब 94 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। गोविंद सागर बांध की तलहटी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, जिलाधिकारी सत्य प्रकाश अपन

0: आयुक्त प्रियंका, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधारोपण किया। अभियान के दौरान सभी को एक पेड़ माँ के नाम लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। इसके बाद जिलाधिकारी और अपर आयुक्त ने कल्याणपुरा में विकसित मियाबाकी वन का निरीक्षण किया और स्कूली बच्चों के साथ पौधारोपण किया। अधिकारियों ने इस महाअभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और अधिक से अधिक लोगों से वृक्षारोपण करने की अपील की। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक में खेत तालाब योजना को तेजी से लागू करने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत किसानों को खेत तालाब निर्माण पर 50% यानी 52,500 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2026-27 में जिले के 180 खेत तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि खेत तालाब जल संरक्षण के साथ साथ मत्स्य पालन, सिंघाड़ा उत्पादन और अन्य जलीय गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगे। ललितपुर में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की देवी आपदा प्रबंधन जांच समिति के सभापति डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम प्रधानों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए और गाँव गाँव में सर्पदंश डूबने, आकाशीय बिजली तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। बैठक में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बताया कि जिले में सोशल मीडिया, राहत चौपाल, मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को आपदा से बचाव की जानकारी दी जा रही है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की भी समीक्षा की गयी, जिसमे 2019-20 से और 2025-26 तक 9,098 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई।
1: ललितपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का।
2: कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने मथुरा में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से छात्र छात्राओं को धनराशि अंतरित की गई है तथा शिक्षा मित्रों को बढ़ा हुआ मानदेय प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सजीव संबोधन को सुना गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े लगभग 12 लाख शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य कर्मचारी उठा सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए DBT के माध्यम से यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं अन्य आवश्यक सामग्री हेतु प्रति छात्र को 1200 की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से शिक्षकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। पात्र शिक्षक एवं कर्मचारी आयुष्मान भारत पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना कैशलेस हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। बाइट प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मथुरा के गांव सिंगापट्टी में मां ओणम देवी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। योजना के अंतर्गत करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही जहांगीरपुर के महालक्ष्मी मंदिर में करीब 50 लाख रुपए, ग्राम माल के मार्कंडे ऋषि की तपोभूमि में करीब 50 लाख रुपए, वृंदावन के शोध संस्थान के भवन जीर्णोद्धार के 1,22,00,000 रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा, देश और प्रदेश की सरकारें विकास के लिए हमेशा तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3,000 से ज्यादा मंदिरों में विकास कार्य कराया गया है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार ने तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। मथुरा में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री

0: मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन की नगरीय विकास विभाग के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सफल 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज नगर निगम मथुरा वृंदावन के सभागार जनरल गंज मथुरा में स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक बलदेव पूरन प्रकाश द्वारा किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लाखों रेहड़ी पटरी एवं पथ विक्रेताओं के लिए वरदान सिद्ध हुई है। योजना के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण आवेदन, ऋण स्वीकृति, वितरण, क्रेडिट कार्ड वितरण की सुविधाएं प्रदान की गईं। परियोजना अधिकारी डूडा राजकुमार चौधरी ने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी ऋण, डिजिटल लेन देन पर कैशलेस, समय पर ऋण अदायगी पर ब्याज अनुदान तथा क्रमशः अधि राशि के ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना के माध्यम से हजारों परिवारों की आजीविका सुदृढ़ हुई है तथा वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बन रहे हैं। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के कल्याण जन कल्याणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप शहरी गरीबी स्ट्रीट वेंडरों एवं लघु उद्यमियों को आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आज देश में वित्तीय समावेशन एवं स्वरोजगार संवर्धन का एक सफल मॉडल बनकर उभरी है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रातः के 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम की बजुशा।
1: यूं ही तुम मुझसे

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे इंदिवर की शब्द रचना। सरदी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की फिल्म थी सच्चा झूठा।

शदा फिल्म तीसरी मंजिल से अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार थे आर डी बर्मन।

और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है तीन देवियां, स्वर है किशोर कुमार और आशा भोसले के, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत निर्देशन है ST परमन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से। स्वर है मोहम्मद रफी का, गीतकार है मजहर सुल्तानपुरी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मोहम्मद रफी की गाई इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं कृष्णा कुमारी माथुर की गाई कुछ लोक गीत।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कृष्णा कुमारी माथुर के गाए कुछ लोकगीत।

इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

साथियों, कार्यक्रम का ये आरंभिक गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह के जगत स्वरों में। गीतकार थे वर्मा मलिक, संगीतकार थे उत्तम जगदीश। फिल्म का नाम था वारिस।

0: साथियों, कार्यक्रम का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के जुगल स्वरों में। बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम था वापस।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, इस गीत में स्वर थे अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की। शब्द रचना इंदिवर की थी, धुन बनाई थी जगजीत सिंह ने। फिल्म का नाम था प्रेम गीत। और अब डीजे सुनिए शक्ति फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है आर डी परमन।

श्रोताओं, सच्ची शांति उस हृदय में जन्म लेती है जो प्रेम करता है। गवाही वो होंठ देते हैं जो मेल मिलाप के शब्द बोलते हैं। ये उन आंखों में झलकती है जो दुनिया को करुणा और विवेक से देखती हैं। केवल सत्य और प्रेम की शक्ति ही सच्ची शक्ति है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं पंडित विश्वनाथ का राग ललित में ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित विश्वनाथ का ख्याल गायन, आप प्रस्तुत कर रहे थे राग ललित। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी आभा चौहान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज अपने इस कार्यक्रम में हम सिने जगत की एक ऐसी अदाकारा के बारे में बातें करेंगे जो कि विदेश में पली बढ़ी होने के बाद भी आज भारतीय सिनेमा का एक जाना माना नाम है और कई भारतीयों के दिलों पर उनका राज है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कैटरीना कैफ के बारे में। जी हाँ मित्रों, कैटरीना कैफ, जिनका जन्म 16 जुलाई यानी आज ही के दिन सन 1983 को हांगकांग में हुआ था, उनके पिता कश्मीरी मूल के हैं और उनकी माँ सुजैन एक चैरिटी कार्यकर्ता और ईसाई धर्म को मानने वाली हैं। 8 भाई बहनों में कैटरीना 5वें नंबर की हैं। कैफ कई देशों में रहने के बाद लंदन चली गई थीं, जहां उन्होंने 3 साल बिताए। कैटरीना कैफ ने किशोरावस्था में ही उन्हें एक मॉडलिंग का पहला असाइनमेंट मिला था और बाद में उन्होंने फैशन मॉडलिंग में अपना करियर बनाया। लंदन में एक फैशन शो में भारतीय फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद ने उन्हें फिल्म बूम के लिए कास्ट किया। ये फिल्म जो कि समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कैटरीना कैफ ने हार नहीं मानी और अपने कड़े परिश्रम से फिल्म जगत में अपनी एक खास जगह बनाई। श्रोताओं, कैटरीना कैफ के जीवन से जुड़ी आज हम और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, भारत में कैटरीना कैफ ने मॉडलिंग में एक सफल करियर बनाया, लेकिन शुरुआत में हिंदी भाषा पर उनकी सीमित पकड़ के कारण उन्हें फिल्मों में भूमिकाएं पाने में काफ़ी कठिनाई हुई। अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म की असफलता के बाद कैटरीना ने तेलुगु फिल्म मल्लीश्वरी में काम किया, जिसमें उन्होंने एक राजकुमारी की भूमिका निभाई थी, और उनके अभिनय की नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, और इसके बाद उन्हें कई फिल्मों के प्रस्ताव भी मिले। वर्ष 2005 में कैटरीना कैफ ने राम गोपाल वर्मा की राजनीतिक थ्रिलर फिल्म सरकार में काम किया। इसके बाद वे सलमान खान, सुष्मिता सेन और सोहेल खान के साथ फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में नजर आईं, जिसे उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला वास्तविक कदम माना। इसके बाद उन्होंने फिल्म हमको दीवाना कर गए में अभिनय किया, परंतु ये फिल्म अधिक कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बावजूद उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और वर्ष 2007 में कैफ के करियर की संभावनाएं बेहतर हुई जब उन्होंने बॉलीवुड की 4 हिट फिल्मों में काम किया। एक इंटरव्यू के दौरान कैफ ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नमस्ते लंदन को अपनी पहली दमदार भूमिका बताया। कैफ ने खेल ड्रामा फिल्म अपने में एक डॉक्टर की सहायक भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने निर्देशक डेविड धवन और सलमान खान के साथ कॉमेडी फिल्म पार्टनर में काम किया, जो कि एक वित्तीय सफलता प्राप्त फिल्म रही।

श्रोताओं, कार्यक्रम आज के कलाकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ के बारे में। श्रोताओं, कैटरीना की अगली फिल्म अनीस बज़मी की कॉमेडी फिल्म वेलकम थी। हालांकि इस फिल्म को ज्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन यह वर्ष 2007 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म साबित हुई। इसके बाद वर्ष 2008 में कैटरीना की 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें पहली एक्शन थ्रिलर फिल्म रेस थी, दूसरी एक्शन कॉमेडी फिल्म सिंग इज किंग में काम किया था उन्होंने, जो एक सफल फिल्म रही और बड़ी कमाई करने के साथ यह उनकी लगातार 6वीं बॉक्स ऑफिस सफलता बन गई। कैफ की उस वक्त की आखिरी फिल्म सुभाष घई की ड्रामा फिल्म युवराज थी, जो कि एक फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन इसके बाद वर्ष 2009 में आई थ्रिलर फिल्म न्यूयॉर्क और 2011 में आई फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन में कैटरीना के अभिनय को काफ़ी सराहा गया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया। इसके साथ ही फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी और जिंदगी न मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी मुख्य भूमिकाओं के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाया। उन्हें एक्शन थ्रिलर फिल्मों एक था टाइगर, धूम 3, बैंग बैंग से बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली, जो उस दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शुमार थीं। तो श्रोताओ, कैटरीना के बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं उनकी फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आज के कलाकार आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। आप सुन रहे हैं फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ के बारे में। मित्रों, थोड़े समय के लिए मिली सफलता के बाद कैटरीना कैफ की एक्शन फिल्में टाइगर जिंदा है, सूर्यवंशी और टाइगर 3, साथ ही ड्रामा फिल्म भारत बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इतना ही नहीं, वर्ष 2018 में आई फिल्म जीरो में कैटरीना के अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए जी सिने पुरस्कार दिलाया और रहस्यमय थ्रिलर फिल्म मैरी क्रिसमस में भी उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया। श्रोताओं, कैटरीना कैफ अक्सर भारत की सबसे लोकप्रिय और आकर्षक हस्तियों की सूची में दिखाई देती हैं। सन 2010 के दशक में फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 सूची में उनके नाम लगातार शामिल रहे। एक जानी मानी ब्रांड एंडोर्सर के तौर पर उन्होंने वर्ष 2019 में अपना कॉस्मेटिक ब्रांड के ब्यूटी लॉन्च किया। वे स्टेज शो में भी हिस्सा लेती रही हैं और अपनी मां के चैरिटी संगठन रिलीफ प्रोजेक्ट्स इंडिया में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जो कि वंचित बच्चों की मदद करता है।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम आज के कलाकार अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, सुबह के 11:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपसे बातें करेंगे कृषि के लिए जरूरी है जैव विविधता पर। मित्रों, सरल शब्दों में कहा जाए तो जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव तथा उनके बीच के पारिस्थितिकी संबंधों की विविधता। और यदि खेती में इसकी आवश्यकता की बात करें तो खेती और जैव विविधता का संबंध अत्यंत गहरा है, क्योंकि कृषि केवल फसलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मिट्टी के जीवाणु, केंचुए, मधुमक्खियां, तितलियां, पक्षी, पशु, जल स्रोत और प्राकृतिक वनस्पतियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि खेती में जैव विविधता बनी रहती है तो कृषि अधिक उत्पादक, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनती है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, रासायनिक खेती और जलवायु परिवर्तन के कारण इस जैव विविधता पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए खेती में जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो श्रोताओं, आज इसी विषय पर हम आगे आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओ, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसका एक बड़ा भाग कृषि पर ही निर्भर है। इसीलिए अच्छी फसल उगाने के लिए खेती में जैव विविधता

का विशेष महत्व है। जैव विविधता मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिट्टी में रहने वाले केंचुए, जीवाणु, कवक और अन्य सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्वों में बदल देते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसलों को आवश्यक पोषण प्राप्त होता है। मित्रों, जैव विविधता से युक्त मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहती है। इसके अलावा कई फसलों का उत्पादन परागण पर निर्भर करता है। मधुमक्खियां, तितलियां, भौरे और अन्य कीट फूलों का परागण करके फल और बीज बनने में सहायता प्रदान करते हैं। यदि ये जीव नष्ट हो जाएं, तो अनेक फसलों की उपज में भारी कमी आ सकती है। इसलिए ये जीव भी खेती के लिए अमूल्य हैं। इतना ही नहीं, जैव विविधता खेती में कीटों और रोगों को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। खेतों में रहने वाले पक्षी, मकड़ियां, मेंढक और अन्य लाभदायक कीट हानिकारक कीटों का को खाकर उनकी संख्या नियंत्रित रखते हैं। इससे रासायनिक कीटनाशक की आवश्यकता कम होती है और जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। और तो और, विभिन्न प्रकार के पौधे और वृक्ष मिट्टी में नमी बनाए रखने और वर्षा के जल को संचित करने में सहायता प्रदान करते हैं। खेतों के आसपास ये वृक्ष लगाने से मिट्टी का कटाव कम होता है। इस प्रकार जैव विविधता जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अलावा मित्रों, जैव विविधता खेती को सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा और तापमान में बदलाव जैसी परिस्थितियों का सामना करने में भी सक्षम बनाती है।

श्रोताओं, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। हम बात कर रहे हैं कृषि के लिए जैव विविधता जरूरी है विषय पर। मित्रों, जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पशु पक्षी जीव जंतु, जो कि खेती उपज को बढ़ाने, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में अपना योगदान देते हैं, वे सभी किसानों के मित्र कहलाते हैं। और इन्हीं में से खास मित्र ऐसा भी है जिसका नाम सुनते ही आम तौर पर लोगों के पसीने छूट जाते हैं और लोग डर के मारे कांपने भी लगते हैं। लेकिन यदि ये आपके खेतों में होते हैं तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों को खाकर खेतों की फसलों की सुरक्षा करते हैं, परंतु फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। मित्रों, ये हैं सांप। जी हाँ मित्रों, सांप भी जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण अंग है और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसीलिए हर वर्ष 16 जुलाई को विश्व भर में विश्व सर्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में सर्पों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मित्रों, भारत में सांपों की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं और दुनिया भर में सर्प दिवस सांपों के संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने और गलत धारणाओं को दूर करने का एक सबसे अच्छा दिन माना जाता है। हालांकि आम नागरिकों के लिए सांप डर का ही दूसरा नाम है, लेकिन आपको पता है कुछ सांप किसानों के सबसे बड़े रक्षक होते हैं। जी हाँ मित्रों, किसानों के खेतों में सबसे बड़ा खतरा होता है चूहे और कीट पतंगों से, जो बीज खाते हैं, जड़ों को नष्ट कर देते हैं।

यहाँ तक कि भंडारित अनाज को भी खराब कर देते हैं। सांप, खासकर धामन, रैट स्नेक, इन चूहों को तेजी से खत्म करते हैं। एक सांप औसतन एक रात में 2 से 4 चूहों को खत्म कर देता है। श्रोताओं, हमारे देश में पाए जाने वाले 300 में से केवल 50 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं, और खेतों में आम तौर पर पाए जाने वाले सांप, धामन, रेसिंग स्नेक जैसे सांप जो हैं वो बिल्कुल हानि रहित होते हैं और केवल कीड़े मकोड़े, चूहे, किरकिर जैसे जीवों का ही शिकार करते हैं। इतना ही नहीं, वन्य जीव और कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि खेतों में सांपों की मौजूदगी प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। बायो कंट्रोल सिस्टम के तहत कई देशों में तो खेतों में जानबूझकर सांपों को छोड़ा जाता है ताकि रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत ही ना पड़े। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सांप हमारी जैविक खेती के लिए, जैविक विविधता के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए कितने आवश्यक हैं। तो मित्रों, अब आपको कहीं भी कोई सांप दिखे तो कृपया उसे मारे नहीं, बल्कि किसी सहायता से उसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ाएं। और यदि ये सब आप ना कर पाएं तो वन विभाग को सूचित करें, वे ये कार्य अपने आप कर लेंगे।

श्रोताओ, हमारा देश विश्व के जैव विविधता संपन्न देशों में से एक है। यहाँ विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के कारण अनेक प्रकार की फसलें, फल, सब्जियां, मसाले और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। देश में धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, दालें, तिलहन, कपास, गन्ना तथा अनेक बागवानी फसलें उगाई जाती हैं। आज प्राकृतिक खेती और जैविक खेती जैसी पहलें जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मित्रों, खेती में जैव विविधता केवल

पर्यावरण की आवश्यकता नहीं बल्कि किसानों की समृद्धि और खाद्य सुरक्षा का आधार भी हैं। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं, परागण में सहायता करती हैं, कीटों का प्राकृतिक नियंत्रण करती हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी सहायक होती हैं। इसीलिए मित्रों, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण और समृद्ध कृषि सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी मार्ग जैव विविधता का संरक्षण और उसका विवेकपूर्ण उपयोग ही है।

थी आभा जहान को अनुमति दीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
0: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
0: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
0: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
0: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
0: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
0: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
0: जी। श्रोताओं, भोजपत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोजपत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिणी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
0: और हाँ श्रोताओ, भोजपत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
0: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
0: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
0: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
0: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ।

0: आइए जानते हैं कुछ और बातें।
1: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी। यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे।
0: जी।
1: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
0: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे क्योंकि कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था।
1: जी, तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन। साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
3: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
2: जी।
3: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
2: जी, लेकिन वो कैसे?
3: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
2: जी।
3: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
2: जी।
3: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है यानी वर्ल्ड वाइड।
2: जी।
3: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
4: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
2: जी।
4: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
2: जी। डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
4: जी।
2: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
4: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
2: जी।
4: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
2: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
4: जी
3: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है।
2: जी।
3: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
4: जी, जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना।

0: बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
1: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे?
0: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
1: अच्छा
0: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
1: डॉक्टर नमिता
2: जी,
1: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
2: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
0: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं। जी, तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
2: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है।
0: जी,
2: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
1: अच्छा,
2: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
1: बहुत सुंदर उदाहरण दिया। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है?
0: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल,
2: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा।
0: जी,
2: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे, और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
1: बिल्कुल,
2: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
0: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा।
1: जी,
0: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए, लेकिन बहुत कम।
1: जी,
0: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा।
1: जी, इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
2: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें।
1: जी, तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
0: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
2: बिल्कुल,
0: और यदि पेड़ काटे भी जाएं तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें।
0: जी,
2: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
1: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
2: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
0: जी
1: बिल्कुल,
0: और दिनेश जी यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
1: जी,
0: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
0: जी,
2: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
1: ये तो बड़ी गंभीर बात है, और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
0: जी,
1: कहीं ऐसा

0: ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
3: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: चलो अपना अपना पार्ट निकालो
2: जी,
1: तुम्हें भी
2: जी,
1: कह रहा हूँ। चलो शाबाश, हाँ गोपाल इसको बोलो, हाँ इधर मेरी तरफ देखिए, हाँ शाबाश। अब मैं जो बोलूँगा मेरे पीछे पीछे दोहराना,
2: जी जी
1: समझ गए
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं।

0: गुरुजी,
1: हाँ?
0: पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी।
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी। पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है,
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो। चलो चलो शाबाश।
2: गंदे
3: पानी के प्रयोग से
2: अनेक बीमारियां हो जाती हैं,
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
0: गुरुजी,
1: हाँ बोलो।
0: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक से बैठो, ठीक से पीछे हो जाओ, बोलो।
4: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
5: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
5: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
6: हमारे गांव में दो कुएं हैं, एक तालाब भी है।
5: अच्छा
2: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
5: शाबाश, बिल्कुल ठीक।
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
5: हाँ ये भी ठीक है।
7: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
5: शाबाश। हे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
2: मास्टर जी,
5: हाँ हाँ बोलो।
2: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
5: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें।

0: कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं। ठीक
1: जी मैम।
0: लिखो फिर, सब लिखो।
2: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को। पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
3: दीदी
4: बोलो मालती।
3: दीदी मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
4: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
3: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
4: ठीक।
3: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
4: हाँ, फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
3: जी।
4: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
3: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
4: हाँ।
2: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
5: नमस्ते दीदी।
6: नमस्ते
5: दीदी।
7: नमस्ते, नमस्ते बच्चों, नमस्ते
8: दीदी। ये,
7: अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण, कहाँ से लाए तुम ये फूल?
3: दीदी ये फूल प्रवीण अपने बगीचे से लाया है।
7: अच्छा
3: दीदी, इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
7: सच? प्रवीण इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
8: गुलाब।
7: गुलाब, बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण, और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
5: दीदी मैं बताऊँ?
7: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
8: गुलाब। गेंदा।
7: हाँ
8: चमेली। और चमेली।
7: चमेली।
8: सूरजमुखी।
7: सूरजमुखी, शाबाश।
2: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी, आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
7: देखिए, मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ।
2: जी।
7: मेरे छात्र पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं, और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़, तना, टहनी, पत्ते, फूल और फल होते हैं।
2: जी जी।
7: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
2: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
7: जी, कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है, और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
2: बहुत अच्छे।
7: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौट कर हम बच्चों से

0: बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
1: अरे इंदु जी, आपने तो गणित, वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
0: और मैंने भी तो सीखा इनसे
1: जी।
0: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
1: हल्के नीले रंग के?
0: हाँ, मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
1: अच्छा,
0: मैं जिस इलाके की हूँ ना, वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
1: काहे की लिस्ट?
0: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
1: इंदु जी, आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
0: देखिए, बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना
1: जी,
0: तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
1: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों, इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है। तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षक कुछ नए आयाम। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: दशमलव एक मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओ आइए अब सुनते हैं फिल्म जोधा अकबर का ये गीत जिसे गाया है जावेद अली ने। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी आकाशवाणी का। ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 106.9।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे जावेद अली की आवाज़ में फिल्म जोधा अकबर का ये गीत। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया था AR रहमान ने। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं फाल्गुनी पाठक और साथियों की आवाज़ों में आनंद बख्शी की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है ना तुम जानो ना हम।

श्रोताओं, कार्यक्रम नई तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अंकित तिवारी की आवाज में फिल्म बागी 2 का ये गीत।

श्रोताओं, अंकित तिवारी और श्रुति पाठक की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म बागी 2 का ये गीत। गीतकार थे कुमार, संगीतकार थे गौरव रोशन। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में। गीत को लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। फिल्म का नाम है रेस।

अभी आप सुन रहे थे आतिफ असलम की आवाज़ में फिल्म रेस का ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। श्रोताओं, कार्यक्रम नए तरह ने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं आतिफ असलम और आकांक्षा भंडारी की आवाज़ों में फिल्म नमस्ते इंग्लैंड का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आतिफ असलम की आवाज़ में फिल्म नमस्ते इंग्लैंड का ये गीत। गीत को संगीतबद्ध किया था मनन शाह ने। इसी के साथ ही नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टि

0: दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ SOCHM और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Defense Minister Rajnath Singh has said the government is ensuring that development and national security progress on the same path. He emphasized that the government's endeavor is to build an India where borders are secured and connected. Addressing the Border Road Organization Tech Symposium in New Delhi, Mr. Singh highlighted that advanced infrastructure has always been the hallmark of a developed civilization. He said the infrastructure being built today will define the country's civilization in the coming years. He said the government's aim is to ensure that no citizen living in any remote area feels cut off from the mainstream.
4: We understand that the stronger a country's infrastructure, the stronger its future will be. We have ensured that no citizen living in the most remote corner of the country feels disconnected from the mainstream. We have

0: अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में 7 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों के बारे में मालूमात फराहम करते हुए इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि काबीना ने वाराणसी में बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए दरियाए वरना के 7-6 लेन और 4 लेन वाले एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इस 43 किलोमीटर तवील राहदारी पर 10,998 करोड़ रुपये लागत आएगी और वाराणसी के अहम मकाम को जोड़ेगी।
1: एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए जो बहुत पुराने शहर हैं उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा। गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: वजीर आला योगी आदित्य

0: आदित्यनाथ ने वाराणसी के लिए मरकजी काबीना की तरफ से मंजूर शुदा प्रोजेक्टों का खैर मकदम किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ग्रैंड काशी काबिल रसाई काशी के लिए वक्फ ये प्रोजेक्ट अकीदतमंदों के सफर को मजीद काबिल रसाई बनाएंगे, ट्रैफिक को फिर से मुतहरिक करेंगे और सयाहत तजारत और तवानाई डालेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में शुमाल मशरकी रेलवे के ऐश बाग जंक्शन का वजीर आजम अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर के 75 तजेन और आराई शुदा रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह आज पंजाब के जालंधर कैंट स्टेशन से होगा। 20 रियासतों में फैले हुए 75 अमृत स्टेशनों का इफ्तिताह अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एक और अहम कामयाबी की निशानदेही करता है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन की तामीर नौ के प्रोग्रामों में से एक है। तकरीबन 1,570 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा इन स्टेशनों को जदीद और मुसाफिरों के लिए साजगार सहूलियात में तब्दील कर दिया गया है। विरासत भी तरक्की भी के जज्बे के तहत इन जदीद शुदा स्टेशनों में मकामी सकाफत, विरसे और फन तामीर की अक्कासी करने वाले अनासिर शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सद ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि अजीम जुलूस के दौरान महाप्रभु श्री जगन्नाथ, चक्रराज, सुदर्शन, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अकीदतमंदों से मिलने निकलते हैं। सदर जमहूरिया ने दुआ की कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद से मुल्क और उसके लोगों को हमेशा खुशी, अमन और खुशहाली मिले। वहीं भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आज राजधानी लखनऊ में मुख्तलिफ मकामात पर शानदार तरीके से मुनक्किद की जा रही। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में निकलने वाले इन जुलूसों के पेश नजर लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए खसूसी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है कि आम लोगों को ट्रैफिक की किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। एक कौम एक इंतखाब से मुतालिक आईनी तरमीमी बिलों पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के 3 रोजा बहस का कल लखनऊ में अख्तिताम हुआ। आखिरी दिन कमेटी ने रियासत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और कानून और सियासत के माहरीन से बात की। उसने पद्म अवार्ड याफ्ता अफराद, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मीडिया के सरकर्दा शख्सियात से भी बातचीत की। कमेटी के जाने से मौसूल होने वाली तजावीज पर आने वाले मराहिल में गौर किया जाएगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा कि कमेटी ने 10 रियासतों का दौरा किया है और मुख्तलिफ शोबों में लोगों से बहुत से अहम मशवरे हासिल किए हैं और जो सिफारिशात कौमी मफाद में है उन्हें पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। कबल अजी गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से बातचीत की। बातचीत के दौरान गवर्नर ने कमेटी के अराकन के साथ इंतखाबी निजाम, इंतखाबी असलाहत और खवातीन की सियासी शिरकत समेत मुख्तलिफ मौजूदात पर तबादला ख्याल किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के तकरीबन 500 ग्राम पंचायत प्रधान आज वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पंच सम्मेलन में एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए। सम्मेलन का मकसद ग्राम पंचायतों को ज्यादा बाख्तियार, शफाफ और नतीजाखेज बनाना है और रामजी एक्ट 2025 के दफात और वीबीटी के साथ साथ मकासद के बारे में अवामी नुमाइंदों के समझ को मजबूत करना है। सम्मेलन के मेहमान खसूसी वजीर मुमलकत बराए देही तरक्की कमलेश पासवान, उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य होंगे। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश से 350 ग्राम प्रधान, बिहार से 75, झारखंड के 50 और उत्तराखंड के 25 ग्राम प्रधान शिरकत करेंगे। रेलवे की वजारत ने ट्रेन टिकट बुकिंग को आसान बनाने के वेबसाइट के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने इस साइट का एक नया वर्जन जारी किया है। वर्जन में 4 बड़ी इस्लाहात की हैं। इससे पहले कोई गैर जरूरी कैप्चा, पॉपअप या दीगर खल्फिशार नहीं है। दूसरा, मुसाफिर तमाम क्लासों में सीट की दस्तयाबी दे सकते हैं। तीसरा, टिकट बुक करने के लिए कम मराहिल दरकार हैं और वेबसाइट अब मुसाफिरों की मालूमात को महफूज करेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करने में आसानी होगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 1:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार सुन रही मेरी सभी श्रोता बहनों को आपकी रेडियो सहेली शिवांगी दुबे का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, किसी भी समाज की असली पहचान उसकी ऊंची इमारतों या आधुनिक सुविधाओं से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की सोच और व्यवहार से होती है। जब लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और संवेदनशीलता का भाव रखते हैं ना, तभी समाज वास्तव में सुरक्षित बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, आज की चर्चा, सुरक्षित और संवेदनशील समाज का निर्माण आवश्यक के साथ। बहनों, आज हम देखते हैं कि तकनीक और सुविधाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन कई बार रिश्तों में अपनापन कम होता जाता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति असंवेदनशील व्यवहार और दूसरों की परेशानियों को अनदेखा करना, समाज के लिए ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है आज के समय में। संवेदनशील समाज वही होता है बहनों, जहाँ किसी की मदद करना कोई बोझ नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य माना जाए। सड़क दुर्घटना हो, किसी महिला की सुरक्षा का सवाल हो, या किसी जरूरतमंद की सहायता, यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो समाज अधिक सुरक्षित बन जाता है। और बहनों, सबसे पहले इसकी शुरुआत ना पता कहाँ से होती है? शुरुआत होती है अपने घर से। बच्चों को बचपन से ही सम्मान, समानता, अनुशासन और दूसरों की भावनाओं को समझने की जब सीख दी जाती है, तब ऐसे समाज का निर्माण होता है। परिवार, विद्यालय और समाज मिलकर ऐसे संस्कार दें कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे। और ये बहुत ज़रूरी है। हम इसे बहुत छोटी सी बात समझते हैं, पर जब हमें एक सुरक्षित और एक सम्मानजनक, एक अच्छा समाज का निर्माण करना होता है, तो ये सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण बिंदु है। याद रखिए, सुरक्षित समाज केवल कानून से नहीं बनता बहनों, बल्कि जागरूक और संवेदनशील नागरिकों से बनता है, हम लोगों से बनता है। इसलिए आइए आज हम ये संकल्प लें कि अपने व्यवहार से समाज में विश्वास, सम्मान और सहयोग का वातावरण बनाएंगे और एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज का निर्माण करेंगे। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।

अभी हमने की बात सुरक्षित और संवेदनशील समाज की, फिलहाल बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरह परवरिश रिश्ते नाते में, जहां आज हम बात करेंगे छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं पर। बहनों, रिश्ते ना जिंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी होते हैं। इन्हें बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन कई बार एक छोटी सी गलतफहमी या एक कड़वा शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है। तो आज परवरिश रिश्ते नाते में करेंगे इसी पर बात। बहनों, घर हो या परिवार, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। आपके घर में अगर चार भाई बहन हैं तो चारों एक जैसे नहीं होंगे। उन सब के बर्ताव, उनका व्यवहार अलग अलग होगा, सबके विचार अलग अलग होंगे। कोई जल्दी गुस्सा हो जाता, कोई अपनी बात ठीक से नहीं कह पाता और कोई अपनी व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाता। ऐसे में यदि हम हर बात का गलत अर्थ निकालने लगें तो मन में शिकायतें जमा होने लगती हैं। क्योंकि बहनों, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर बात को मन पर लेना भी समझदारी नहीं होती। कई बार सामने वाला जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में कुछ ऐसा कह देता है जिससे हमें बुरा लग जाता है। अगर हम उसी समय शांत मन से बात कर लें तो बड़ी से बड़ी गलतफहमी भी दूर हो सकती है। रिश्तों की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि उनमें कभी मतभेद ना हो, बल्कि इस बात में है कि मतभेद के बाद भी मन भेद ना होने पाए। इसलिए कोशिश कीजिए बहनों कि छोटी छोटी बातों को बस मुस्कुरा कर जाने दें। अपनों की एक गलती को उनकी पूरी पहचान मत बनाएं, क्योंकि जहां प्रेम, विश्वास और क्षमा होती है वहीं रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से मजबूत होते हैं। माफ करना और आगे बढ़ जाना भी एक बहुत बड़ी कला है। कई बार एक छोटी सी मुस्कान या प्यार से की गई बात बड़े से बड़ा मनमुटाव दूर कर देती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि छोटी छोटी बातों

0: को दिल से लगाने के बजाय रिश्तों की खूबसूरती को महत्व दें, क्योंकि खुशहाल परिवार की नींव प्रेम, विश्वास और समझदारी पर ही टिकती है। तो ये तो थी आज परवरिश रिश्ते नाते में बात। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और करते हैं वार्ता। बहनों, हम सब जानते हैं कि आज का दौर डिजिटल युग का दौर है। अब मोबाइल फोन केवल बातचीत का साधन नहीं है, बल्कि सीखने, कमाने और अपनी पहचान बनाने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। ऐसे में महिलाओं के लिए सोशल मीडिया नए नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। तो आइए करते हैं इसी विषय पर बात। आज की वार्ता महिलाओं के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के अवसर। वार्ताकार हैं मयूरी शर्मा।
1: हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने हम सबको कोई एक गुण यानी कला देकर ही इस जगत में भेजा है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। ये कला हमारे भीतर किसी भी रूप में हो सकती है। किसी के स्वर में संगीत होता है, किसी के हाथों में कढ़ाई का जादू, कोई अपने शब्दों से पूरा संसार रच देता है, तो कोई अपने मोबाइल के कैमरे में अपनी भावनाओं को कैद कर लेता है। बहनों, हम अपने इन्हीं गुणों को अपना व्यवसाय यानी कैरियर बना सकते हैं। एक दौर था जब आपको कैरियर के लिए कुछ डिग्रियां या प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था, लेकिन आज हम में अगर कोई प्रतिभा है या कोई कला है तो उसे अपना कैरियर बना सकते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि आगे समय आने पर हम उसमें प्रशिक्षण या पढ़ाई करके और भी बेहतर कर सकते हैं। यही वजह है कि महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारियां ही नहीं निभा रही, बल्कि कला को अपना आत्मविश्वास, अपनी पहचान और सफल करियर भी बना रही हैं। बहनों, कुछ समय पहले तक कला को केवल शौक माना जाता था। घर में सुरीला गाने वाली या चित्र बनाने वाली लड़की की तारीफ तो की जाती थी, लेकिन उसे कैरियर बनाने की बात पर संकोच होता था। चित्रकारी, नृत्य, हस्तशिल्प और लेखन इत्यादि को समय बिताने का साधन मात्र समझा जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है। आज कला समय बिताने का माध्यम नहीं, आपका आत्मविश्वास और पहचान बन चुकी है। महिलाएं आज गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय, फोटोग्राफी, फैशन, मेकअप आर्ट, डिजिटल आर्ट, कंटेंट क्रिएटर, कंप्यूटर लेखन, हस्तशिल्प, लोक कला, वक्ता एंकर समेत कला के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। बहनों, हर व्यक्ति जिसके भीतर कला है वो कलाकार होता है। जब ईश्वर के पास चयन का अवसर आया तो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर ने स्त्री को चुना, जो इस जगत की सबसे सुंदर कृति को जन्म देती है। लेकिन हम सब अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी प्रतिभा को समय ही नहीं दे पाते, जबकि घर, परिवार और करियर के मध्य संतुलन हमसे बेहतर कोई बना ही नहीं सकता। याद रखिए, जिस काम को करने से आपको प्रसन्नता मिलती है, समय का पता ही नहीं चलता, और दूसरे सच्चे मन से आपके काम की तारीफ करें, तो समझ लीजिए वही आपकी कला है। कोई बहुत अच्छा खाना बनाती है, कोई कपड़ों को रंगों को अद्भुत मेल जानती है, कोई कहानियां सुनाने में माहिर है, तो कोई ब्रश और रंगों से कुछ भी खूबसूरत बनाती है। तो यकीन कीजिए, यही क्षमताएं आपके लिए कैरियर का अवसर हैं। ये सही है कि कला ईश्वर का उपहार है, लेकिन उसे निखारना हमें होता है। आज के दौर में जब मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट हमारे पास हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यमों से सीखने के अवसर भी हमारे पास हैं। संगीत सीखने के लिए संस्थान हैं, पेंटिंग और ड्राइंग के लिए कोर्स हैं, थिएटर वर्कशॉप्स हैं, एडिटिंग और एनिमेशन के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध हैं। अगर आप घर से बाहर जाकर नहीं सीख सकती, तो मोबाइल ने ये दूरी कम कर दी है। इंटरनेट से आप घर बैठकर सब कुछ सीख सकते हैं। बहनों, याद रहे, सिर्फ सीखना ही पर्याप्त नहीं है। हमने जो सीखा है या जो हमें आता है, उसको नियमित अभ्यास करते रहना है और समय के साथ नई नई चीजों को जोड़ते रहना है, ताकि हम हमेशा सार्थक यानी अप टू डेट बने रहें, क्योंकि बदलाव के साथ सामंजस्य बिठाना ही तो जीवन है। आज का समय अवसरों का समय है। पहले अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए मंच नहीं मिलता था,

0: अपने व्यवसाय को चलाने के लिए दुकान नहीं मिलती थी। लेकिन आज समय बदल गया है। लेकिन आज आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पर मंच भी है और दुकान भी है। अगर कोई महिला अच्छा गाती है, मेहंदी लगाती है, पेंटिंग बनाती है, मेकअप करती है, अच्छा खाना बनाती है, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे कितने माध्यम हैं जहां आप अकाउंट बनाकर अपनी कला के छोटे छोटे वीडियोस बनाकर एक सफल उद्यमी बन सकती हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया के लिंक और ग्रुप के माध्यम से खरीदारी का भी बहुत प्रचलन है। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है बहनों, लोकप्रियता से ज्यादा जरूरी है गुणवत्ता। आपको अपने सामान यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखना होगा। इसके साथ साथ आपकी मौलिकता ही आपकी पहचान होती है। इसलिए मैं कहूंगी दूसरों की नकल ना करके स्वयं की रचनात्मकता से कुछ नया और अपना करें। सफलता अवश्य मिलेगी, बस थोड़ा धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपकी पहचान बन ही जाएगी। बहनों, एक समान सी सोच है कि कुछ भी करने के लिए पूंजी चाहिए, लेकिन सच तो ये है सोशल मीडिया पर बहुत कम पूंजी या ना के बराबर पूंजी से आप छोटे स्तर से व्यवसाय कर सकती हैं। मान लीजिए कोई महिला हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाती है, तो वह स्थानीय तौर पर एकल प्रदर्शनी या ऑनलाइन माध्यम से उसको विक्रय कर सकती है। यदि आपको लेखन में रुचि है, तो ब्लॉग लिखकर स्क्रिप्ट या कंटेंट राइटर बना जा सकता है। गीत संगीत आता है, तो ऑनलाइन प्रशिक्षण दे सकती हैं, पेंटिंग सिखा सकती हैं। यानी हर वो कला जिसे आप अपना हुनर मानती हैं, वो आपका करियर बन सकता है। घरेलू महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवार की होती है। जैसे परिवारजन ही कहते हैं, इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा करियर बनेगा क्या? ऐसे में कितना कमा लोगी? ये सारे प्रश्न आत्मविश्वास को हिला जरूर देते हैं। लेकिन बहनों, याद रहे, हर बड़ी सफलता का आरंभ खुद पर विश्वास से होता है। परिवार यदि थोड़ा प्रोत्साहन दे, थोड़ा समय दे, थोड़ा सम्मान दे, तो महिलाएं बहुत आगे जा सकती हैं। हम महिलाओं को भी समझना होगा कि अपने सपनों को सच करने के लिए हमें थोड़ा सामंजस्य बिठाकर विनम्रता के साथ दृढ़ होना पड़ेगा। बहनों, एक बात और, कला से कैरियर और सिर्फ धन कमाना ही सब कुछ नहीं है। ये आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करता है, ये तनाव को कम करता है, आपको भीतर से मजबूत भी बनाता है। जब किसी महिला की पेंटिंग की सराहना होती है या किसी महिला के गाए गीत पर तालियां बजती हैं, जब किसी महिला की लिखी हुई पंक्तियां किसी की जुबान बन जाती हैं, तब उसे सिर्फ पैसा ही नहीं आत्मविश्वास भी मिलता है। और यही आत्मविश्वास उसे जीवन की हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है। तो बहनों, कला केवल रंगों, सुरों, शब्दों का मेल भर नहीं, ये आत्मा की आवाज है। जब कोई महिला अपनी कला को पहचान कर अपने लगन, मेहनत, समर्पण और विश्वास के साथ आगे बढ़ती है, तो वही कला उसकी पहचान, उसका करियर बन जाती है। बस जरूरत है अपने भीतर की कला को सुनने की, उसे अवसर देने की और विश्वास रखने की। सपनों की भी एक उड़ान होती है। आपके सपने सच हो, आपकी कला आपका करियर बने, यही विश्वास हम सबको है।
1: तो बहनों, अभी हमने वार्ता में जाना कि महिलाओं के लिए सोशल मीडिया कितने सारे माध्यम बन रहा है, कितनी सारी चीज़ों के द्वार खोल रहा है, सफलता के नए आयाम छू रही हैं महिलाएं उसका इस्तेमाल करके। पर मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे कि सफलता के साथ सावधानी भी ज़रूरी है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचें और डिजिटल भुगतान हमेशा सुरक्षित माध्यम से ही करें। सोशल मीडिया का सही उपयोग महिलाओं के सपनों को नई उड़ान दे सकता है। ज़रूरत है केवल सही जानकारी, धैर्य और निरंतर प्रयास की। तो ये थी वार्ता। अभी हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, मिलते हैं गीत के बाद।

0: बहनों, बरसात के मौसम में जहां ठंडक और ताजगी का हम एहसास करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बरसात का मौसम बन सकता है। इस मौसम में हमें खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। हमारे साथ है बातचीत में आकांक्षा पाठक जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आकांक्षा जी हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: थैंक यू।
0: आकांक्षा जी, बरसात के मौसम में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके का भोजन करना चाहिए, इसके बारे में हमारी श्रोता बहनों को कुछ बताएं।
1: पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं खुद एक फिटनेस फ्रीक हूँ
0: जी,
1: और इसी कारण से मैं अपने खान पान का प्लस हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ
0: जी।
1: तो मैं आपको वही चीजें वही पॉइंट्स

0: बताऊंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ डेली रूटीन में, स्पेशली बरसात के मौसम में।
1: जी,
0: बरसात के मौसम में मैं फलों को और सब्जियों को अच्छे से धोकर ही उपयोग करती हूँ, तो आप लोग भी वैसे ही धोकर उपयोग करें। बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें साफ सफाई का ध्यान बहुत कम रखा जाता है। और बरसात के मौसम में हमें उबला हुआ और फिल्टर्ड किया हुआ पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में पानी में बैक्टीरिया और वायरस के खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए पानी को पहले उबालें फिर ठंडा करके पिए।
1: जी बिल्कुल।
0: इसी के साथ हाथों की सफाई का भी बहुत ध्यान रखा, क्योंकि जब हम खाने पीने की चीजों की साफ सफाई का इतनी बात कर रहे हैं तो शरीर की सफाई को कैसे भूल सकते हैं।
1: जी,
0: कहीं भी बाहर आने के बाद खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, इससे किसी भी तरीके के इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। इसी के साथ बाजार में मिलने वाली खुली या तली भुनी चीजों को खाने से बचें।
1: जी,
0: इससे पेट की बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बरसात में बाहर का खाना ना खाएं, हरी सब्जियां खाएं, भीगने से बचें
1: जी,
0: ताकि आप बीमार ना हो, सर्दी खांसी से बचे रहेंगे अगर भीगेंगे नहीं तो।
1: बिल्कुल, अगर आप भीग भी जाते हैं तो जल्द से जल्द खुद को सुखा लें। जी,
0: और साथ ही मच्छरों से बचने के लिए अपने घर के आसपास या घर में ही कहीं पर भी पानी जमा ना होने दें, उससे मच्छरों के पनपने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। और घर में मच्छरदानी और मच्छर रेपेलेंट का भी यूज करें, जिससे आप स्वस्थ रहें और सेफ रहें और बरसात के मौसम को एंजॉय करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। तो बहनों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप बरसात के मौसम को आनंद ले सकें, तो जरूरी है कि आप सही खान पान और आवश्यक सावधानियां अपनाकर इस मौसम का आनंद लें। तो ये तो थी बात कुछ तुम कहो कुछ हम में बरसात में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की। बढ़ते हैं अगले अंक की तरफ और करते हैं बातें कुछ ज्ञान विज्ञान की भी। ज्ञान विज्ञान में आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोप्लास्टिक, एक अदृश्य खतरा। बहनों, हम सभी ना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। हमारे घर में आने वाली छोटी छोटी पॉलीथीन हो, दूध की थैली हो, या फिर घर की किचन में रखे हमारे डिब्बे हों, हमारी जिंदगी में प्लास्टिक कहीं ना कहीं घर कर गया है। हमारे घर में प्लास्टिक घर कर गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही प्लास्टिक इतनी छोटे छोटे कणों में बदल कर हमारे शरीर तक पहुंच सकता है, हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकता है? इन छोटे छोटे कणों को ही माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। बहनों, माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से भी छोटे छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं। ये पानी, हवा, मिट्टी, समुद्री जीवों और यहाँ तक कि हमारे भोजन में भी पहुँच चुके हैं। वैज्ञानिकों को तो ये हमारे रक्त में, फेफड़ों में, शरीर के अन्य हिस्सों में भी मिले हैं, जिस पर लगातार शोध चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है बहनों प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग। प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, पैकेजिंग सामग्री, सिंथेटिक कपड़े और रोजमर्रा की कई चीजें समय के साथ टूटकर इन सूक्ष्म कणों में बदल जाती हैं। हालांकि इनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से अध्ययन अभी भी हो रहा है, और जो विशेषज्ञ हैं वो प्लास्टिक के कम से कम उपयोग की सलाह भी देते हैं। पर कहीं ना कहीं हम सब अभी भी इस माइक्रोप्लास्टिक के खतरे के लिए जिम्मेदार हैं। बहनों, अपने भविष्य में हम भी कुछ आसान कदम उठा सकते हैं, जिससे कि ये अदृश्य खतरा हमारी भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान ना पहुंचा सके। जैसे कि कपड़े का थैला अपनाएं, स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें, कांच की बोतलों का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक कचरे को इधर उधर ना फेंकें और एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से जितना हो सके दूरी बनाए रखें। छोटी छोटी आदतों को अपने अंदर लाकर, छोटे छोटे बदलाव अपनी जीवन शैली में लाकर हम कहीं ना कहीं अपने भविष्य को बचा सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं। क्योंकि बहनों, आज की छोटी सी सावधानी आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा उपहार बन सकती है। तो इस अदृश्य खतरे से अपने भविष्य को बचाएं, अपनी भविष्य की पीढ़ियों को बचाएं और प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: अब हमने आज इतनी सारी बातें तो कर ली हैं बहनों, पर हम सबसे जरूरी चीज कैसे भूल सकते हैं। हम महिलाएं ना अपने घरों से बहुत प्यार करते हैं, हम

अपने घर को ऐसे सजाते और सवारते हैं कि मानो अपनी पूरी दुनिया सजा रहे हों। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले अंक होम डेकोर की तरफ और करते हैं आज इसमें एक छोटी सी बात, छोटे छोटे पौधों से घर में लाएं ताजगी। बहनों, जहाँ हरियाली होती है ना, वहाँ खुशहाली अपने आप चली आती है। यदि आप अपने घर को बिना ज़्यादा खर्च किए सुंदर और सुकून भरा बनाना चाहते हैं तो उसमें छोटे छोटे पौधे आपकी सबसे अच्छी पसंद हो सकते हैं। ये इंडोर पौधे केवल सजावट का हिस्सा नहीं होते बहनों, बल्कि घर के वातावरण को भी जीवंत बना देते हैं। मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, एलोवेरा और पीस लिली जैसे पौधे कम जगह में आसानी से लगाए जा सकते हैं। आप इन्हें खिड़की, बालकनी, सेंटर टेबल, स्टडी कॉर्नर या रसोई की किसी भी खाली जगह पर भी रख सकते हैं। रंग बिरंगे गमले या हैंगिंग प्लांटर इनकी खूबसूरती को तो और भी बढ़ा देते हैं। ध्यान रहे कि हर पौधे की धूप और पानी की ज़रूरत अलग होती है बहनों, समय समय पर उनकी देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है। बस ये नहीं कि हमने छोटे छोटे पौधों के गमले खरीदे और अपने घर में लगा दिए, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनका ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि आपके घर में वो सुकून और सुंदरता बनी रहे। यकीन मानिए बहनों, जब घर का कोई कोना हरियाली से भर जाता है तो केवल घर ही नहीं मन भी ताजगी से भर उठता है। तो होम डेकोर में ये तो थी बात, छोटे पौधों से घर में लाए ताजगी। सुनते हैं ये गीत।

चूंकि बहनों अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, इसी के साथ आपकी रेडियो सहेली शिवांगी दुबे का आपको प्यार भरा नमस्कार।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गौरी खन्ना के गाए कुछ गीत व भजन। सबसे पहले प्रस्तुत है ये गीत।

कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं गौरी खन्ना की आवाज में ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गौरी खन्ना के गाए कुछ गीत व भजन। इसी के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: being held in Bengaluru under the India chair. India and Belgium have agreed to deepen cooperation in areas including trade and investment, green energy transition, innovation and technology, connectivity, defence, security, regional and global issues, as well as people-to-people exchanges. The first meeting of the India-Belgium Strategic Dialogue was held in Brussels yesterday, marking a significant step towards strengthening bilateral relations. The United States has launched a new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in the Strait of Hormuz. U.S. military said it completed a second wave of strikes on Iran yesterday that were aimed at degrading Tehran's ability to target vessels in the Strait of Hormuz. President Donald Trump is also weighing options to expand the U.S. military operation to loosen Tehran's grip on the critical waterway. The Rath Yatra of Lord Jagannath will begin today at Puri in Odisha. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on the occasion. Two-time Olympic medalist P.V. Sindhu produced one of her best performances of the season to outclass world number 5 Han Yue of China in straight games and storm into the quarterfinals of the Japan Open Super 750 badminton tournament today. PV Sindhu needed just 35 minutes to register a commanding 21-16-21-14 win over the higher-ranked Chinese shuttler in their second-round contest. In men's cricket, the second one-day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. Earlier, India defeated hosts England by 6 wickets in the first ODI at Edgbaston, Birmingham on Tuesday to lead the series 1-0. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. Argentina will now play against Spain in the final on Sunday night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security progress on same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hydrogen-powered train to promote green and sustainable rail mobility. PV Sindhu stuns world number 5 Han Yue of China in straight games to storm into quarterfinals of Japan Open badminton tournament. And in cricket, second ODI between India and England to be played in Cardiff this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
2: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स
3: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में

0: बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
2: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनके संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
0: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
1: 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन।
2: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया, और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने, यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
2: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
2: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के

0: स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडीचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे बेगम परवीन सुल्ताना का राग भैरवी में ठुमरी गायन और पंडित भीमसेन जोशी का राग भैरवी में ठुमरी गायन। सबसे पहले आइए सुनते हैं बेगम परवीन सुल्ताना की गाई ये ठुमरी।

अभी आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना का राग भैरवी में ठुमरी गायन। कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी की आवाज में ये ठुमरी राग भैरवी में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का राग भैरवी में ठुमरी गायन। इसी के साथ ही कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय दोपहर के 2:45 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: क्या बात हैरानी मांगो दिल और जान, चले की क्या बात हैरानी मांगो दिल और जान, दिल और जान भी क्या है कर दूं, दिल और जान भी क्या है कर दूं, कुल दुनिया कुर्बान, कुल दुनिया कुर्बान, मेरी ले ले निशानियों दिल भर जानी,
1: चला दे जा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम और एससी पत्रा की आवाज़ों में फिल्म बाजार का ये गीत। गीत को लिखा था कमर जलालाबादी ने, संगीतबद्ध किया था श्याम सुंदर ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है शबनम। गीतकार हैं जावेद अनवर, संगीतकार हैं उषा खन्ना।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेटी बेटे का ये गीत। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म जोगन का ये गीत।

शमशाद बेगम के गाए फिल्म जोगन के इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम गीत गुंजन का। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में समीर की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है लज्जा।

अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म लज्जा का ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पोंडवाल और सुरेश फाटकर की आवाज़ों में संतोष आनंद की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई है नरेश शर्मा ने। फिल्म का नाम है संगीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पूर्णवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में फिल्म संगीत का ये गीत। गीत को लिखा था संतोष आनंद ने, संगीतबद्ध किया था नरेश शर्मा ने। लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म साजन का ये गीत। गीत को लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म साजन का ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत बद्ध किया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाजों में फिल्म रंग दे बसंती का ये गीत। गीत को

0: अभी आप सुन रहे थे मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज़ों में फिल्म रंग दे बसंती का ये गीत। इस गीत के साथ ही लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, दिन के 3:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं स्वस्थ भारत निर्माण में चिकित्सकों की भूमिका विषय पर डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी से अनिंद्र सिंह की बातचीत।
1: हर साल 1 जुलाई को हम उन चिकित्सकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो अपने ज्ञान, सेवा, समर्पण से लाखों लोगों के जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए निरंतर काम करते हैं। आज जहां नई नई तकनीकें, उपचार पद्धतियां विकसित हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जीवन शैली से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां, मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां, डिजिटल हेल्थ और पर्यावरण जनित जो रोग हैं वो चिंता बन के उभर रहे हैं। आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी, जो सिनर्जी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। और आपके बारे में मैं बता दूं श्रोताओं, आप इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रण के लिए। डॉक्टर स्टेप है एंड सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम और राधे राधे।
1: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर। सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं के लिए यही जानना चाहेंगे आपसे कि ये राष्ट्रीय दिवस जो है चिकित्सकों का, किस तरह से राष्ट्रीय दिवस उसको मनाने के पीछे की उद्देश्य और वर्तमान में उसकी एक प्रासंगिकता को अगर हम देखें तो उसको किस तरह आप डिफाइन करेंगे?
2: देखो, राष्ट्रीय जो चिकित्सक दिवस है वो बेसिकली एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बीसी राय साहब
1: जी,
2: तो उनके जन्म और इवन फॉर्चुनेटली ये था कि उनका जन्म मरण सेम दिन था, तो उनके उसमें जाए जो फॉर्मली चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के
1: जी जी,
2: तो उन्होंने बहुत सारे काम करे चिकित्सा क्षेत्र में, तो उनके लाइफ और डेथ एनिवर्सरी के रूप में इसको हम मनाते हैं। और इस दिन हम सोसाइटी को क्या बाई बैक दे रहे हैं, जिसके लिए हम बने हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और वक्त के हिसाब से अपना लेटेस्ट अपडेट डिजिटलाइजेशन में है कि नहीं है।
1: कहा जाता है डॉक्टर साहब, हेल्थ इज वेल्थ।
2: यस।
1: और अगर इंसान के लिए हेल्थ जैसी चीज को अगर आप डॉक्टर्स एड्रेस कर रहे हैं, उससे बेहतर मानवता की सेवा मेरी नजरों में शायद और कुछ नहीं हो सकती। आज के डॉक्टर को केवल इलाज करने वाला चिकित्सक ही नहीं, बल्कि हम यूं कहें कि वो स्वास्थ्य शिक्षक भी है, मार्गदर्शक भी है, समाज के प्रति एक उत्तरदायी नागरिक की भूमिका भी वो अदा करता है। तो इस बदलती हुई भूमिका को आप किस तरह देखते हैं?
2: वक्त बड़ा फास्ट बदलता है
1: जी,
2: जो टाइम पहले था अभी टाइम में जनरेशन गैप बदलता जाता है अगर आप जनरेशन के हिसाब से नहीं चलते हैं। अभी आप हिंदुस्तान में जैसे चिकित्सक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि लाइफ स्टाइल डिजीज बहुत ज्यादा हो गई है।
1: बिल्कुल सर,
2: जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, मेंटल स्टेटस, ये बहुत
1: सबसे बड़ा इशू है,
2: बहुत बड़ा इशू है। इतना स्ट्रेस लेवल है लोगों को, पेशेंस नहीं है, तो अब इन जीवन शैली के बदलाव से ही आपको सबसे पहले स्वस्थ रहना है। तो जीवन के जो 7 सुख कहते हैं तो उसमें पहला सुख निरोगी काया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक चिकित्सक के नाते में सबसे पहले यही कहता हूं कि पहले तो जो चीज प्रिवेंटेबल हो सकती है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन
1: ऑलवेज बेटर।
2: हाँ,
1: और बार बार WHO की गाइडलाइंस आती हैं, हर बार वो इस पे जोर देते हैं कि आप उपचार से बेहतर बचाओ।

0: और इस पे ही उनका पूरा फोकस होता है। तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि अगर वो अपने दैनिक जीवन में अपनाई जाने वाली जो ऐसी 5 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य की आदतें क्या हो सकती हैं जो उनको स्वस्थ रखें, निरोगी काया उनकी हो।
1: देखो, सबसे पहले तो जो है, मैं कहता हूँ टॉप में मेंटल हेल्थ है, क्योंकि अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ है तो बाकी सब चीज़ ठीक है। और वो आप जानते हैं कि मेरे को किस चीज़ से स्ट्रेस होता है।
0: ये बात आपने बड़ी अच्छी
1: हाँ
0: कही है,
1: हाँ
0: क्योंकि सबको पता होता है कि हम
1: हाँ
0: क्या किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, क्या हमारे सामने समस्याएं हैं, और टैकल भी आप नहीं कर रहे हैं।
1: हाँ तो उसको कैसे टैकल कर सकते हो, आपसे ज़्यादा कोई नहीं अच्छा बता सकता। दूसरा है, अगर आपको उसमें कोई है तो आप सलाह ले सकते हो उसमें, जैसे कि कभी आप मेंटल जो साइकोलॉजिस्ट है उससे सलाह ले सकते हो, आप अपने मित्रों से सलाह ले सकते हो, लेकिन जितना जल्दी दूर कर लोगे उसको उतना ही आपके लिए वो है,
0: आपके दिमाग पे वो एक हावी नहीं होना
1: नहीं होना
0: चाहिए
1: चाहिए
0: जिसके कारण आपको एक चिंता, जिसको बोलते हैं
1: चिंता।
0: सताने लगे,
1: हाँ
0: वो स्थिति जो है, मानसिक
1: बहुत
0: स्थिति, वो गंभीर है।
1: वहाँ तो आपका वर्क भी सेटिस्फाइड होता है और आपकी हेल्थ डिटोरिएट होती है और आपका वर्क भी डिटोरिएट होता है। दूसरा है आपका लाइफ स्टाइल रहने के लिए, कि भाई ये देखो, जब भी जो योग दिवस शुरू करा, योग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप टाइम निकाल सकते हो अपनी बॉडी के, लोग इधर उधर पार्टी के लिए निकाल लेते हैं, घूम फिरने के लिए निकालते
0: हर चीज के लिए
1: हैं,
0: समय है, सिर्फ
1: लेकिन
0: अपने लिए नहीं
1: खुद
0: है।
1: के लिए, इवन खाने के लिए भी, जहां भी कर सकता है इंसान, तो जो लोग इस चीज को कर लेते हैं, मैंने देखा उन लोगों को हेल्थ के प्रति बहुत कम इशू होते हैं, और ये सबसे बड़ा इशू है। और जिसको जितना जल्दी आदमी पहचान ले उतना ही ठीक है, जितना डिले होगा उतना
0: उतनी
1: ही
0: समस्याएं बढ़ती जाएंगी
1: समस्या बढ़ती रहती है।
0: जी। तो अगर आप देखेंगे, अभी 2026 चल रहा है और 5-6 साल पहले जो एक हमने महामारी का दौर देखा, कोविड का, उस महामारी ने डॉक्टर्स की भूमिका को भी एक नया दृष्टिकोण दिया है। तो उस अनुभव से चिकित्सा की जो व्यवस्थाएं हैं या हमारी जो सोसाइटी है, उसने आपको क्या लगता है कि क्या सीखा है?
1: देखो, जो कोरोना महामारी थी एक तरह से सुनामी थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस लेवल पे, सेकंड वेव में जो आया था, पहले में भय ज्यादा था, दूसरे ने ये सिखाया कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए।
0: उसमें आदमी के पास हताशा ज्यादा थी,
1: हताशा ज्यादा थी, आदमी बिल्कुल कुछ भी
0: उम्मीदें
1: डायरेक्शन
0: छोड़
1: नहीं दे,
0: चुका था।
1: हाँ सब कुछ उम्मीद। और सच में भी ये था कि हम मरीजों को देख रहे थे, कौन सा मरीज बचेगा हमें ही नहीं पता होती थी, मतलब हमें एक ये लगा कि कौन सा बच सकता है कौन सा नहीं बच सकता। मेरा एक्सपीरियंस रहा तो अप्रैल का महीना 2021 का इतना मतलब वो रहेगा कि भगवान ऐसा दिन कभी नहीं लाए जिंदगी में, लेकिन उससे बहुत सारा सीखने को मिला कि आपको कैसे रहना है, आपको मदद करनी चाहिए लोगों की, वक्त पे जो काम आ रहा है, बहुत से लोगों के मतलब आपको उस त्रासदी का तो जितना बयां कर सकते, कभी कभी सोच के ही डर लगता है। मैं तो एज ए डॉक्टर अपने आईसीयू में रहता था, जहां मेरे 20-30 मरीज रहते थे, और मतलब मैं सोच भी नहीं सकता सुबह से शाम तक काम करना, 400-400 कॉल आ रही है, उनको अटेंड करना, लोगों को गाइड करना, तब लगा कि लोग कितने कष्ट में। लेकिन उससे सीखने की यही बात थी, आपको लर्निंग लेसन ये था उससे कि आपको अपनी हेल्थ का, परिवार से, ये बहुत जरूरी चीजें जिससे आपका ध्यान रखना चाहिए।
0: आपने मानसिक स्वास्थ्य की बात की थी, आपने परिवार की अभी जो बात की है, इन दोनों को अगर कोरिलेट करें तो बहुत हद तक जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, हमारी शेयरिंग पर डिपेंड करता है कि कैसे हम अपने थॉट प्रोसेस को अपने नियर एंड डियर के साथ साझा करते हैं। तो वो उसके प्रति हमारे श्रोताओं को कैसे आप आगाह करना चाहेंगे, क्योंकि आज का जो जमाना है वो बड़ा वर्चुअल वर्ल्ड होता जा रहा है।
1: बहुत ज़्यादा, एक तो सबसे ज़्यादा मानसिक जितना भी आपको डिजिटल मीडिया है, बच्चे मतलब पैदा होने के बाद में जितना जल्दी उसको अडेप्ट करते हैं, तो आप फैमिली में जितना एंगेजमेंट कर सकते हो आपस में एक दूसरे से बैठ के, और मैं समझता हूँ फैमिली में आप एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करते हो, उससे आधी समस्या आपकी वहीं सॉल्व हो जाती हैं। तो ये तो आपको टाइम देना है, अपनी बॉडी को देना है, फैमिली को देना है, हेल्थ के बारे में सोचना है, और एक दूसरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है। जो शेयर करना है अकेला चला वो नहीं है, अगर आप एक परिवार में टीम की तरह रहते हो तो आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से, और वही आपका लर्निंग लेसन होता है कि कैसे आगे बढ़ना है। सीनियर आदमी है, बड़े परिवार में लोग हैं, एक्सपीरियंस हमेशा काउंट होता है।
0: ठीक बात है। आपने कहा कि जो कोरोना का दौर था उसके बाद चीजें जो है बदली हैं, परसेप्शन भी बदले हैं, क्योंकि तकनीकी का युग है आजकल, डिजिटल हेल्थ और ऑनलाइन कंसल्टेशन, आजकल तो बहुत सारे हेल्थ एप्स भी आ गए हैं, और अब तो एआई का दखल और
1: बहुत ज्यादा
0: उसमें बढ़ता जा रहा है तेजी से। तो

0: क्या आपको लगता है कि ये इन सबसे डॉक्टर की भूमिका कल को बदलने वाली है या ये सब चीजें मिलके और उसको प्रभावी बना देंगे?
1: एआई को डॉक्टर को यूज करना आना चाहिए, क्योंकि एआई एक टूल है। ऐसा नहीं है डॉक्टर की भूमिका कम हो जाएगी, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा और जो यूज नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो एआई कोई ऐसा नहीं है कि नौकरी चली जाएगी, वो है, लेकिन एआई आपको गाइड करेगा, आपको काम को स्मूथ करेगा, आपके डायग्नोसिस ट्रीटमेंट को प्रिसाइज करेगा, लेकिन लीड आपको ही लेनी पड़ेगी डॉक्टर को। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ कि एआई को अगर आप चैट जीपीटी पे किसी पे डालो कि आपको जो फीटस होता है उसको एंगेज रखना है, फिक्स करना है, क्या है, तो उस पर आ जाएगा भ्रूण की सगाई। तो अब वो चीजें वो इतना कर सकता है, आपको उसके प्रति ध्यान रखना है
0: कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो है हमें उसको यूज किस तरह करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीथिंग।
1: तो ये बहुत बड़ा रोल है।
0: आजकल जो है वर्तमान की अगर बात करें तो आपने जैसे कहा था कि लाइफस्टाइल डिजीजेज बढ़ रही हैं। हम सब देखते हैं कि हमारे चारों तरफ, चाहे वो मधुमेह हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ओबेसिटी हो, इवन हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस आपको अपने इर्द गिर्द मिल जाते हैं। बड़ी तेजी से ये सब चीजें बढ़ रही हैं। मैं आपसे इनके कारण जानना चाहता हूं और इससे बचने के बहुत साधारण से उपाय, जो संदेश के तौर पे आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
1: देखो, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये लाइफ स्टाइल डिजीज हैं और आपके खान पान, एक्सरसाइज टोटली इस पे और कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। ओबेसिटी मेजर कारण है, आपको जंक फूड खाना, इनसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का बहुत नाता है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल और खान पीन सुधारना होगा, इससे आपको इनसे, और तीसरा अगर हो गई है तो उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल के तीन ही तरीके हैं, एक तो लाइफस्टाइल, डाइट कंट्रोल, उससे नहीं हो रहा फिजिकल एक्सरसाइज, और उससे नहीं हो रहा तो दवाई। लेकिन वो ठीक नहीं होती है। लोग क्या करते हैं, अरे मेरी तो ठीक हो गई। डायबिटीज ब्लड प्रेशर होने के बाद जब तक जिंदगी है तब तक रहती है, वो ठीक नहीं होती है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज नॉट क्योरेबल डिजीज, ये कंट्रोल है। और अगर आप कंट्रोल करके चलते हो तो लाइफ में 20, 30, 40 साल कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना बहुत बहुत
0: जरूरी। आत्मनियंत्रण जो है वो बड़ा जरूरी है। पहले तो अगर आप नियंत्रण में रहते हैं तो ये लाइफस्टाइल सो कॉल्ड डिजीजे जो आप कह रहे हैं वो होंगी ही नहीं। और अगर होती भी हैं, देन ऑल्सो कंट्रोल इज द ओनली थिंग विच इज हेल्पफुल।
1: बिल्कुल।
0: अभी वर्तमान में बात करें, गर्मी का सीजन है, बरसात आएगी, ये ऐसा एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जहाँ पर संक्रमण बहुत पड़ता है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया वायरल और जो कंटामिनेशन होता है पानी का, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक हाउस होल्ड में और एक सोसाइटी में किस तरह से आप उसको अवेयरनेस देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं?
1: देखो, इंडिया में ये बीमारी सब ज़्यादातर बीमारी गंदगी से रिलेटेड है। अगर आप साफ स्वच्छ रखोगे वहाँ कम होगी।
0: हम क्योंकि बहुत हैवीली पॉपुलेटेड कंट्री हैं।
1: 2021 में कोरोना के बाद में अगस्त सितंबर में डेंगू आया था और वो कोरोना से भी भयानक था। मेरे को याद है, वो कोरोना से भी भयानक था। तो ये डिजीजें आपको साफ सफाई रखनी है, अगर मॉस्किटो के लिए लगाना है, और दूसरा आपको इसके लिए जो चीजें, पानी नहीं भरा होना चाहिए, है ना, आप कपड़े पूरे पहने, जैसे आप ऑफिस में बैठे हो तो मोजे पहन के जरूर बैठे। क्योंकि टेबल के नीचे कब मॉस्किटो काट जाएगा पता नहीं है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बताया जा सकता है। अगर फिर उसके बाद हो जाता है डेंगू, और इनमें घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन टाइम बहुत जरूरी है।
0: ठीक बात
1: है ना, टाइम से आपको इंटरवेंशन लेना बहुत जरूरी है। बहुत डेंगू और ये बीमारी ऐसे, इनमें बहुत दवाइयों की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। उसको आप एक डॉक्टर की सलाह से लोगे तो ठीक हो जाता।
0: आपने डॉक्टर की सलाह की बात की, चूंकि जमाना डिजिटल है, सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, और आजकल इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब आदमी देख के अपने खुद ही डॉक्टर बन जाता है, सेल्फ मेडिकेशन, तो वो कितना खतरनाक?
1: वो देखो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। सिंपल आपने ले ली, और लेकिन जब आप डिटोरिएशन हो रहा है तो उसके बाद आपने पहचाना, तब तक गाड़ी निकल जाती है। तो टाइम, डिसीजन और इंटरवेंशन, राइट टाइम, राइट डिसीजन, राइट इंटरवेंशन, सेव लाइफ और सेव मनी।
0: एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, एक मैं

0: एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति को अचानक ही सीने में दर्द हो गया या स्ट्रोक हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो गई या कोई और इमरजेंसी हो गई, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल? अस्पताल पहुंचने से पहले क्या कदम उठाने की ज़रूरत है और क्या वो चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं करना है, डोंट्स जो होते हैं?
1: सबसे पहले जो नहीं करना है बता दूं कि उसको मुंह में, अगर मरीज बेहोश हुआ है तो पानी नहीं पिलाना, पानी नहीं पिलाना। लोग बेहोश होते हैं उसको पानी पिलाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। क्यों? बेहोश है, उसके फेफड़ों में पानी चला गया तो आपने उसको धक्का दे दिया, वो नहीं जा रहा था,
0: धकेल
1: वो
0: दिया, नहीं जा रहा था,
1: तो
0: उसको भी
1: जलता
0: धकेल
1: रखे
0: दिया।
1: दिया। दूसरा, अगर आपके कहीं पे भी ऑफिस में, घर में, साथ में कभी अलग अलग तरह की इमरजेंसी आ सकती हैं, एक मरीज बेहोश होकर गिर जाता है, उसको हार्ट अटैक होता है मान लो, तो हार्ट अटैक होता है तो आपको उसका सीधा लेटा देना है बिल्कुल जमीन पे, और उसकी नाड़ी देखनी है, जो आपको लुक, लिसन एंड फील, और कंधे पे ठोक के कहना है आप ठीक हो। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो उसको उसकी सांस देखनी है, अगर उसकी सांस पेट के थ्रू मूवमेंट नहीं हो रहे हैं और कोई है तो आपको उसको दोनों हाथों से छाती के मध्य में बिल्कुल इस बोन पे कंप्रेशन करना है, चेस्ट को 4 से 5 सेंटीमीटर, और करते हुए हॉस्पिटल ले जाना है
0: सीपीआर देना है।
1: सीपीआर। दूसरा, अगर उसको एक साइड लकवा हो गया है तो करवट लेटा के तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है, क्लिनिक नहीं ले जाना, क्योंकि उसका अर्जेंट सीटी होना चाहिए, और उस वो डिसाइड करेगा कि उसको एक इंजेक्शन लगता है अर्जेंटली रिकवरी के लिए जरूरत है कि नहीं, वो गोल्डन आवर होता है। ऐसे ही किसी को अगर दौरा आता है तो लोग क्या करते हैं, दौरे में क्या करते हैं कि उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, दौरे के टाइम पे आप इतना पकड़ो कि ऊपर से डायरेक्ट फर्श पे गिरे नहीं, तो हेड इंजरी नहीं हो। दौरा आ गया तो अपनी साइकिल पूरी करेगा वो, तो उस साइकिल को आपको रोक नहीं सकते हो, आपको उसको धीरे से ऐसे रखना है कि गिरे नहीं और उसको जमीन पे लेटा देना
0: आप उसको जो फिजिकल एक डैमेज हो
1: है,
0: सकता है
1: बस
0: उसको
1: वो
0: बचाएं।
1: बचाना है। और अगर मुंह में रख सकते हो तो चम्मच या कुछ भी चीज हार्ड रख सकते हो, कि टंग बाइट नहीं हो, कटे नहीं, और कुछ नहीं।
0: दांतों के बीच में आ
1: हाँ,
0: जाती
1: बस
0: है
1: बस,
0: अक्सर।
1: अगर वो कर दिया अपने आप ठीक होगा, और दौरा खत्म हो जाए तो करवट से लेटाना है और हॉस्पिटल ले जाना है। सांप अगर काटने, गर्मियों, बरसात का
0: बरसात के
1: मौसम आ रहा
0: मौसम में
1: है,
0: चूंकि ये चीजें
1: कभी
0: होती
1: भी
0: हैं।
1: घबराना नहीं चाहिए, 100% ठीक हो जाता है मरीज। बाईगीर पे नहीं जाना चाहिए, बाईगीर पे जाते हैं लोगों की डेथ हो जाती है, ये मेरा सबसे एक निवेदन है। मैं इस हर साल 50-100 मरीज देखता हूं, लोग बाईगीर पे जाते हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए। 95% स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं, तो वो भय से मरता है आदमी, उसको एश्योरेंस चाहिए। एक कुछ 5-7% अगर किसी मरीज की निगलने में दिक्कत हो रही है, आंखें बंद होने लग जाएं, आप समझ लेना ये सांप जहरीला है। मेरे पास 3-4 घंटे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। अगर मैं नियर बाई हॉस्पिटल ले गया और वहां वेंटिलेटर, सांस का सपोर्ट मिल गया, वो 100% ठीक हो जाएगा
0: माने 3-4 घंटे हैं उसके बाद भी।
1: बिल्कुल। अगर पलक झपक रही है, समझ लो आंख पूरी नहीं खोल पा रहा है, तो ये सांप जहरीला है, ये एक निशानी है। फिर आपके पास 3-4 घंटे मैक्सिमम है, आप जितना जल्दी हो जाए, नहीं करना चाहिए, बांधना नहीं चाहिए, कट नहीं लगाना चाहिए, ये सब, इससे कुछ नहीं होता। कभी कभी ज्यादा टाइट बांध देते हैं तो मरीज का हाथ और काटना पड़ता
0: क्योंकि वो ब्लड फ्लो रुक
1: है,
0: जाता
1: रुक
0: है
1: जाता है।
0: तो वो एक गंभीर स्थिति हो
1: यस,
0: सकती है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में इस मोड़ पर अगर मैं कहूं कि हमारे श्रोताओं को एक कोई गीत अपनी पसंद का सुनवाएं तो कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
1: मैं गीत बहुत ज्यादा नहीं वो करता हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो पसंद करता हूं, जो नाम पिक्चर का गाना है,
0: चिट्ठी
1: चिट्ठी
0: आई,
1: आई है। जब
0: क्या
1: मैं
0: बात है।
1: एमबीबीएस में घर से बाहर गया छोटा था, तब वो गाने को सुन के जब मेरे को लगता था यार घर चलो,
0: तो
1: तो वो गाना
0: चलिए
1: मेरे को
0: सुनवाते
1: सबसे
0: हैं
1: अच्छा लगता
0: श्रोताओं
1: है।
0: को आपकी पसंद का ये गीत।

0: हर इंसान को आना चाहिए इमरजेंसी में, वो मतलब ऑर्गन डोनेशन। आपको अवेयर होना चाहिए कि अंग दान कितना महत्वपूर्ण है,
1: मानवता की सबसे बड़ी सेवा है,
0: लाइफ आफ्टर डेथ। तीसरा है डी एस्केलेशन, एंटीबायोटिक से रिलेटेड है, जिसमें एक बहुत बड़ा इशू है, नई दवाइयां आ नहीं रही हैं, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इससे इफेक्ट होना दवाइयों का कम हो गया है, तो फ्यूचर के लिए बहुत नुकसान है। डॉक्टर की बिना सलाह के दवाई नहीं लें, ये बहुत जरूरी है। और अगर आपको लग रहा है खुशी गूगल से और इससे देख के ऐसे करने से, आप सोसाइटी में इंडिविजुअल हर आदमी ऐसे ले रहा है, तो क्रॉस रेजिस्टेंस इतना हो रहा है कि आने वाले टाइम में हमारे पास दवाई नहीं होगी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। एक मेरा अवेयरनेस है स्ट्रोक जो लकवा, और उसके लिए उसमें आदमी को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर मेरे को लकवा हुआ तो मेरे को 4 घंटे से पहले, जैसे हार्ट अटैक होता है ऐसे ही ब्रेन अटैक में 4 घंटे से पहले हॉस्पिटल पहुंचना है। और पांचवा मिशन है एडल्ट इम्यूनाइजेशन। लोग कहते हैं कि वैक्सीन तो बच्चों के होते हैं, नहीं, एडल्ट के भी लगते हैं कुछ वैक्सीन। जब आईसीयू में मरीज आता है, मैंने इसलिए मिशन चलाया कि जब आईसीयू मरीज आता है तो मैं देखता हूं अभी सर्वाइवल नहीं है, तब हिस्ट्री लेता हूं, तो उसको वैक्सीन अगर लगा होता उसका तो बच सकता था। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने यही शुरू करा है जो HPV वायरस के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, कितनी डेथें इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से होती, अभी बच्चों
1: पुराने जमाने में वो
0: वैक्सीन था ही नहीं,
1: वैक्सीन।
0: अभी सरकार ने मास लेवल पे चल रहा है, तो ये वे 5 प्रोग्राम है। तो एंटीबायोटिक वाला इशू हम कवर कर रहे हैं। आज हमारा एटलीस्ट इंडिया में जो हमारी 115 ब्रांच हैं, हर जगह इस पे प्रोग्राम है।
1: बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इशू मैं आज समझता हूँ, खास तौर से अगर यूथ को एड्रेस करना चाहें हम, यूथ चूंकि फुल ऑफ एनर्जी है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं नशे की जो एक प्रवृत्ति है वो डेवलप होती है। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो वो लेते हैं, ई सिगरेट का चलन आजकल बढ़ता जा रहा है। चिकित्सकीय दृष्टि से अगर देखें तो इन सब के दुष्परिणामों को आप किस तरह से श्रोताओं के साथ साझा करेंगे?
0: ये देखो, कोई भी नशा बॉडी को कितना हार्म करता है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, दोनों ही हार्म करता है। और जो मेंटल स्टेटस की वजह से और संगत की वजह से ये जो हो रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटी और उनमें बहुत ज्यादा हो रहा है, और इन लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लंग की बीमारियां, ई सिगरेट, ये सबसे इतना ज्यादा डिटोरिएशन होता है, और जो यूथ है अपने एम से भटक रहा है। तो ये बहुत वो है, सरकार इसके लिए लगी हुई है। मेरे को लगता है परिवार में एक बहुत बड़ा इशू है ट्रेनिंग में, कि भाई नशा तो बिल्कुल भी किसी चीज का इतना खराब है कि उसने जितना बचा जा सकता है उतना बचना चाहिए।
1: युवाओं को वो जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, अपना रोल समझना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम युवा देश हैं और हमारे यहाँ सबसे बड़ी युवा आबादी है, तो युवाओं को अपनी भूमिका है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, एक और चूंकि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है तो मैं डॉक्टरों के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। चूंकि हम बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनके जो कार्यभार है जिसको हम कहें वो भी बढ़ता है, तनाव है उनके ऊपर भी, और आजकल तो बहुत सारे हम ऐसे केसेस भी देखते हैं जहां पर लोग एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, और कई कई जगह पे तो हम हिंसा की घटनाएं भी देखते हैं। वाकई में ये सब चीजें चिंता की बात हैं। तो समाज को या जो मरीज हैं उसके तीमारदार हैं उनकी जिम्मेदारियों को आप किस तरह से श्रोताओं के साथ साझा करेंगे?
0: देखो, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और आज के सिनेरियो में ये घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे,
1: जी जी,
0: बहुत ज्यादा घटना बढ़ी है। एक आदमी का रोड साइड जा रहा है, ड्रिंक करके जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, और वो उसके उसकी वो नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में आके अगर उसकी डेथ होगी तो वो ब्लेम उधर होता है कि डॉक्टर ने। डॉक्टर भगवान नहीं है, अपना कर्म कर सकता है कि भाई ये मेरा काम है, उसको सबको नहीं बचा सकता। जैसे कोरोना में बहुत सारे डॉक्टर नहीं बचे, तो मेरा जो सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि आप पहचाने पहले, जाने कि भाई मैं इलाज कराने लाया हूं, कई बार जरूरी नहीं है कि सब ठीक हो जाए।
1: डॉक्टर्स की भी सीमाएं हैं,
0: सीमाएं हैं, और ओवर रिगार्डिंग वर्क कह रहे हैं तो वर्कलोड तो ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पब्लिक

0: एक चीज और सर, जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट है, AMR एंटीबायोटिक्स का अनचाहा उपयोग, माने बहुत ज्यादा, चूंकि एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा तादाद में ली जाती हैं, तो वो कितनी गंभीर समस्या आ पाते हैं? और चूंकि इसके बारे में सामान्य जनता है उसमें अवेयरनेस उतनी होती नहीं है, तो एक सरल से शब्दों में AMR को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे और उनको इसके प्रति कैसे आगाह करेंगे?
1: ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में ये सवाल कहा था। मैंने प्रेसिडेंट बनने के बाद ISECM का मैंने एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में मेरा एंटी माइक्रोबियल जो पांच मेरे ड्रीम हैं
0: जी
1: जनरल पब्लिक के लिए, कोड लाइफ, कोड मतलब CPR,

0: के हिसाब से, लेकिन सरकार उसके लिए कई काम कर रही है, मेडिकल कॉलेज बढ़ गए हैं, लेकिन भयमुक्त वातावरण बहुत जरूरी है। आज की डेट में कई बार मेरे को लगता है कि ये पेशेंट मेरे से ज्यादा वो करेगा तो डॉक्टर बचता है इलाज करने से, वो चाहता है मैं भर्ती नहीं करूं, मैं भेज दूं, ऐसा नहीं, विश्वास होना चाहिए। ये प्रोफेशन टोटल फेथ का
1: फेथ
0: है,
1: का है, बिल्कुल सही
0: टोटल
1: बात है।
0: 100% अगर प्रोफेशन फेथ का है तो वो डॉक्टरी है, और फेथ नहीं है तो आपको उस डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। मैं यही करता हूं, जहां फेथ है वहीं इलाज कराना चाहिए।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वस्थ भारत निर्माण में चिकित्सकों की भूमिका विषय पर डॉक्टर रणवीर सिंह त्यागी से अनिंद्र सिंह की बातचीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 4 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: नंदन वंदन अभिनंदन नमस्कार सुस्वागत आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्जर, एक ऐसे सिपाही से जिसने अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने लिए, अपने देश के लिए हमेशा परचम लहराया है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह सहस्त्र सीमा बल से। सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के मेहमान हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी का। भागिंदर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम। जय हिंद मैम।
0: जी जय हिंद। और आप जैसे सोल्जर्स से सिपाहियों से जब भी हम मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सीना जो है वो गर्व से फूल जाता है और हम ये महसूस करते हैं जैसे हम भी ना कहीं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता यहाँ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञापित कर रहे हैं। और आपकी जो मंद मुस्कान है, प्यारी सी मुस्कान है, वो इस बात का सबूत है कि 20 सालों से आपने जो अपनी सेवाएं दी हैं सहस्त्र सीमा बल के माध्यम से देश के प्रति, अत्यंत गौरवशाली रही होंगी। और आज हम अपने सभी श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं कि 2005 में भागिंदर सिंह जी ने सहस्त्र सीमा बल में अपना पदार्पण कर अपने आप को वहां दर्ज कर अपने लिए एक मुकाम हासिल किया और इस मुकाम को, इस यात्रा वित्रांत को इन्हीं के माध्यम आज हम सुनेंगे। तो आपका हम पुनः स्वागत करना चाहते हैं भागिंदर जी, और आप ही से जानना चाहते हैं कि ये जो 20 सालों की जो यात्रा है कितनी सुखद रही है।
1: जी मैम। जय हिंद।
0: जी जय हिंद।
1: सबसे पहले तो मैं एफएम रेनबो को अपनी पल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो कि एफएम रेनबो के सभी कर्मियों को। मेरा जीवन बहुत सरल है मैम। मैं अपने गांव से रामपुर भांगड़ से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर जो कि जेवर के पास है। मेरा जीवन जो है प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ, सरकारी स्कूल से, वहीं से मेरा जीवन स्टार्ट हुआ है, वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मेरे पापा जी जो है एक किसान हैं, मध्यम परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। हम दो भाई दो बहनें हैं और मेरी पत्नी, दो बच्चे।
0: वाह क्या बात है, सच में आपका जीवन बहुत ज्यादा सरल है। पर यही कहूंगी कि आपकी सोच और आपकी सोच में जो आपके कर्म है वो सर्वोपरि हैं और आपकी जो सोच है यही आपको सहस्त्र सीमा बल की ओर ले गई। आप सर्वप्रथम हमें ये बताएं कि क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपको ये प्रेरणा दी कि आपको भी फौज में भर्ती होना चाहिए।
1: मैं बताना चाहूंगा, मेरे गाँव में पुराने समय से ही काफी फौजी हैं, छोटा सा गांव है पर फौज में काफ़ी जो मात्रा में जो लोग हैं, जिसमें कि मेरे परिवार में से ही मेरे दादाजी, बाबा, दो ताऊजी और मेरे जो है ताऊजी के चाचा जी के जो लड़के हैं, हम पांच भाई हैं, पांचों में से चार जो है अपने जो है फौज में हैं मैम।
0: वाह क्या बात है। तो कहीं ना कहीं वो परिवेश था, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये अनुभूति पहले से हो गई थी कि आपके लिए वो रास्ता कौन सा है।
1: जी मैम बिल्कुल। ये जो है मेरे को प्रेरणा जो मिली है मेरे जो है ताऊ के लड़के थे उनसे, मेरे ताऊ जी से और गांव के जो फौजियों से, उनसे मिली है मैम। मेरे को भी दिल था कि मैं भी जो है ये जो कैमोफ्लाइज वर्दी पहन के आते हैं जो ये मैं पहनूं और देश की सेवा करो।
0: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से आप लगातार किस्से कहानियां सुनते होंगे और उन किस्से कहानियों ने कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि हमारे मन में एक सपनों का सागर बनने लगता है, तो सपनों के सागर की ओर आकर्षित आप उन किस्से कहानियों से जरूर हुए होंगे।
1: जी मैम। मेरे जो ताऊ जी थे वो फौज में थे, उन्होंने पाकिस्तान की लड़ाई देखी है तो पाकिस्तान के किस्से कहानियां सुनाया करते थे काफ़ी मात्रा में। जब जो 1962 में युद्ध हुआ था मैम, तो उसमें से जो है काफ़ी मात्रा में जो है हिंदुस्तान ने उनके जो सैनिक

0: बंदी बनाए थे और लड़ाई जीती हैं। काफी बार उन्होंने अपने बल का नाम रोशन किया है, हमारे जो ताऊ जी थे, तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली मैम।
1: जी बहुत बढ़िया। तो जब आप वो किस्से कहानियां सुनते थे तो क्या रग रग में, कहते हैं ना कि आपके जो आपका जो लहू होता है उसका संचार और भी ज्यादा तेज हो जाता है, कैसा होता था आपके साथ?
0: जी मैम, जैसे ही मैं किस्से कहानियां सुनता था तो मेरे अंदर एक अलग ही जोश होता था। सुबह को उठना, 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, दौड़ भाग करना कि बस अब फौज में ही जाना है, बस और किसी की तैयारी नहीं थी मैम, सिर्फ ओनली फौज।
1: वाह क्या बात है। तो उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम रही होगी।
0: जी मैम, मेरी उम्र जो है, मैं 8वीं 7वीं से ही मैम जो है मैं फौज की तैयारी में लगा हुआ था। मेरा जो है गेम था, फिजिकल मेरे पहले से ही टफ था मैम। मैं कुश्ती और वेट लिफ्टिंग का बहुत शौकीन था मैम।
1: जी, तो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर आप फौज में गए,
0: जी मैम,
1: तो क्या प्रक्रिया रही, कैसे गए?
0: मैं जैसे किस्से कहानी सुनता था तो मेरी जो प्रक्रिया मेरे पापा जी से स्टार्ट होती है। मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते थे, उनसे बोल देना तो मेरे को 3 बजे उठना है, तो उनको यार रात में 4 बजे उठना पड़े, 5 बार उठना पड़े, 6 बार, वो मेरे को सिर्फ उसी टाइम पर जगाते थे मैम जब मैं उनसे बोलता था।
1: वाह क्या बात है। तो निश्चित रूप से जब आप सेलेक्ट हुए होंगे तो पिताजी तो बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आप के ताऊ जी के बच्चे, ताऊ जी आपके
0: जी
1: बाबा
0: जी
1: सब फौज में रहे, लेकिन
0: जी
1: आप चार भाई बहन,
0: जी
1: इनमें से कोई फौज में नहीं था।
0: जी
1: पिताजी खुद जो है उन्होंने देश का दूसरा कार्यभार संभाल रखा है। वो कहते हैं कि कृषि जो है हमारे जीवन का आधारभूत स्तंभ है,
0: जी
1: तो वो वहां मिट्टी से जुड़े हुए और आप फिर मिट्टी से फिर जुड़ गए देश के प्रति।
0: जी
1: तो उस वक्त उनके अंदर क्या चल रहा था कि बेटा अब सशस्त्र सीमा बल यहां अपनी सेवाएं देकर देश के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठा निभाएगा?
0: मैम, मेरे परिवार में से किसी ना किसी घर में से 2 या 3, किसी के 2 लड़के हैं, 2 भी भर्ती उसी में सेना में, 3 है 3 भी। सिर्फ एक मेरा परिवार ऐसा था जो कि सेना में भर्ती नहीं था। उसके बावजूद मैम, मेरे पापा जी को जब ऐसा लगा कि ये सेना में भर्ती हुआ है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे परिवार में खुशी की एक लहर दौड़ गई मैम, घर में, परिवार में, गाँव में, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे परिवार में से भी कुछ है। और जब मैं आ रहा था तो बोले, बेटे कभी भी फौज में बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं सुनता भी रहता था कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, लोग जो है छोड़ना करते हैं, ऐसा मत करना जो है। तो मैंने पापा जी को आश्वासन दिया, मैं कह ऐसा कभी नहीं होगा,
1: वाह क्या
0: मेरे को
1: बात
0: देश
1: है,
0: से बहुत प्रेम है, मैं कभी नहीं आऊँगा।
1: वाह क्या बात है। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना, फैमिली सिस्टम, इसकी खास बात यही है।
0: जी
1: जिस तरह से बेटियों को जो ब्याह जाता है, कहा जाता है कि जो जहां तुम जा रही हो वही तुम्हारा घर है, इसी प्रकार आपके पिताजी ने भी आपसे कहा कि
0: जी
1: वापस लौट कर मत आना,
0: जी
1: लेकिन शिद्दत के साथ ट्रेनिंग अपनी, तालीम अपनी पूरी हासिल करना। तो फिर बताइए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई, कितने अंतराल की थी और कितनी जटिल, कितनी मुश्किल थी?
0: मैडम, मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2005 में दिसंबर 15 को, तो मेरी ट्रेनिंग का ज्वाइनिंग मैंने दिल्ली 25 बटालियन घटोरनी में करी थी 15 दिसंबर 2005 को। तो उसके बाद मेरी ट्रेनिंग पीनातोली उत्तराखंड में हुई मैम, तो 1 साल की ट्रेनिंग थी। 1 साल ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 18 बटालियन बीरपुर बिहार में।
1: वाह क्या बात है। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है? वो पल याद आते हैं, क्योंकि जब हम युवा होते हैं बहुत उमंग होती है, लेकिन अगर एक सिपाही की बात की जाए, एक सैनिक की बात की जाए, तो उसका जोश ना उतना का उतना रहता है। हम जितने भी ऑफिसर से मिलते हैं वो यही कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा जीना चाहते हैं। तो जो 20 सालों का जो समय रहा है जिसमें आप अपना योगदान दिया है और अभी भी कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्मठ सैनिक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो अभी भी क्या महसूस होता है कि काश वो पल दोबारा से आ जाए, दोबारा से जिए उनको।
0: मैम, बचपन के पल वापस तो नहीं आते, पर
1: जी
0: बहुत यादें जुड़ी रहती हैं, और काफी मात्रा में मैं जो आपको बताना चाहूंगा, मेरी यादें काफी जो है ऐसे काम करें जो मेरे को याद आते हैं।
1: वाह क्या बात है। निश्चित रूप से आपने जो भी कार्य किए हैं इन 20 सालों में और जो आगे भी करेंगे काबिले तारीफ रहेंगे, लेकिन उनके पीछे की सोच सिर्फ देश प्रेम है ना,
0: जी मैम,
1: और हमेशा जहन में ये चलता रहता हूं कि देश के प्रति हमें कार्य करना है और देश का झंडा यूं ही लहराता रहे, इसके लिए हमेशा हमें कार्य करना
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम,
1: तो जैसा कि इन्होंने खुद कहा, हेड कांस्टेबल भागेंद्र सिंह जी ने,

ये बहुत सी यादें इनकी जुड़ी हुई हैं सशस्त्र सीमा बल से, बहुत सारी बटालियंस में आपने अपना योगदान दिया होगा, जगह जगह आपको डिप्लॉय किया गया होगा, उनसे जुड़ी हुई सारी किस्से कहानियां आज इनके माध्यम से हम जरूर सुनेंगे।

0: आप सभी का पुनः स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और आज के इस अंक में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी सहस्त्र सीमा बल से। और इनकी कहानी बहुत रोचक है जिसे इन्होंने खुद ही बताया कि किस तरह से इनका बचपन इतना शानदार रहा है। जिसका बचपन इतना शानदार होगा उसका वर्तमान, और आगे चल के कहते हैं कि हमारा जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य बनाता है, तो भविष्य तो सुखद ही होगा निश्चित रूप से। और सुखद उस व्यक्ति का जरूर होता है जिसे वो प्राप्त हो जाए जिसकी वो कामना करता है, क्योंकि जिसकी हम कामना करते हैं उसके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं भागिंदर जी। क्यों, सच कहा ना? और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आपने मेहनत भी की, बहुत वर्जिश की, बहुत मेहनत करी और ईश्वर की कृपा से आपको वो प्राप्त हुआ जिसकी कहानियां, जिससे जुड़ी हुई कहानियां आप बचपन से सुनते आ रहे थे।
1: जी मैम।
0: जी आप वर्तमान में 25वीं बटालियन सहस्त्र सीमा बल से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कौन कौन सी बटालियन से आप जुड़े रहे और हर बटालियन की कुछ ना कुछ विशेषताएं रही होंगी, अलग अलग तरह के कार्यभार आपको दिए गए होंगे, वो सब बताएं हमें।
1: जी मैम, मैं सबसे पहले पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद 18 बटालियन वीरपुर बिहार में हुई, उसके बाद मैं फोर्स हेडक्वार्टर जो है डी जी टीम से कुश्ती के लिए क्लोज किया गया, तो मेरे को यहाँ पे गेम में काफ़ी दिन गेम रहा। उसके बाद मेरे को जो है डेप्टेशन एनएजी के लिए डेप्टेशन हुआ, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया।

0: एनएजी करने के बाद वापस मैं 18 बटालियन में आया, 18 बटालियन के बाद 35 बटालियन में आया, जिसमें कि जो है झारखंड में थी।
1: क्या बात है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपको तो जैसे कि मैंने स्वयं अभी कहा, आपने पहले कहा कि वेट लिफ्टिंग में आपको सम्मान प्राप्त हुआ, तो जो आप वर्जिश करते रहे, सेनाओं में रहते रहते आप करते रहे, और साथ ही साथ आप खेलों के प्रति भी आपका रुझान, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में आपको गोल्ड मेडल भी मिला है, तो ये साथ साथ आप करते रहे, और कितना समय निकाल पाते?
0: मैम मैं जो है जब मेरे से ड्यूटी से समय मिलता था तो मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखता था, तो उसके बाद मेरे को मेरे बल ने मेरे को मौका दिया, मेरे को हेडक्वार्टर बुलाया और मेरे को टीम में शामिल किया, कंपटीशन करके मैं वहाँ पे आया, तो मैंने अपनी एसएसबी में अपने बल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया मैम।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक प्रश्न जो है मैं भूल रही हूँ, मुझे लगता है कि उस प्रश्न को यहाँ जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 20 सालों का यह सफर यादगार रहा है और आगे भी रहेगा। आपसे वो लोग मिलते होंगे जरूर जो आपके साथी होंगे, और कहीं ना कहीं कहते होंगे, कुछ ये कहते होंगे कि तुमसे प्रेरणा मिली, और कुछ ये कहते होंगे कि काश हम भी तुम जैसे बन पाए, ऐसा होता है?
0: हाँ मैम, काफी लोग मेरे जो मित्र हैं बल्कि काफी मिलते हैं और बहुत मतलब मेरा साथ देते हैं, बोलते हैं यार आपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और आप इस लायक थे, काश हम भी आपके साथ होते, और बोलते हैं और वो होते उस टीम का हिस्सा तो हो सकता है मेरे से भी अच्छा करते हो।
1: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा वो लोग जो सीमा में यानी कि सशस्त्र सीमा बल में आने से पहले, आपके वहां जुड़ने से पहले वो साथी, वो भी तो आपसे प्रभावित हुए होंगे या होते होंगे, कहते होंगे, कुछ साथी ऐसे भी होंगे कि जो आज खुद सेनाओं में है, कुछ खुद फौज में है, तो वो उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी, और क्या ऐसा समान था उस वक्त जब आप तैयारी कर रहे थे, आपके साथ में बहुत से लोग और तैयारियां कर रहे होते?
0: मैम ज्यादातर जो है हमारे गाँव में से काफी लोग होते हैं, लास्ट में जैसे कि मैं बताना चाहूंगा सभी भर्ती हो लेते, लास्ट में मैं हुआ था, तो जितने भी तैयारी करते थे ज़्यादातर लोग सेना में भर्ती हो गए, और कुछ थे जो हमारे साथी थे जो कि नहीं हो पाए, जैसे कि मेरा एक मित्र था योगेश शर्मा, वो जो है कोशिश भी किया पर भर्ती नहीं हो पाया।
1: तो उनके मन में मलाल रहा होगा कि काश हम भी तुम जैसे बन पाते, काश।
0: हाँ मैडम बिल्कुल बोलते हैं।
1: अच्छा कुछ ऐसे भी होंगे ये बोलते होंगे कि तुम्हारी वजह से हम आज वहां हैं, हम भी आज सेनाओं का हिस्सा हैं, हम भी अपना गर्व से सीना चौड़ा करके चलते हैं, कुछ प्रेरणा स्रोत?
0: नहीं मैम ऐसा साथ में बोलते थे कि क्यों हमारे जो साथी थे जो हमारे साथ दौड़ते भागते थे वो एक दूसरे का एहसान जरूर मानते, और कुछ हमारे जो सीनियर थे जो फौज में थे वो स्टाफ वॉच लेके मैम सभी को दौड़ाते थे, तो वो यादें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनमें हमारे जो लगने में सिर्फ हमारा ही मेहनत नहीं, हमारे गांव के फौजियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने भी हम पे काफ़ी मेहनत करवाया, स्टाफ वॉच लेके खड़े होना, फौज में क्या होता है, भर्ती की तैयारी कैसे की जाती है, ये सब कुछ बहुत मतलब
1: सुखद रहा है मतलब जी, जी। अच्छा मैंने तो ये भी सुना है कि आप भी तैयारियां करवाते थे?
0: जी मैम मैं जो शुरू से ही जो कुश्ती में और गेम में था, तो जो मेरे कोच थे नेपाल पहलवान, तो उनसे मैं कोचिंग लेता था, तो उसी प्रकार की मैं जो एक्सरसाइज वगैरह अखाड़े में इसमें करवाता था, तो उस प्रकार से मैं दौड़ भाग बताता था, इस प्रकार से करना है, डंड ऐसे मारनी है, बैंड ऐसे करना है, सेटअप ऐसे लगाने, तो उस प्रकार की मैं जो है उनको ट्रेनिंग देता था मैम।
1: तो जो आप ट्रेनिंग देते थे उसके उपरांत जब उनके नतीजे आते थे निकल कर, तो कैसा महसूस होता था, और कितने दोस्तों को आपने ट्रेनिंग दी, और आप आपकी नियुक्ति कब हुई?
0: मेरी नियुक्ति 2005 में हुई।
1: जी ये तो आपने मुझे बताया, तो क्या उन दोस्तों से पहले नियुक्ति हो गई थी उनके बाद हुई?
0: उनके बाद में हुई मैम मेरी। अच्छा। सबसे बाद में मेरी नियुक्ति हुई थी मैम, और जो है मैंने काफी और ज्यादा लगन से मेहनत करी, मेरे साथ के सभी लग गए जिनको मैं
1: सिखाता था
0: वो लग गए, तो मेरे को और भी ज्यादा लगन हुई, मैंने और ज्यादा कड़ी मेहनत करी और फिर जो है अपनी एसएसबी बल में
1: भर्ती। तो आपने अपने साथ साथ सबकी नैया पार लगाई, यानी कि मास्टर जी?
0: नहीं मैं नैया तो नहीं खैर ये बोल सकता।

0: जो हमारे उनका मेहनत थी उनका फल था मिला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत का फल जरूर व्यक्ति को मिलता है अगर उसमें ये भावना हो कि उसे प्राप्त करना है। और कहते हैं कि फौज तो वैसे भी आपको लक्ष्य को प्राप्त करना सिखाता है,
0: जी मैम,
1: अपने आप से लड़ना सिखाता है। कहते हैं जब अपने आप से लड़ जाते हैं तो आप विजयी तो वही हो जाते हैं, और जब देश प्रेम की भावना हो तो बात ही कुछ और होती है। तो आज हमारे साथ भागेंद्र जी हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद, जो हेड कांस्टेबल हैं सशस्त्र सीमा बल में। इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, भले ही इस बात का श्रेय ना लें, लेकिन हमारे लिए तो हम यही कहेंगे कि हर एक सैनिक, हर एक ऑफिसर जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश प्रेम मन में लिए, हमारे लिए दिन रात का चैन खोकर अपने प्राणों का भी ध्यान न रखते हुए अगर हमारे लिए मुस्तैद है, तो हम यही कहेंगे कि आप जैसा कोई भी नहीं। तो इन मिट्टी के रखवालों को हमारी ओर से सलाम सलाम और सलाम। और जैसे कि मैंने कहा था कि भागेंद्र जी का तो जुड़ाव मिट्टी से बहुत गहरा है, क्योंकि पिताजी ने मिट्टी में से फूल उगना सिखाया है और इन्होंने उसी मिट्टी को तिलक बनाया है।
0: जी।

आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हवलदार भागिंदर सिंह जी, सहस्त्र सीमा

0: बल से। और हमारे लिए बहुत ही सुखद पल है ये, क्योंकि आप जैसे सिपाहियों से, वीरों से जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित हम महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां हर सिपाही अपने हाथ में अपने जीवन को लेकर चलता है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और देश सेवा में अपने आप को समर्पित कर देश के प्रति अपने प्रेम को यहाँ दर्शाता है। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपके मन में कोई भी बात हो, आप कोई भी बात साझा करना चाहें, भागिंदर सिंह जी कोई कोई संदेश देना चाहें, तो आप 9868107070 इस नंबर पर हमें संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे पास बहुत सी बातें हैं भागिंदर सिंह जी से जानने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम बार बार ही कह रहे हैं कि 20 सालों का यह सफर बहुत यादगार इनके लिए रहा है। बहुत सी बातें हैं, बहुत से किस्से हैं, बहुत सी कहानियां इनके जहन में जरूर होंगी जो साझा करना चाहेंगे हमारे साथ। लेकिन आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहां जानना चाहती हूं। 10 जुलाई 2020 क्या हुआ था? क्या हुआ था जिसके बाद आपके चेहरे की जो मुस्कान मुझे बता रही है कि कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने आज आपको और भी गौरवान्वित महसूस करवाया, और आप उस बात का जिक्र बार बार करना चाहते हैं। क्या हुआ था 10 जुलाई 2020 को?
1: मैं बताना चाहूंगा, 10 जुलाई 2020 को मैं झारखंड में पोस्टिंग था 35BN में। एक मैम, हमारी जो झारखंड में एक स्मॉल एक्शन टीम हुआ करती थी, उसका गठन जो है संजय सर ने किया था, IPS संजय सर ने, और हमारे बल ने, SSB ने उसको बहुत सहारा था। हमारे जो बल की जो सबसे बड़ी नीम है हमारे डीजी साहब ने जो है अपनी SSB को जो कई बार मौका दिया है ऑपरेशन करने का। और उसका तो ये ऐसा था मैम, जो झारखंड में जब हम गए थे तो झारखंड में माओवादी बहुत चरम सीमा पर थे, जो कि दुमका, पाकुड़, देवघर, ये जो चार पांच जो जिले थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आम पब्लिक बहुत परेशान थी, लेवी वसूलना, आम पब्लिक को परेशान करना, फौज पर अटैक करना, ये काफ़ी जो है गतिविधियां होती थी वहाँ। तो ये 32 बटालियन थी जिसके जो है सर थे दीपक सर, वो भी थे उस ऑपरेशन में। संजय सर थे IPS IG संजय सर, और DIG सुमित जोशी सर थे, मनोरंजन पांडे कमांडेंट सर थे, और दीपक सर कमांडेंट, और ललित शाह DC डिप्टी कमांडेंट, नरपत सर डिप्टी कमांडेंट, ये काफ़ी जो है हमारी टीम के हिस्से थे, जो कि उनके द्वारा जो है ये ऑपरेशन किया गया। और इस टीम में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टीम का गठन किया था वो संजय सर ने किया था, कि कोई एक ऐसी टीम हो जिसे मैम इनका जो है नक्सलियों का सफाया करा जाए। तो उस टीम का नाम रखा गया सेट टीम, स्मॉल एक्शन टीम। तो स्मॉल एक्शन टीम जब उसका नाम रखा गया तो उसकी ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड जो है करवाई गई, हर एक प्रकार के उसमें जो है ट्रेनिंग में, जो कि अच्छे बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कुछ करा मैं
0: जी। अच्छा, फिर ये बताइए कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, चयनित हुए, क्योंकि आपकी टीम में मतलब आपकी जो बटालियन थी उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपका एक मेंबर के रूप में चयनित होना कितना गौरवशाली था? उस वक्त कैसा महसूस हुआ कि मेरा चयन हुआ है, मैं टीम का मेंबर हूँ, कैसा लगा आपको?
1: जी मैम, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा और खुशी भी होगी मैम कि इसके बारे में मैं बताऊँ। तो IG जो IPS IG संजय सर थे वो, और अपने जो है DIG सुमित जोशी,

0: मनोरंजन कमांडेंट सर, ये अपना ललित सर, टू आई सी नरपत सर, डीसी, ये सभी आते थे और उनकी सभी लोगों की ट्रेनिंग होती थी वहाँ, उनका टेस्ट लिया जाता था, उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता था। तो मेरा जब सिलेक्शन किया था टीम में हमारे सर ने, सुमित जोशी सर ने, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी कि ये जो है स्ट्रक्चर भी अच्छा है और जो है लीडर भी अच्छा बनेगा, तो इसको जो है एज ए स्ट्रक्चर और टीम का CHM बना दिया जाए।
1: वाह।
0: दो नंबर टीम का मैम एक प्रदीप कुमार था जो मेरा मित्र था, वो दो नंबर टीम का मैं CHM था, एक नंबर टीम का CHM वो था।
1: वाह, बहुत खुशी हुई होगी। किस किस के साथ साझा किया कि मैं मेंबर हूँ, किसी के साथ साझा किया था उस वक्त?
0: नहीं मैम, ये साझा तो ऐसी
1: नहीं किया जाता,
0: नहीं किया
1: तो ऑपरेशंस के दौरान
0: किया जाता, मगर जो है टीम जो है एक ही माइंड के, एक माइंड सेट के, सभी की सोच एक सी हो, ऐसी टीम मिलना बड़ा मुश्किल है,
1: होता है।
0: जो कि हमारे बल ने ऐसी टीम को ढूंढा और सबको एकत्र किया और टीम का हिस्सा बनाया। उसमें ऐसा मैम कभी हमें फील नहीं हुआ कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे प्रति कुछ ऐसा हो, एक जगह रहना, एक जगह खाना, कभी ऐसा नहीं, भाई की तरह रखना, बिल्कुल कोई भी वो नहीं। जो ट्रेनिंग एक जवान करता है वही एक ऑफिसर करता है, बराबर जितना वर्क वो करता है उतना ही वर्क, कोई ट्रेनिंग में कोई कैसी भी जो भाईबंदी नहीं होती मैम।
1: बिल्कुल, एक टीम की तरह काम करते हैं
0: जी, जिसमें कि मैम जो है IG जो संजय सर और DIG सुमित जोशी सर ये रहते थे, तो उसमें कोई भाईबंदी की कोई गुंजाइश नहीं, वो कोई भी हो अपना सात सात दिन की मैम हमारी जो है वहाँ पे जंगल ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी चीजें मैं बता भी नहीं पाऊंगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल, अंदरूनी बातें हैं, और जब हम कहते हैं जब आपकी फोर्स की बात होती है तो बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनको हम उनके सिर्फ हम उनका सिर्फ निर्णय हमारे सामने आता है कि विजयी रहे हैं और विजयी प्राप्ति हुई है, लेकिन ऑपरेशंस की बात यहाँ नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम भी यही चाहेंगे कि आप अपनी फोर्सेस की या अपने बल की गरिमा को बनाए रखें। अब बात आती है कि 2024 में राष्ट्रपति द्वारा आपको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया इस एंटी माओवेस्ट ऑपरेशन के लिए। उस वक्त तो लगा होगा कि जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि सम्मान प्राप्त करना गौरव की बात तो होती है, लेकिन ये लगता है कि जब मेरा चयन किया गया, हमारी पूरी टीम विजय हुई है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी अब बढ़ गई है, उस वक्त क्या सोचा आपने?
0: मैम देखो, बहुत मेरे को खुशी भी बहुत ज्यादा हुई और एक जिम्मेवारी भी बढ़ गई। जैसे ऐसा होता है ना मैम, जैसे कि आम का पेड़ होता है, जब आम आते हैं ना तो वो झुक जाता है, तो उसी प्रकार से मेरे को जितने भी मेडल लगे, जितनी DGDs मिली हैं, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जब मैं डिसिप्लिन में रहूँगा तो हमारे जवान भी डिसिप्लिन में रहेंगे, तो जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं बढ़ती है मैम।
1: बिल्कुल, सम्मान हर्ष देते हैं, सुखद अनुभूति कराते हैं, गौरव महसूस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इन कंधों को और चौड़ा करके चलना है, और जैसा कि आपने कहा कि डिसिप्लिन में रहना है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। आपने एक बात और कही कि बहुत सारे सम्मान और आपको प्राप्त हुए हैं, ये भी बताएं हमें, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप हमारे जितने भी सुनने वाले हैं जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे, आंतुर हो रहे होंगे जानने के लिए, वो और कौन से सम्मान हैं जिनसे नवाजा गया आपको?
0: जी मैम, मेरे को पुलिस मेडल मिला है मैम, और आंतरिक सुरक्षा मेडल मिला है, डीजी साहब की तरफ से मेरे को सिल्वर DGDs मिली है, गोल्डन डीजी डिश वन स्टार, गोल्डन डीजी डिश टू स्टार, और प्रशंसा पत्र हमारे डीजी साहब ने, आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने, कमांडेंट सर ने, काफ़ी मात्रा में मेरे को जो है प्रशंसा पत्र भी मिली, काफ़ी जो है मेरे को नगद इनाम भी दिया गया मैम।
1: वाह, क्या बात है। और आपके जो पदक हैं इस वक्त आपने धारण किए हुए हैं ठीक अपने वक्ष पर, तो वो जिस तरह से चमक रहे ना, उनकी दीप्ति, उनकी चमक आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है, और ये सच्चे देश प्रेम की गाथा है शायद।

0: अपनी आंखों से ना देख पाएं, लेकिन मेरे शब्दों के माध्यम से आप उस चमक को, उस दीप्ति को महसूस कर सकते हैं जब किसी सिपाही को, किसी सोल्जर को सम्मान दिया जाता है। और यकीन मानिए, ये सम्मान यूं ही अर्जित नहीं किया जाता, इसके लिए कर्तव्य निष्ठा चाहिए, देश प्रेम चाहिए और बहुत सारी मेहनत चाहिए। और वो मेहनत और वो देश प्रेम आपके चेहरे पर आपके पदकों के साथ एक साथ खिल रही है। हम बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति के साथ, आप जैसे सिपाही के साथ जो सशस्त्र सीमा बल में रह कर अपना योगदान दे रहा है, काबिले तारीफ है। तो एक नगमा हमारी ओर से आपके लिए, क्योंकि आप जैसे जो सिपाही हैं जो ये सोचते हैं कि हमें बस चलते रहना है, रुकना तो कभी सीखा ही नहीं
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: मैम।
0: तो उनके नाम हमारी ओर से ये नगमा बहुत ही प्यारा है, कर्मा फिल्म का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बेहद पसंद आने वाला है।
1: जी।

0: पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर। और आज का अंक हर बार की तरह बहुत ज्यादा खास है क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह, सहस्त्र सीमा बल जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया और इसके अलावा कई पुरस्कारों से ये अलंकृत हैं। और हम यही कहेंगे कि आप जैसे सिपाहियों से जब हम रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में ये बात जरूर उठती है कि काश हम भी आप जैसे बन पाते, काश हम भी इस प्रकार देश की सेवा कर पाते। पर कहते हैं कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने चुना है, अपने अपने कार्यों को कहते हैं ईमानदारी के साथ करने के लिए। तो जिस कार्य के लिए आपको चुना उसको आप बखूबी बहुत प्यार से सम्मान से निभा रहे हैं। एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा कार्य था, कौन सी ऐसी बटालियन थी, कौन सा ऐसा रोल था आपका जो आपको लगा कि अगर ये ना मिलता तो शायद कुछ अधूरा रह जाता, कोई कोई ऐसा है?
1: मेरा ये 35 से जो बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, जो कि वहाँ के जो कार्य थे काफ़ी जो है मेरी यादों में घुले मिले हैं।
0: जी, तो जब दूसरों से बात करते होंगे, बताते होंगे तो जरूर जिक्र करते होंगे, है ना?
1: बिल्कुल जिक्र करते हैं मैम।
0: अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इन 20 सालों में बहुत सारे मिशन्स रहे होंगे जिसके आप हिस्सा रहे होंगे, उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स भी आपके जो कहते हैं आपकी सर्विसेज में शामिल रही होंगी, तो किस किस तरह से आपको प्रशिक्षित किया गया लगातार जिससे कि आपको स्वावलंबी बनाया जा सके, जिससे कि आप सहस्त्र सीमा बल के लिए वो कहते हैं ना कि मजबूत, एक मजबूत सिपाही बन सकें, तो कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग थी जो आपको प्राप्त हुई?
1: जी मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने SSB में कमांडो कोर्स किया, उसके बाद जो है NSG ब्लैकेट कमांडो कोर्स में गया, वहाँ पे एक कैप्सूल कोर्स चलता है NSG के अंदर, वो भी किया है। वहाँ पे मैंने PTI कोर्स भी किया और जो PTI इंस्ट्रक्टर था NSG में, और VIP ड्यूटियाँ करी हैं।
0: वाह, क्या बात है। तो निश्चित रूप से आपको बार बार ये महसूस होता होगा ना कि कुछ और नया अर्जित कर लिया, कुछ और नया सीख लिया, कुछ और नया दे दिया, ये नयापन हमेशा रहता होगा।
1: हाँ जी मैम, फौज में हर एक चीज जो नई होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और ना ही जब तक उम्र है आदमी खालीपन ही रहता है, बस सीखे जाओ सीखे जाओ।
0: वाह, क्या बात है। अच्छा, एक बात और बताइए कि सहस्त्र सीमा बल में आप अपना योगदान दे रहे हैं और 20 सालों का सफर यादगार भी रहा, आगे आने वाले कहते हैं जीवन के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा हुआ होगा, निश्चित रूप से आप ये चाहते होंगे आप और सम्मान अर्जित करें और बड़े बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा बने, लेकिन इनके साथ साथ कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन में उसका परिवार, उसका पारिवारिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में अपने परिवार सबसे पहले कि सहस्त्र सीमा

0: बल के प्रति जो आपका का कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, वो तो सर्वोपरि है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार, इन दोनों के बीच कैसे भूमिका निभाकर चलते हैं और आपकी अर्धांगिनी का क्या योगदान है? क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो स्पाउस होता है, जो हमारी अर्धांगिनी होती है या जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में शामिल है, अगर वो ना हो तो शायद हमारे लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो किस तरह से सामंजस्य बैठा पाते हैं आप?
1: मैम, ऐसा है कि जो परिवार और देश,

0: तो किस तरह से सामान जैसे बैठा पाते हैं आप?
1: मैम ऐसा है कि जो परिवार और देश कहीं ना कहीं दोनों ही सम्मान लायक हैं, पर मेरे लिए सर्वोपरि पहले मेरा देश है, उसके बाद परिवार है। मैं जब ड्यूटी करता हूँ तो बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटियाँ निभाता हूँ, और जब मैं लीव पर रहता हूँ तो पूरा समय अपने परिवार को देता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे जब परिवार खुशहाल है तो मेरे को भी दिल करता है अच्छे जो देश की सेवा करूं, देश के प्रति समर्पित रहूं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप हमें ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है? वैसे तो आप अपने आपने बताया अपने भाई बहनों के बारे में, तो ये बताइए कि जब प्रथम बार अपनी अर्धांगिनी से मिले आप, तो उनसे क्या कहा आपने? क्योंकि आप फौज में और कहीं ना कहीं अर्धांगिनी को बात समझानी बहुत ज्यादा जरूरी थी कि देखो देश पहले है, ऐसे में हो सकता है कि मैं तुमसे बहुत दिनों तक बहुत दूर रहूं। कुछ ऐसा उनके साथ साझा किया? कुछ कोई कहते हैं ना कि उनसे कोई प्रॉमिस लिया?
1: मेरे को मैम समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा पूरा परिवार ही जो है डिफेंस में है, उनके परिवार के भी काफ़ी डिफेंस में, उनको पहले से पता था, पर फिर भी जो है एक रहती है। तो मैंने शादी से पहले पूछा था कि मैं फौज में हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन्होंने पहले जो है बोल दिया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो मदर फादर कर देंगे वो मेरे लिए सब ठीक है।
0: अच्छा ये बताइए कि आप आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत रहे और आपने किसी से प्रेरणा ली? अब बच्चों पर, जब बच्चों से आप बात करते हैं, बच्चों को किससे कहानियां सुनाते होंगे, तो आपके बच्चे आपसे क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं?
1: जी मैम, मेरा बड़ा लड़का है जो है वो भी फौज में आने का इच्छुक है, जो कि अब 11वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसकी बहुत रुचि है, वो एनडीए की तैयारी के लिए बोलता है और करने के लिए इच्छुक है।
0: वाह क्या बात है। और हम यही कहेंगे जिस तरह से आपने बहुत लोगों की नैया पार लगाई अपनी नैया के साथ साथ, वैसे बच्चों की नैया पार भी आप निश्चित रूप से लगाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि आपके गांव के जितने भी बच्चे हैं वो आपको देखकर, ये गांव के और भी जो हमारे फौजी हैं उनको देखकर वो जरूर प्रेरणा प्राप्त करें,
1: बिल्कुल मैम,
0: क्योंकि देश प्रेम से बड़ा प्रेम तो कोई और नहीं। और देश के प्रति अपना सम्मान दर्शाने के लिए शायद फौज से बेहतर कुछ भी नहीं।
1: बिल्कुल मैम, ऐसा नहीं है कि जो फौजी है कोई भी देश का जहां भी जैसे भी है, जैसे FM रेनबो आप भी एक देश की सेवा कर रही हो,
0: जी
1: तो
0: शुक्रिया।
1: ये जो जहां भी जो भी है ईमानदारी से कहीं भी देश की सेवा की जा सकती है।
0: बिल्कुल, कहीं से भी देश की सेवा की जा सकती है, इस बात की मिसाल है हमारे लिसनर्स भी जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। संदेश हमारे पास आए हैं, यश शिंदे ने मुंबई से संदेश भेजा है और इन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा शो हमारा चल रहा है, उसका सारा श्रेय भगिंदर जी आपको जाता है, क्योंकि जो बातें आपने साझा की वो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत रहीं। और यही कहेंगे कि हमारे लिए एक याद बन गई क्योंकि आपसे आज मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। हेमंत कुमार यादव ने संदेश भेजा है, लिखते हैं जय हिंद सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको यानी कि आपको धन्यवाद यहाँ पर ज्ञापित कर रहे हैं। FM रेनबो को हार्दिक बधाइयां यहाँ पर लिख रहे हैं, कृपया हमारी ओर से आदरणीय भागिंदर सिंह जी को सादर जय हिंद अवश्य प्रेषित करें। और 28वीं वाहिनी SSB अंतागढ़ की PIT टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं भेजी गई हैं। देखिए कितना सुखद पल है आपके लिए भी। अच्छा जी, आपके लिए संदेश आया है थाईलैंड से मिस्टर अमोल बवाने का, और इन्होंने भी आपको जय हिंद लिख यहाँ पर आपका धन्यवाद ज्ञापन किया है। संदेश हमारे पास आया है शंकर लोध का, द्वारका सेक्टर 15 ककरोला दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपका भी, आपने संदेश भेजा, और आप सभी दोस्तों का जिन्होंने समय निकाला। यहाँ पर एक हमारे पास संदेश आया, यहाँ पर नाम जरूर नहीं लिखा गया है, हेलो सर लिखा गया है, लेकिन जो DP है उसे महसूस होता है कि आप भी सेनाओं में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त संदेश भेजने के लिए। भगिंदर सिंह जी, हमारे पास समय यहाँ पर कम है, लेकिन चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं को जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जो सेवाएं देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो देश के प्रति अपने सम्मान को सेनाओं में, सेनाओं से जुड़कर ज्ञापित करें, क्या कह

0: कहना चाहते हैं आप उन सभी के लिए?
1: अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं देश सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है
0: जी।
1: और मैं यही कहना चाहूंगा, सभी को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। नौकरी ही नहीं, कहीं भी देश के किसी भी कोने में जो देश की सेवा करी जाती है ईमानदारी से निष्ठा से, कहीं भी देश की सेवा कर सकते हैं
0: जी। एक और संदेश हमारे पास आया है सीटी दीपक निगम का, दिल्ली 25th बटालियन से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भेज रहे हैं आपको दीपक निगम। तो हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही अपना प्यार इस कार्यक्रम के प्रति दर्शाते रहें। और आज मैं बहुत उत्साहित हूं, प्रसन्न हूं संदेश टू सोल्जर्स के इस अंक के माध्यम से हेड कांस्टेबल भागिंदर सिंह जी, सशस्त्र सीमा बल जो आज हमारे साथ स्टूडियो में है, जिन्हें पुलिस मेडल फॉर गारंट्री से सम्मानित किया गया। तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज आपके माध्यम से हमने इतनी सारी बातें आपके माध्यम से सुनी, आपका यात्रा वृत्तांत सुना। और मैं कहती हूं कि आगे की ये जो यात्रा है और भी ज्यादा सुखद हो, कि जब अगली बार हम मिलें तो आपसे और भी बहुत सारी बातें हों करने की कहने की। तो एक गाना अंत में आपके लिए, जैसा कि आपने फरमाइश की थी कि लता मंगेशकर का एक नगमा यहाँ आपके लिए प्ले किया जाए, तो हम आप सभी वीरों के लिए, सभी फौजियों के, हमारे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम ये कहेंगे कि उन सभी के लिए है, उन सभी फौजियों के लिए है जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं या सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप सभी के लिए ये नगमा, और खास तौर पर ये नगमा भागिंदर जी के लिए हमारी ओर से। तो हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं भागिंदर सिंह जी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद FM रेनबो के स्टूडियोज में आने के लिए।
1: थैंक यू मैम।
0: और हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें और इस कार्यक्रम को नित्य प्रति सुनते रहें, क्योंकि आप हमारे देश के सैनिकों की हौसला अफजाई इसी कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे संदेश आने शुरू हो चुके हैं, मैं माफी चाहूंगी, समय यहां पर गुजर रहा है। जीडी राजेंद्र सिंह जी 25th बटालियन, इन्होंने संदेश भेजा है, हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जोया का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से संदेश आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये आपके प्रति प्यार है जो देश से नहीं विदेश से भी बहुत संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शायद मुझे कोई इस शो को एंड करने नहीं देगा, क्योंकि संदेश इतने सारे आ रहे हैं। और हमारे पास संदेश है HC/GD बलविंदर सिंह जी का दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भागिंदर सिंह जी।
1: थैंक यू मैम।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, समय है आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिंदी में मुख्य समाचारों का। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बेल्जियम में आयोजित तीसरे भारत यूरोपीय संघ व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। सरकार ने ईंधन निर्यात की समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नायडू ने कहा, सतत विमानन ईंधन को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ अर्थात जमीन से सीधे उड़ान और लैंडिंग के लिए बुनियादी ढांचे के बारे में चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज CBSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई, कहा इससे छात्रों पर तनाव बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छी नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी। पारंपरिक कच्छी गीत का उल्लेख करते हुए कहा, सफलता प्राप्त करने के बाद जहां भी कोई कच्छी बसता है वहां दीन दीन कच्छ की भावना गूंजती है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। म्यांमार से रोहिंग्याओं के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को ले जा रही दो नौकाओं के बंगाल की खाड़ी में डूबने से 500 से अधिक यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा और अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबला रविवार को स्पेन से होगा। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो पर हिंदी में मुख्य समाचार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सबसे पहले जानकारी लीजिए इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:30 पर चर्चा होगी राष्ट्रीय जल पुरस्कार विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता समर्पण और सांप्रदायिक सौहार्द के अग्रदूत देशबंधु चित्तरंजन दास। क्वेस्ट वर्ल्ड में जानेंगे वैश्विक डिजिटल व्यापार व्यवस्था के बारे में और हेल्थ प्लस में बात करेंगे सर्पदंश में प्राथमिक चिकित्सा। साथ ही आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा शाम 5:30 पर। कार्यक्रम ग्राम्यालोक में चर्चा का विषय होगा आधुनिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य। भेंटवार्ता क्रम में आप सुनेंगे बोगनवेलिया घरेलू बाग की शान विषय पर डॉ मुकुल पंड्या से डॉ ब्रजेंद्र नारायण की बातचीत। साथ ही आप सुनेंगे मंडी भाव मौसम की जानकारी और कुछ लोकगीत। कार्यक्रम ग्रामीणलोक का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:00। शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में चर्चा होगी मेरा देश मेरी शान पर। साथ ही आप सुनेंगे देश दुनिया आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, सेहत टिप्स और फिल्म गीत। शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रित वार्ता, लोकतंत्र की मजबूती में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर वार्ताकार होंगे डॉ सुरेंद्र पाल सिंह। मेरी माटी मेरा देश यह कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 7:31 पर। रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम शब्द गीत। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:30 पर। 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम कंट्री वाइड इनसाइट्स। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉ सत्यभान शर्मा का धमार गायन।

और अब रूपरेखा सुनिए कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना। 6:25 पर कार्यक्रम चिंतन में कल विषय होगा सादगी। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे 6:35 पर। 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे आर के सक्सेना की वार्ता, शक्ति चलित कृषि यंत्रों के प्रयोग में सावधानियां। स्वास्थ्य चर्चा में प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे डॉक्टर दिव्या एस शर्मा की वार्ता, विषय होगा दांतों की चमक कैसे बनाए रखें। 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आसपास। 8:45 पर कार्यक्रम गीतांजलि में आपको सुनवाएंगे सदाबहार फिल्मी गीत। 9:25 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा में अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार। 9:45 पर कार्यक्रम लोक संगीत में कल कलाकार होंगी उषा शर्मा। 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरसरिता में सदाबहार फिल्मी गीत। 11:00 कार्यक्रम आज के कलाकार केंद्रित होगा निर्देशक राजकुमार संतोषी पर। 11:30 पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत केंद्रित होगा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर, विषय होगा सबके लिए सस्ती सुलभ न्याय व्यवस्था। दिन में 12:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में चर्चा का विषय होगा न्याय सबका अधिकार, मेरी पहचान क्रम में बात होगी स्मृति मंधाना पर, फैशन

ब्यूटी में बात करेंगे, पैरों की हाइजीन बनाए रखें विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे रजिया खान का काव्य पाठ। इसके अलावा आप सुनेंगे रेसिपी टाइम, कुछ तुम कहो कुछ हम और फिल्मी गीत। दिन में 1:45 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में कल कलाकार होंगे मोहम्मद रफी। 2:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। दिन में 3 प्रसारित होगा उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। कल शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संध्या। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे नंदू के संगीत निर्देशन में पंडित किरण मिश्रा का लिखा भजन सुरेश वाडकर की आवाज में संत ज्ञानेश्वर फिल्म से।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं नागमणि फिल्म का भजन सुरेश वाडकर की आवाज में। इसे लिखा है महेंद्र दहलवी ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत लिया है गुड्डी फिल्म से। इसे गाया है वाणी जयराम ने। शब्द रचना है गुलजार की और संगीत है बसंत देसाई का।

अभी आप सुन रहे थे कुवारा बाप फिल्म का गीत। इस भजन को गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना को संगीत दिया था राजेश रोशन ने। इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग साथियों। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी मेरे यानी अपनी रेडियो साथी राशि के साथ। आज के कार्यक्रम में स्वागत है हमारे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम हाजिर हैं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संगीतमय सफर चर्चा के साथ। साथियों, जल ही जीवन है ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज इस पंक्ति के मायने पहले से कहीं ज्यादा गहरे और चिंताजनक हो गए हैं। आज पानी हमारी आधुनिक जीवन शैली, अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। आज के समय में पानी पर हमारी डिपेंडेंसी से जुड़ी कई चुनौतियां हैं। साथियों, पुराने समय में पानी पर निर्भरता केवल पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और खेती तक सीमित थी, लेकिन आज इंटरनेट चलाने या स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। जी हाँ, पूरी दुनिया का डेटा स्टोर करने वाले विशाल डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए हर दिन करोड़ों लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे कपड़ों से लेकर गाड़ियों तक हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पानी पर टिकी हुई है। बिजली उत्पादन भी पूरी तरीके से जल पर ही निर्भर है। क्या आप जानते हैं, एक बड़ी आबादी वाले देश का पेट भरने के लिए आधुनिक खेती और इरिगेशन पैटर्न को हर सेकंड लाखों गैलन पानी की जरूरत होती है। पानी की कमी का सीधा मतलब है ग्लोबल फूड क्राइसिस। इसके अलावा टीयर वन और टीयर टू सिटीज में वाटर सप्लाई अगर कुछ घंटों के लिए भी रुक जाए तो पूरा शहर थम जाता है। हमारे घरों के फ्लश, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर और वाटर प्यूरिफायर जैसी सुख सुविधाएं पानी की निरंतर उपलब्धता पर ही काम करती हैं। साथियों, हमारी निर्भरता तो कम नहीं की जा सकती क्योंकि ये विकास की मांग है, लेकिन वाटर मैनेजमेंट से स्थिति को सुधारा जरूर जा सकता है। जल संरक्षण के इसी महत्व को समझते हुए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत की गई है। साथियों, ये पुरस्कार इस बात का प्रतीक है कि जल संकट से लड़ना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक प्रयास है। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ राज्यों और जिलों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और नदी पुनरुद्धार में

0: बेहतरीन काम किया है। ग्राम पंचायतों को जल संरक्षण की ग्राउंड लेवल तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्कूल, मीडिया और उद्योगों को भी इस मुहिम से जोड़ा जाता है ताकि पानी की रिसाइकलिंग और जागरूकता को हर स्तर पर बढ़ावा मिल सके। जब किसी पंचायत या स्कूल को राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण के लिए सराहा जाता है तो ये बाकी समाज के लिए एक प्रेरणा बनता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद हम कैसे अपनी जल निर्भरता को एक सुरक्षित भविष्य में बदल सकते हैं। साथियों, जल सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, हमारा भविष्य है। आज राष्ट्रीय जल पुरस्कार जैसी पहले हमें ये याद दिलाती हैं कि पानी बचाने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। साथियों, अगर हमें कल को सुरक्षित बनाना है तो आज पानी बचाना होगा। कार्यक्रम युववाणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पर चर्चा अभी हम कर रहे थे। आइए इसी क्रम में सुनते हैं वार्ता जिसका विषय रहेगा जल की महत्ता और संरक्षण की जरूरत। वार्ताकार है नामिरा शाहिद।
1: आशाओं का दीप जलाकर एक नया सवेरा लेकर आई हूँ। बूंद बूंद बचाकर गागर में सागर भरने आई हूँ। जल जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व और विकास के लिए जल का होना आवश्यक है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें से केवल 3% पानी ही पीने योग्य है और शेष 57% खारा जल है जो महासागर और समुद्रों में मौजूद है। पीने योग्य जल का ये सीमित भंडार ही जीवन के संतुलन को बनाए रखता है। विश्व भर में जल की महत्वता और उसके संरक्षण की आवश्यकता को समझने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 1993 से हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाना प्रारंभ किया। इस दिन का उद्देश्य जल की महत्वता के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसे बचाने के लिए प्रभावी उपायों को अपनाने के प्रति प्रेरित करना है। आज के समय में जल संकट एक गंभीर वैश्विक समस्या बन चुकी है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। जल के बिना जीवन की निरंतरता संभव नहीं है, इसलिए जल संरक्षण आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जल संरक्षण के उपायों पर बात करने से पहले जल के महत्व, उसकी उपयोगिता और वर्तमान समय की चुनौतियों के बारे में समझें। जल के बिना केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी जीवित नहीं रह सकते। मानव शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना होता है। पाचन तंत्र, रक्त संचार, कोशिकाओं की वृद्धि और विषैले पदार्थ के निष्कासन में जल की भूमिका प्रमुख होती है। कृषि के लिए भी जल का बहुत बड़ा योगदान है। सिंचाई के माध्यम से फसलों की अच्छी पैदावार संभव होती है। जल की कमी के कारण कृषि क्षेत्र में सूखा और अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उद्योगों में उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए जल का उपयोग किया जाता है। बिजली उत्पादन, वस्त्र उद्योग, खाद उद्योग और निर्माण उद्योग में भी जल का प्रमुख स्थान है। स्वस्थ जीवन के लिए भी स्वच्छ जल का बहुत योगदान है। पीने का साफ पानी, स्वच्छता और सफाई के लिए जल की आवश्यकता होती है। दूषित जल के सेवन से कॉलरा, डायरिया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होता है। झीलें, नदियां, तालाब और समुद्र जैव विविधता को बनाए रखते हैं। वर्षा जल का संचयन प्रकृति जल चक्र को संतुलित बनाए रखता है। जल विद्युत उत्पादन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी एक अनमोल रत्न है। बड़ी नदियों और जलाशयों पर बनाए गए बांध उत्पादन के लिए जल आपूर्ति करते हैं। नदियां, झीलें और समुद्र का पर्यटन और मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। जल के निकट स्थित क्षेत्रों में पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। जल संकट विश्व स्तर पर एक गंभीर समस्या बन चुकी है जिसके कारण हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे जल प्रदूषण, भूजल स्तर में गिरावट, जलवायु परिवर्तन आदि। औद्योगिक कचरा और प्लास्टिक कचरे के कारण जल स्रोत दूषित हो रहा है। इसके साथ ही नदी और तालाबों में कूड़ा करकट डालने से जल प्रदूषण बढ़ रहा है। जल संकट के कारण सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमखंड तेजी से पिघल रहे हैं।

0: असमय वर्षा और बाढ़ से जल आपूर्ति असंतुलित हो रही है। घरेलू और औद्योगिक स्तर पर जल का दुरुपयोग किया जाता है। सार्वजनिक जल आपूर्ति के दौरान रिसाव और चोरी के कारण भी जल बर्बाद होता है। इन चुनौतियों को देखते हुए अगर हमने जल संरक्षण नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल की उपलब्धता असंभव हो सकती है। जल संरक्षण के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिससे जल संकट से बचा जा सकता है। वर्षा जल को संग्रहित कर भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। वर्षा जल को संग्रह करने के लिए छत पर टंकी और गड्ढों का निर्माण किया जा सकता है ताकि जरूरत पड़ने पर वर्षा जल का उपयोग किया जा सके। घरेलू और औद्योगिक जल को पुनः शुद्ध करके उपयोग किया जा सकता है। घर में लगे एसी और आरओ के ड्रेन पाइप का पानी किसी बर्तन में इकट्ठा करके पेड़ पौधों में डाला जा सकता है। पानी के नलों की लीकेज रोकनी चाहिए। सड़कों पर फालतू पानी नलों से बहता रहता है, उसको रोकना चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। जल जीवन का अमूल्य उपहार है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव नहीं है। जल संकट को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। विश्व जल दिवस का उद्देश्य यही है कि हम जल के महत्व को समझें और इसके संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाएं। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी से ही हम भविष्य को जल संकट से बचा सकते हैं। अंतिम चार पंक्तियों से मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। चलो बूंद बूंद बचाते हैं, सृष्टि को और सुंदर बनाते हैं। आगे आने वाली हर पीढ़ी को यही कीमती रत्न हम खुशी खुशी पहनाते हैं।
1: साथियों, कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था जल की महत्ता और संरक्षण की जरूरत। वार्ताकार थी नामिरा शाहिद। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं सेगमेंट क्वेस्ट वर्ल्ड की तरफ, जिसमें आज हम बात करेंगे वैश्विक डिजिटल व्यापार व्यवस्था से जुड़ी। साथियों, आज के दौर में दुनिया भर में व्यापार करने का तरीका जो है वो पूरी तरह बदल चुका है। पहले व्यापार का मतलब सिर्फ दुकानों से सामान खरीदना या बड़े बड़े जहाज़ों से माल एक देश से दूसरे देश भेजना हुआ करता था, लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने में एक नई व्यवस्था चल निकली है जिसे हम वैश्विक डिजिटल व्यापार व्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब है इंटरनेट की मदद से दुनिया भर में होने वाला व्यापार। इसमें सिर्फ ऑनलाइन सामान खरीदना ही नहीं आता, बल्कि ऑनलाइन फिल्में देखना, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, ऑनलाइन पढ़ाई या डॉक्टर से सलाह लेना और इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान भी शामिल है। साथियों, इस नई व्यवस्था ने कई कारोबारियों और युवाओं के लिए कई बड़े मौके खोल दिए हैं। अब अगर गांव में बैठा कोई कलाकार कोई अच्छी चीज़ बनाता है या कोई लड़का घर बैठे कंप्यूटर कोडिंग करता है तो उसे अपना हुनर दिखाने के लिए किसी बड़े शहर या विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इंटरनेट के माध्यम से सीधे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे ग्राहक को अपना सामान या सर्विस दे सकता है। इससे बीच के दलाल खत्म हो जाते हैं, खर्च कम हो जाता है और इसके साथ ही टाइम कंस्ट्रेंट भी हट जाता है। लेकिन साथियों, इस डिजिटल व्यापार में कुछ मुश्किलें भी हैं। जैसे आज भी कई गांव या गरीब देशों में अच्छा इंटरनेट नहीं है जिससे वो इस दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन धोखाधड़ी और हैकर्स का डर हमेशा ही बना रहता है। अलग अलग देशों के अपने अलग अलग नियम हैं कि वो डेटा को कैसे सुरक्षित रखेंगे, जिससे कभी कभी देशों के बीच आपसी मतभेद भी हो सकते हैं। साथियों, इस पूरी व्यवस्था में हमारा देश भारत एक सुपर हीरो की तरह उभर कर सामने आया है। भारत ने पूरी दुनिया को UPI जैसी तकनीक देकर ये दिखाया कि चुटकियों में ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाता है। आज दुनिया के कई बड़े देश भारत की इस तकनीक को अपना रहे हैं। साथ ही भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो डिजिटल व्यापार ही हमारा आज और आने वाला कल है। बस जरूरत है इस बात की कि सभी देश मिलकर इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं ताकि किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो। साथियों, इसी के साथ सेगमेंट क्वेस्ट वर्ल्ड यहीं संपन्न होता है। चलिए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

साथियों, समय हो चला है आपसे आपकी सेहत से जुड़ी बात करने की, तो चलिए हेल्थ प्लस में बात कर लेते हैं सर्प दंश में किस तरीके की प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए इस बारे में। साथियों, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश के इन दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर कस्बों और शहरों तक में सांप के निकलने और इंसानों को काटने यानी सर्प दंश की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग डर और घबराहट में गलत कदम उठा लेते हैं जिससे जो पीड़ित है उसकी जान भी जा सकती है। तो आपको बता दें, सांप के काटने पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो किसी की जान बचा सकती है वो है सही समय पर सही प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड देना और अंधविश्वास से पूरी तरीके से दूरी बनाए रखना। देखिए, सर्प दंश की स्थिति में सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि घबराहट और डर के कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है जिससे शरीर में खून का जो बहाव होता है वो बहुत तेज़ हो जाता है और जहर पूरे शरीर में जल्दी फैलने लगता है। इसके साथ ही जिस हाथ या पैर में सांप ने काटा है उसे बिल्कुल भी हिलने डुलने ना दें क्योंकि हरकत कम होने से जहर का जो फैलाव है वो धीमा हो जाता है। प्रभावित

हिस्से को हमेशा हार्ट लेवल से नीचे या उसके बराबर रखें और सूजन आने की संभावना को देखते हुए तुरंत अंगूठी, घड़ी, चूड़ियां या तंग कपड़े उतार दें ताकि खून का दौरा ना रुके। इसके बाद बिना एक पल गवाए मरीज को आप नज़दीकी सरकारी अस्पताल या बड़े मेडिकल सेंटर ले जाएं, जहां एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध हो, क्योंकि केवल यही एक इलाज है जो जहर के असर को खत्म कर सकता है। साथियों, इस दौरान कुछ गलतियों से बचना भी बेहद जरूरी है जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं, जैसे घाव पर ब्लेड या चाकू से चीरा लगाना या मुंह से जहर निकालने की गलती कभी ना करें, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और किसी दूसरे के शरीर में भी ये संक्रमण फैल सकता है। तांत्रिकों या झाड़फूंक के चक्कर में कीमती समय बर्बाद करना भी मरीज की मौत का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इसके अलावा घाव के ऊपर रस्सी या कपड़े को बहुत कसकर बांधने से उस अंग में खून की सप्लाई

तांत्रिकों या झाड़फूंक के चक्कर में कीमती समय बर्बाद करना भी मरीज की मौत का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। इसके अलावा घाव के ऊपर रस्सी या कपड़े को बहुत कसकर बांधने से उस अंग में खून की सप्लाई पूरी तरह रुक सकती है, जिससे वो अंग हमेशा के लिए खराब हो सकता है और घाव पर बर्फ या कोई केमिकल लगाने से भी त्वचा और नसें डैमेज हो सकती हैं। एक बात साथियों आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि डॉक्टर को इलाज के लिए सांप को देखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए सांप को पकड़ने या उसे मारने में अपना समय बर्बाद ना करें। साथियों ये भी बता दें आपको कि ज्यादातर सांपों में जहर नहीं होता है और कई बार लोग सिर्फ डर की वजह से दम तोड़ देते हैं, इसलिए सर्पदंश के मामले में सतर्कता, जागरूकता और सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंचना ही जीवन की असली रक्षा है। इसी के साथ सेगमेंट हेल्थ प्लस यहीं संपन्न होता है। आइए लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

अपने अंडरआर्म्स और उंगलियों को, और साथ ही ढीले कपड़े पहने ताकि शरीर को आसानी से हवा लगती रहे, और गीले कपड़े या मोजे तुरंत बदल लें। साथियों अपनी सेहत का ध्यान रखें, सुनते रहें कार्यक्रम युवावाणी, और आइए अब आनंद लेते हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत का।

साथियों, आज के कार्यक्रम में आपके लिए टिप ऑफ द डे है कि बारिश के मौसम में नमी और उमस के कारण फंगल इन्फेक्शंस का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, तो इससे बचाव के लिए आप हमेशा अपने शरीर को सूखा रखें, विशेष करके

साथियों, इसी गीत के साथ समय हो चला है कार्यक्रम संपन्न करने का। तो चलते चलते आपसे बस एक ही दरख्वास्त, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें अपना मनपसंद कार्यक्रम युवावाणी। आपसे फिर जल्द ही करेंगे मुलाकात। आप सुन रहे थे अपनी रेडियो साथी राशि को। अब हमें दें इजाजत। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीण लोग अपनी रेडियो साथी अनुराधा के साथ। साथियों, आज हम अपने कार्यक्रम में एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर हम इसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो भाई, आज हमारी चर्चा का विषय है आधुनिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य। कहा जाता है साथियों कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, लेकिन भाई आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें ये सब बातें कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। हम अपने स्वास्थ्य को अनदेखा करते जा रहे हैं। साथियों, हमें ये समझना होगा कि आज की हमारी जो भागम भाग जिंदगी है उसमें हमें अपने तन के साथ साथ अपने मन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर की कल्पना भी अधूरी है। आज का समय आधुनिकता का समय है। साथियों, विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, एआई, ऑनलाइन सेवाएं और तेज संचार, ऐसा लगता है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है। लेकिन इस सुविधाजनक आधुनिक जीवन में कुछ है जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। वो है हमारी मन की शांति, अपनापन और सुकून। भाई, आज लोग शारीरिक रूप से तो स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से कहें तो उनमें कहीं ना कहीं हमें तनाव, चिंता, अकेलापन और अवसाद जैसी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि भाई हर व्यक्ति आज किसी ना किसी दौड़ में शामिल हो रहा है। कोई भाई पढ़ाई में आगे निकलना चाहता है, तो कोई नौकरी में, कोई व्यवसाय में, तो कोई सामाजिक प्रतिष्ठा पाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस प्रतिस्पर्धा ने कई लोगों को मानसिक रूप से बहुत थका दिया है। अब भाई साथियों, हम सोशल मीडिया को ही ले लें, भाई सोशल मीडिया भी इसका एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। जो लोग सोशल मीडिया में सफल हैं, हम अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्या वास्तव में है कि जो दिख रहा है वो वास्तविक है? ऐसा नहीं है साथियों। सोशल मीडिया में हर कोई उतना सफल भी नहीं है। भाई आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में छोटी छोटी रील बनाकर डालने का चलन चल गया है, और कई लोग उसमें सफल भी हो रहे हैं। भाई हम जब उन रील्स को देखते हैं तो हमें भी लगता है कि क्यों ना हम भी रील्स बनाएं और हम भी सफल हो जाए। लेकिन साथियों, ये देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि साथियों इसमें सफल होने के लिए समय और धैर्य दोनों की ज़रूरत होती है। जब लोग अपनी रील्स बनाते हैं और उनको जब मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते हैं तो भाई वो तनाव में आ जाते हैं। भाई सोशल मीडिया से तो साथियों हमारा गांव भी अछूता नहीं रहा है। गांव के युवा भी आज ये अपनी रील्स बनाने में लगे हुए हैं। गांव का जीवन भी साथियों अब पहले जैसा शांत नहीं रहा है। खेती में मौसम की अनिश्चितता, बढ़ती लागत, फसलों के उचित दाम नहीं मिलना, रोजगार की समस्या और परिवार की जिम्मेदारियाँ किसानों और ग्रामीणों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। ऐसे में साथियों बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब कोई मानसिक बीमारी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा मन शांत रहे, हम सकारात्मक सोच रखें, भावनाओं को समझें और जीवन की चुनौतियों का संतुलित तरीके से सामना कर सकें। भाई अब मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो भाई मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जिससे अपनाकर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। जैसे प्रतिदिन कुछ समय निकालकर हम योग, प्राणायाम और ध्यान करें, इससे मन को शांति मिलती है। पर्याप्त नींद लें, संतुलित भोजन करें, परिवार व मित्रों के साथ

में बिताएं और अपनी भावनाओं को खुलकर उनके साथ साझा करें। इससे क्या होगा साथियों, हमारा मन हल्का होगा और हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, मित्र हैं, वो हमारे तनाव को मिलकर दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथियों, हमारे पास जब खाली समय है तो उस समय में हमको जो भी अच्छा लगता है, जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना, टहलना, खेलना, जो भी अच्छा लगता है वो काम करें। उस काम को करने पे हमारे मन को शांति मिलेगी। अगर इसके अलावा भी अगर तनाव दूर नहीं हो रहा है तो किसी मनोचिकित्सक को दिखाएं। साथियों, जैसे खेत की अच्छी फसल के लिए मिट्टी की सेहत जरूरी होती है ना, वैसे ही जीवन की सफलता और खुशहाली के लिए मन का स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। स्वस्थ मन ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नींव रखता है। तो साथियों, बस अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि स्वस्थ तन से बढ़कर स्वस्थ मन का है मान, खुशहाल मन से ही मिलता है जीवन का अरमान। तो साथियों, अपनी चर्चा को यहीं विराम देती हूँ और आपको ले चलती हूँ संगीत की दुनिया में, जिसे सुनकर आपका मन झूम उठेगा। तो साथियों, सुनते हैं अनुपमा सक्सेना और संजय उपाध्याय की आवाज में ये गीत।

0: साथियों, हर कोई चाहता है कि उसका घर सुंदर, हरा भरा और आकर्षक दिखाई दे, और ऐसे में हमारे घर के आंगन में या छत पर या बालकनी पर रंग बिरंगे फूल खिले हों तो वातावरण बहुत खुशनुमा हो जाता है और घर की रौनक भी बढ़ जाती है। रंग बिरंगे फूलों की आवाज़ से हर घर आंगन की शोभा बढ़ जाती है। तो आइए साथियों, आज हम अपने स्टूडियो में आपको इन्हीं फूलों में से एक फूल बोगनवेलिया घरेलू बाग की शान पर आधारित भेंट वार्ता सुनाने जा रहे हैं, और इस भेंट वार्ता के वार्ताकार हैं डॉक्टर मुकुल पांड्या और भेंट करता है डॉक्टर विजेंद्र नारायण।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे बागवानी की। यूं तो कृषि के साथ साथ बागवानी भी एक अच्छा लाभदायक व्यवसाय है, परंतु शहरों में देखा जाता है कि जिनके पास भूमि कम है वो शौकिया अपने बागीचे लगाते हैं, बागीचे में तरह तरह के फूल लगाते हैं, कुछ फलदार वृक्ष भी लगाते हैं, परंतु ज़्यादातर ये देखा जाता है कि शौकीन लोग शौकिया तौर पे फूलों की खेती करते हैं या फूल अपने बागवानी में लगाते हैं। इन्हीं फूलों में एक प्रजाति है बोगनवेलिया। ये ऐसी फूल की किस्म है जो कि कई तरह के रंगों में पाया जाता है, और जिसकी खूबसूरती क्योंकि ये गुच्छे में ये खिलने वाले फूल हैं, और इसलिए ये जहाँ भी दिखाई पड़ते हैं वहाँ एक झाड़ के रूप में खूबसूरत छटा बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। आज हम बोगनवेलिया की किस्मों पर और उनकी कैसे बाग लगाए जाए इस पे चर्चा करने के लिए एक ऐसे विशेषज्ञ को आमंत्रित किए हैं अपने स्टूडियो में, जिनके पास बोगनवेलिया की सैकड़ों किस्में हैं और जिन्होंने बहुत खूबसूरत अपनी बगिया लगाई हुई है। आप हैं डॉक्टर मुकुल पांड्या। आपने जिस तरीके से इस बोगनवेलिया को लोकप्रिय बनाया है, हम सब उसके बहुत कायल हैं। तो मुकुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सर, ये जो बोगनवेलिया ये वैरायटी है, ये वास्तव में क्या भारतीय मूल का पौधा है या कहीं बाहर से आया? सर,
2: ये पौधा बाहर का है, ये दक्षिण अमेरिका का पौधा है, और सन 1766 में एक फ्रेंच नाविक थे, एडमिरल थे, उनका नाम था लुई अंतुआन द बुगेनविल। उन्होंने दो जहाज बनाए और उनका नाम रखा लेतवाल और लबुदोस। हाँ। और वो पूरी दुनिया का भ्रमण करना चाहते थे, तो उसमें उन्होंने अपने मित्रों को इनवाइट किया, और उसमें उनके एक मित्र थे जिनका के नाम था डॉक्टर फिलिबर्ट कॉमर्सों। हाँ। और फिलिबर्ट कॉमर्सों, उनका तबियत खराब थी, तो उन्होंने ये कहा कि मैं चलूंगा तो, पर मेरे साथ एक मेरी तबियत का ख्याल रखने के लिए एक आदमी चलेगा जो मुझे दवाई वगैरह देगा।
1: जी।
2: तो उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम आओ। और 1766 में ये जहाज चला और पूरी दुनिया का चक्कर लगा के रियो द जनेरो ब्राजील पहुंचा।
1: जी।
2: और वहां पे ये फिलिबर्ट कॉमर्सों, उनके जो साथी थे, ये एक महिला थी जिन्होंने की अपनी वेशभूषा एक नाविक के तौर पे
1: बनाकर रखी थी,
2: पहनी हुई थी, और क्योंकि उस जमाने में महिलाएं लड़कियां जहाज में नहीं चढ़ सकती थी।
1: हाँ।
2: फ्रांस सरकार का ऐसा नियम था कि कोई भी महिला नहीं चढ़ सकती थी। तो वो पहली महिला थी जिनका कि नाम था

0: जीन बागे जिन्होंने की पूरी दुनिया जहाज में घूमी, पुरुष बन के घूमी और जो उनके जो साथी थे फिलिबर कॉमर्सन डॉक्टर थे, दोनों को बड़ा विशेष रुचि थी वनस्पति से और प्रकृति से।
1: जी जी।
0: और जब ये लोग रियो दे जनेरो पहुंचे तो कुछ फिलिबर कॉमर्सन तबीयत ज्यादा खराब थी, तो ये दोनों बाहर निकले जहाज से, और जब वो बाहर निकले कुछ दूर चले तो उन्हें बड़े अच्छे रंग दिखे, तो उन्होंने वो फूल अपने साथ, वो सिकेटर लेके चलते थे, उन्होंने वो फूल काटे और वो लेके आए जहाज में, और उन्होंने वहां पे पूछा तो वहां पे पुर्तगाली भाषा बोलते हैं, तो किसी ने कोई बताया नहीं कोई नाम वाम, तो जब वो आ गए जहाज के ऊपर तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमको लेके आए हैं एडमिरल साहब, जो लुई एंटोन द बोगेनविल है, इनके नाम से इसको रख देंगे, तो इस वजह से उसका नाम बोगेनविलिया पड़ा।
1: क्या बात है। तो यानी ये साउथ
0: अमेरिका,
1: यानी ब्राजील
0: से
1: मूल पौधा है।
0: हाँ, दक्षिण अमेरिका के कई जगह मिलता है।
1: जी जी जी जी, जी, जी, जी। सर, इस पौधे की क्या खासियत है?
0: देखिए, इस पौधे की खासियत ये है कि ये उष्ण कटबंधीय और उपोष्ण कटबंधीय जगह पे लग सकता है,
1: ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल,
0: सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों जगह लग सकता है, खूब आराम से चलता है, पानी की बहुत आवश्यकता नहीं होती है और सब तरह की सॉइल को ये चल जाता है।
1: जी जी।
0: सबसे विशेष बात इसकी ये है कि जो रंग हमको दिखते हैं वो असली फूल नहीं है।
1: हाँ हाँ।
0: जो रंग हमें दिखते हैं वो पत्तियां बदल गई हैं और उसको ब्रेक्स कहते हैं, जो कलर्स हैं। फूल बहुत छोटा होता है।
1: अच्छा।
0: और उसमें कोई खुशबू नहीं होती है और सफेद या हल्का पीलापन लिए फूल होता है। तो प्रकृति ने जो पत्तियों को ब्रेक्स में कर दिया, जो कलर्स हमको दिखते हैं।
1: ओ, यानी ये जो फूल के रूप में दिखाई पड़ते हैं ये वास्तव में पत्तियां ही हैं।
0: ये पत्तियां ही हैं, वास्तव में पत्तियां हैं।
1: अच्छा सर, ये भारतवर्ष में भी बहुत लोकप्रिय हुआ है, खास करके लोग झाड़ के रूप में अपने दरवाजे के सामने या इस तरह से लगा देते हैं, और ये बड़े बड़े हाइट इसकी 8-10 फीट तक ऊंची देखने को मिलती है, लेकिन जनरली लोग अपने घरों में गमलों में या जमीन में लगाते हैं और छोटे छोटे 2-3 फीट 4 फीट की ऊंचाई तक इसको ले जाते हैं। जो वैरायटीज है, क्या अलग अलग वैरायटी अलग अलग रूप में इसका ग्रोथ होता है क्या?
0: अब विज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हमने ऐसी वैरायटीज डेवलप कर ली हैं जो कि छोटी रहती हैं। कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो कि लंबी जाती हैं और कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जैसा हम चाहें उसको वैसा उसको शेप दे सकते हैं।
1: जी जी।
0: तो उसमें कोई मुश्किल का काम नहीं।
1: जी जी जी। अब सर बताएं कि अगर कोई व्यक्ति अपने घरों में गमलों में या जमीन पे इसकी पौध लगाना चाहता है तो क्या क्या उसमें सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या तैयारी करनी चाहिए?
0: देखिए, जो मिट्टी है उसमें थोड़ी सी रेतीली मिट्टी होगी तो उसमें जड़ें आराम से फैलती हैं, बहुत आराम से फैलती हैं, और थोड़ी सी गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ती है। विशेष ध्यान ये देना होता है कि उसके अंदर पानी जमा ना हो, क्योंकि ज्यादातर जो पौधे बोगनवेलिया के खराब होते हैं वो वाटर लॉगिंग की वजह से खराब होते हैं। अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो जड़ें गल जाती हैं, वो तो कोशिश ये हो कि पानी तभी दिया जाए जब उसकी आवश्यकता हो, यानी कि हफ्ते के अंदर 2 बार पानी दिया जाए तो पौधा बहुत खुश रहता है।
1: ये बात है। और खाद के रूप में गोबर की खाद
0: बहुत बढ़िया, पर्याप्त है, गोबर की खाद पर्याप्त है उसके लिए। अगर चाहें तो कभी कभी एनपीके के ग्रेन्यूल्स हो वो थोड़े से उसमें डाल सकते हैं अपने गमले में।
1: जी जी जी। अच्छा, ये सर फ्लावरिंग होती है इसकी
0: जी,
1: क्या कुछ खास सीजन में होती है कि सालों भर इसमें होते हैं?
0: देखिए, सिर्फ बारिश के वक्त में इसकी फ्लावरिंग नहीं होती है, पर साल के 8 महीने इसकी खूब बढ़िया फ्लावरिंग होती है, खूब बढ़िया फ्लावरिंग होती है। और जितना इसको आप प्रूनिंग करेंगे, जितना इसको काटेंगे, उतनी ज्यादा इसकी फ्लावरिंग होगी।
1: हाँ।
0: तो जैसे ही एक बार फ्लावरिंग हो जाए तो उसके बाद इसकी प्रूनिंग करना बड़ा आवश्यक है, और जब प्रूनिंग हो जाएगी तो उसके करीब 60 दिन के बाद फिर से नए फूल आ जाएंगे।
1: अच्छा सर, ये जो पौधा है इसको जैसे लोग अपने गेट पर दरवाजे के आसपास लोग लगाते हैं और एक हेज बनाते हैं या फिर गमलों में भी इसको लगाते हैं, तो उस स्थिति में दोनों की जो भड़वार है क्या अलग अलग तरीके से होती है या उसको फिर पौधे को अलग अलग शेप दे दिया जाता है कटिंग के माध्यम से?
0: कटिंग के माध्यम से उसको अलग अलग शेप दे देते हैं हम लोग।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: और जैसा चाहें आप, अगर उसको एक छोटा टोपियरी बनाना चाहते हैं तो वो उसका बन जाता है, किसी आर्च के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो वो आर्च के ऊपर चढ़ा जाता है, अगर छोटी झाड़ी बनाना चाहते हैं गोल तो वो बन जाती है।
1: हाँ,
0: सिर्फ अपने प्रूनिंग के माध्यम से।
1: जी जी जी जी। और भारतवर्ष में सर, और खास करके हमारा जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ इसकी जो वैरायटीज है उसमें कौन कौन खास प्रकार के रंग वाले फूल जो है?
0: देखिए, जो जहाँ तक गुच्छे की जो बात होती है, 2 तरह के बोगनवेलिया होते हैं, एक तो सिंगल ब्रैक्टेड बोगनवेलिया होते हैं और एक होते हैं डबल ब्रैक्टेड। डबल ब्रैक्टेड बोगनवेलिया बेहद खूबसूरत होते हैं और भारतवर्ष में भी बोगनवेलिया के ऊपर बहुत काम हुआ है। जो डबल ब्रैक्टेड पूरे बड़े बड़े गुच्छे निकलते हैं और उसमें जो खास, जो 4 किस्म के

0: डबल ब्रैकेट बुगनवेला हैं, उसमें हैं लूस बानियोस ब्यूटी है, चेरी ब्लॉसम है, महारा है और रोजविल डिलाइट है। हाँ। ये बेहद खूबसूरत लगते हैं।
1: जी।
0: और उसके अलावा करीब 300 नामित प्रजातियां हैं बोगनविलिया की, और आजकल क्रोमोसोम को चेंज करके इतनी ज्यादा वैरायटीज हो गई हैं, तो मेरे ख्याल से विश्व में करीब 1000 वैरायटीज हैं।
1: हाँ, 1000 प्रकार है इनका।
0: पर उसका जो नामकरण होता है किसी भी वैरायटी का, वो IARI दिल्ली के अंदर होता है।
1: जी,
0: तो
1: जी, जी।
0: 300 से कुछ अधिक वैरायटीज को
1: नामित किया। अच्छा सर, अगर कोई इसकी पौध लगाना चाहता है तो इसको क्या नर्सरी से ही खरीदना आवश्यक है, या कहीं से भी अगर इसकी पौध मिल जाती है या इसकी जो कटिंग मिल जाती है उससे ये लग जाते हैं?
0: इसका प्रोपगेशन 3 तरीके से होता है।
1: हाँ।
0: एक तो ये है कि आप उसकी कटिंग करें, पर उसमें विशेष ध्यान ये रखें जब उसको लगाएं तो बलुआ मिट्टी में लगाएं और उसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल दें और उसके ऊपर से पॉलीथीन लगा दें।
1: हाँ।
0: बहुत ज्यादा गीला ना हो तो उसके अंदर स्प्राउटिंग हो जाती है।
1: जी।
0: और उसमें करीब 30 दिन लगते हैं।
1: हाँ।
0: और दूसरा जो है उसमें एयर लेयरिंग होती है, जिसको कि आम भाषा में हम लोग गुट्टी कहते हैं।
1: जी।
0: तो उसके अंदर मॉस ग्रास लगा देते हैं और पॉलीथीन से कवर कर देते हैं।
1: हाँ।
0: और उसके अंदर रूटिंग हो जाती है। तीसरा जो आजकल बड़ा जबरदस्त प्रचार चल रहा है वो है टिश्यू कल्चर का।
1: हाँ।
0: तो जो खास वेराइटीज हैं वो टिश्यू कल्चर से पैदा होती हैं, और वो वेराइटीज आपको सब नर्सरी से लेनी पड़ेंगी। अगर आपके किसी मित्र के वहां पे बोगनविलिया की बच्ची झाड़ी लगी हुई है, आप वही चाहते हैं, तो आप या तो उसकी कटिंग से लगाएं या फिर आप उसकी एयर लेयरिंग कर दें या गुट्टी बांध दें उससे लगा।
1: जी। सर ये तो बहुत खूबसूरत पौधा ही है, इसकी जब फ्लावरिंग हो जाती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो पूरा क्षेत्र ही उस रंग में रंग गया है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर अलग अलग रंग के पौधे लगे हुए हों तो बहुत ही खूबसूरत इसका समा बनता है।
0: बिल्कुल।
1: एक पौधा और देखा जाता है सर, हाइड्रेंजिया, वो भी पहाड़ों पे ठंडे जगहों में होता है और काफी हद तक इससे मिलता जुलता दिखाई पड़ता है, लेकिन बोगनवेलिया जो है वो विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत आराम से उग जाता है, इसकी ये खासियत है, इसलिए ये ज्यादा लोकप्रिय है। क्या कहेंगे सर हमारे उन बागवानी करने वालों के लिए कि वो अगर इसके पौध लगाना चाहते हैं या अगर अपने गार्डन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो वो क्या करें कि उनका घर भी खूबसूरत लगे, उनकी बगिया भी खूबसूरत लगे?
0: देखिए, सबसे कम केयर का जो पौधा है वो बोगनविलिया है।
1: हाँ।
0: और देखिए, हमारे आगरा के अंदर दिक्कत का काम है तो बंदर बहुत नुकसान करते हैं।
1: हाँ।
0: तो यही एक पौधा है जिसको कि बंदर छूते नहीं है
1: जी।
0: और इतना बढ़िया रंग देता है, आपको बहुत ज्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रेंजिया आपने कहा बड़ा बेहद खूबसूरत पौधा है, पर वो पहाड़ों में लगता है, यहाँ पे ले आएंगे तो कुछ सर्दियों के कुछ महीनों में चलेगा, उसके बाद वो चलेगा नहीं।
1: जी।
0: तो कोशिश ये हो कि ज्यादा से ज्यादा बोगनविलिया लगाएं, और शहर की भी जो अथॉरिटीज हैं अगर जिनको कि ब्यूटीफाई करना है वो बोगनविलिया लगाएं, पर उसकी प्रूनिंग करवाते रहें।
1: जी। प्रूनिंग आवश्यक है,
0: प्रूनिंग बहुत आवश्यकता है, नहीं तो हेवायर हो जाता है, कोई शाखा इधर जा रही है कोई शाखा उधर जा रही है, वो परेशानी हो जाती है।
1: जी। तो अगर हर व्यक्ति जो भी जिनके पास थोड़ी सी जगह हो या जिनके अंदर थोड़ा सा भी पौधों का शौक हो वो इस पौधे को लगाए और अपने घर को, अपने छत को, अपने बागीचे को खूबसूरत बनाए।
0: जी।
1: तो डॉक्टर कुल पांड्या सर, आप हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी बातें बताई, खूबसूरत बातें बताई, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमारे वातावरण को, आपका स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता बोगनवेलिया घरेलू बाग की शान। भेंट वार्ता के वार्ताकार थे डॉक्टर मुकुल पांड्या और भेंट करते थे डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण। साथियों, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, अब बात करते हैं अपने नए खोज सेगमेंट में। तो आज हम अपने सेगमेंट में पशुपालन के क्षेत्र में जो नई तकनीकें विकसित हुई हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाय भैंसों के लिए पहनने योग्य स्मार्ट कॉलर। साथियों, ये

0: कॉलर जो होता है पशु के शरीर के तापमान, गतिविधि, जुगाली और हीट यानी कि गर्भाधान का सही समय इसकी जानकारी मोबाइल पर भेजता है। इससे बीमारी का पता जल्दी लग जाता है और दूध उत्पादन बढ़ाने में भी हमें मदद मिलती है। इसके अलावा ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम, इस मशीन के द्वारा हम मानवीय हस्तक्षेप के बिना गाय का दूध निकाल सकते हैं। इससे स्वच्छता भी बढ़ती है और समय की भी बचत होती है। अब साथियों ले चलते हैं आपको आगरा मंडी की तरफ और जानते हैं आज के ताज़ा भाव। तो आगरा मंडी में आज गेहूं का भाव लगभग 2700 रुपये प्रति क्विंटल और मक्के का भाव 1800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं कच्चा चना 6200 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द दाल 8800 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास दर्ज की गई है। किसान भाई आपसे अनुरोध है कि अपनी उपज को आप मंडी में बेचने जा रहे हैं तो बेचने से पहले संबंधित मंडी के भाव की पुष्टि अवश्य कर लें जिससे कि आपको अपने फसल का उचित दाम मिल सके। इसी के साथ साथियों जानते हैं मौसम का हाल। तो आगरा मौसम में साथियों आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा जिससे दिन भर उमस और गर्मी बनी रही। शाम के समय आसमान में बादल छाने की संभावना है। आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अभी उमस और गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। किसान भाइयों आपसे अनुरोध है कि आप जब भी खेत में काम करने के लिए जाएं तो साथ में पानी की बोतल लेकर जाएं। आइए साथियों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

अभी हमारे ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्यालोक। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मधुमंडल के सभी साथियों को कल्पना सरकार का नमस्कार और जगन्नाथ रथ महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। तो हाँ श्रमिक भाई बहनों, आज से शुरू हो चुका है श्रद्धा भक्ति की यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा। ये यात्रा बेहद पवित्र और भव्य उत्सवों में से एक है। साथियों, आज के दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा भव्य रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। हिंदू धर्म की एक अनोखी परंपरा है जहां देवता स्वयं भक्तों के पास आते हैं मिलने। जी हाँ, इस दिन भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आकर उन सभी भक्तों को दर्शन देते हैं जो किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते, और रथ को तो रस्सी से खींचते हैं, तो रथ की जो रस्सी होती है ना, उसे खींचना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। और हाँ साथियों, ये यात्रा है ना, हमें समानता, भाईचारा, सेवा का संदेश भी देती है, क्योंकि राजा से लेकर रंग तक सभी जाति धर्म वर्ग के लोग एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के रथ की रस्सियों को खींचते हैं। फिर इसका आध्यात्मिक महत्व भी है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से रथ शरीर, उसमें विराजमान भगवान आत्मा की मेल को दर्शाता है, जो जीवन के सत्य को दर्शाता है। वही ये यात्रा दोस्तों भाई बहन के आपसी प्रेम समानता को भी दिखाता है। तो आइए जगन्नाथ यानी संसार के स्वामी जगन्नाथ से, दीनानाथ से, हरि से प्रार्थना करें कि सबके मन में भक्ति हो, क्योंकि जहाँ भक्ति होगी वहाँ प्रेम होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ समानता होगी, वहाँ द्वेष नफरत नहीं होगा। तो आइए हरि का ध्यान करें।

राम कृष्ण हरि, गोपाल कृष्ण हरि, हरि का ध्यान लगा ले मन, सब मिट जाएंगे दुख तेरे। सच में साथियों, जब मन भक्ति में डूब जाता है तो बस दिल करता है कि डूबा ही रहे। परम खुशी जो मिलती है, शांति की अनुभूति जो होती है। लेकिन हमें इस दुनिया में लौटना भी तो है, यानी इस संसार में रहते हैं तो सांसारिक कर्तव्यों को भी तो पूरा करना पड़ता है ना साथियों। वैसे इस वक्त हमारा कर्तव्य है मेरा देश मेरी शान में कुछ ऐसी बातें बताएं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दें जिससे हमारा, हमारे देश की शान बढ़ती हो, आपके ज्ञान में इजाफा होता हो और हमें गर्व महसूस होता हो। तो देखिए, आज जयंती है अरुणा आसफ अली की। सुना तो है ना इस महान क्रांतिकारी, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका का नाम जरूर सुना होगा, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कई साहसिक कार्य किए थे साथियों। हाँ साथियों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब अंग्रेजों ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तब अरुणा आसफ अली ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अंग्रेजों को चुनौती दे डाली, कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराया। इतनी निडर थी, देश पर मर मिटने को तैयार थी। और आप तो जानते हैं ना, जो अंग्रेज के खिलाफ हो जाए उसकी पीछे अंग्रेज पड़ जाती है, तो बस गिरफ्तार के लिए तैयार रही, कोशिश की गिरफ्तार करने की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर नहीं पाई। वारंट भी जारी किया, उन पर इनाम भी रखा 5,000 रुपये का। उस दौर में ये रकम बहुत बड़ी थी साथियों, लेकिन वो भूमिगत हो गई थी, वहीं से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करती रही। राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर मासिक पत्रिका का संपादन भी किया, उषा मेहता के साथ मिलकर कांग्रेस का गुप्त रेडियो संदेश भी चलाया ताकि लोग जागरूक हो, देशभक्ति के प्रति उनके अंदर देश भावना जागृत हो। हाँ, उस वक्त तो अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन 1930 की बात है साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1932 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया, जहां जाकर उन्हें देखा कि राजनीतिक कैदी जो थे ना, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तो क्या फिर उन्होंने ठान ली भूख हड़ताल करने की, इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ झंडा लहराने की। और देखिए, केवल देश के आजादी से पहले ही उन्होंने काम नहीं किया, जब देश आजाद हुआ तब भी उन्होंने देश की सेवा की, राजनीति में सक्रिय रही और उन्हें दिल्ली का पहला मेयर चुना गया और दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उसकी

स्थिति को सुधारने के लिए भी बहुत कुछ किया। उनके अमूल्य योगदान के लिए ही पद्म विभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। साथियों, ये बेहद गर्व होता है ना कि ऐसे महान देश भक्तों की नगरी में हमने जन्म लिया है, जहाँ कण कण में देशभक्ति है, आध्यात्मिकता का वास है, जहाँ देशभक्तों का जोश है, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं इसकी शान को बढ़ाते हैं, हमारे देश की शान को बढ़ाते हैं। बोलते बोलते हैं ना साथियों भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन भाव विभोर होकर काम तो नहीं चलेगा, भी आज का प्रश्न भी तो पूछना है। तो आपको बताना है विश्व सर दिवस कब मनाया जाता है। आप सोचिए, हम यूं गए यूं आए।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जहां हम आज महान स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली का जन्मदिन मना रहे हैं, वहीं आज एक महान क्रांतिकारी, प्रसिद्ध वकील, समाज सुधारक, देशबंधु चितरंजन दास की पुण्यतिथि भी है। पता है साथी, उन्हें देशबंधु की उपाधि मिली थी, जिसका अर्थ होता है देश का मित्र। ये सम्मान उन्हें जनता के प्रति उनके समर्पण और देश सेवा के लिए मिला था, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख और समृद्धि से बढ़कर देश की आजादी को महत्व दिया। साथियों, चितरंजन दास ने कई स्वतंत्रता सेनानियों को कानूनी सहायता दी थी। उन्होंने श्री अरविंदो घोष का, जो अलीपुर बम कांड था ना, उनका मुकदमा लड़ा और उन्हें बरी भी कराया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बरी कराने में। बाद में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े और देशवासियों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया। मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों

की नीतियों का विधान परिषद के भीतर रहकर विरोध करना और भारत के लिए स्वशासन की मांग को मजबूत करना था। पता है साथियों, वो केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे बल्कि एक उदार समाज सेवी भी थे। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सुधार और गरीबों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उनका मानना था कि देश की उन्नति तभी संभव है जब हर नागरिक शिक्षित और जागरूक बने। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार देशभक्ति हमें आज भी प्रेरित करते हैं। तो आइए प्रण ले, हम भी अपने देश के प्रति ईमानदारी से सेवा करेंगे, समर्पण से देश को आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी साथी, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जब हम देश की माटी से दूर चले जाते हैं ना, देश की यही माटी की खुशबू हमें बुलाती है, पुकारती है। माटी की कसम, सर कभी झुकने नहीं देंगे, वतन पे जो आए उसे रुकने ना देंगे।

सच में साथियों, हमारे देश की माटी की बात ही निराली है, यहाँ की हर बात अनोखी है ना। चलिए, देश की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज का जो प्रश्न आपसे पूछा था उसका उत्तर आपको पता है ना, कि हमने प्रश्न पूछा था कि विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, प्रतिवर्ष 16 जुलाई यानी आज के दिन ही मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य देखिए यही है कि सांपों के प्रति लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं ना, उसे दूर करना है और लोगों को समझाना है कि इकोसिस्टम के ये रक्षक हैं और खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखने में मदद करते हैं। और आज के प्रश्न के बाद जो उत्तर आपको पता चल ही गया है, तो अब देश दुनिया की बातें कर लें। देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में अब एक्सरे MRI सिटी स्कैन मशीनों पर कार्य करने के लिए अब 1 डिग्री ही पर्याप्त होगी, क्योंकि आपने देखा होगा हृदय जांच के लिए ECG या इको होल्डर मॉनिटर MRI के लिए ना, मशीनों को चलाने के लिए अलग अलग डिप्लोमा कोर्स करने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टेक्नीशियन एक कोर्स करके एक बीमारी से जुड़ी सभी मशीनों का संचालन कर सकेंगे। तो है ना अच्छी खबर। और इसके अलावा जो दूसरा समाचार है ना, वो भी बहुत अच्छा है। देखिए, रक्तचाप मधुमेह समेत 39 दवाओं की कीमतें अब तय कर दी गई हैं, और यदि कोई अधिक दाम लेते हैं तो ब्याज समेत होगी वसूली उनकी। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि ये समाचार सुनकर आप ज़रूर जागरूक हुए होंगे और अब सेहत के प्रति सजग होने की बारी है ना, क्योंकि देखिए सेहत टिप्स में हम आपको आज बताने वाले हैं जो आम समस्या है इन दिनों, जी हाँ, बाल झड़ने की। बताइए किसके किसके बाल झड़ रहे हैं? सभी कहेंगे भाई हमारे तो बहुत झड़ रहे हैं। देखिए साथियों, बरसात का जो मौसम होता है ना, इस मौसम में अक्सर क्या होता है, ये नमी होती है और ये नमी बालों की प्रकृति नमी को ख़त्म कर देती है, जिससे बाल रूखे उलझे कमज़ोर हो जाते हैं और जिसके कारण ये टूटते भी हैं। फिर इन दिनों उमस होती है, पसीना आता है, तो एक वजह ये भी है जिससे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे बाल झड़ते भी हैं। तो आप बालों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं ताकि झड़े नहीं, इसके लिए साथियों बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भोजन है, डाइट है, उसमें विटामिन, आयरन और प्रोटीन को ज़रूर लें, क्योंकि देखिए आपने ऊपर से लगा लिया और खाया नहीं तो बाल मजबूत नहीं होंगे। आपको खाना भी है और इसके साथ आपको बालों को स्वस्थ रखने के लिए बाल धोने से पहले आपको गुनगुने तेल से हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, तेल से मालिश कीजिए, जिससे रक्त संचार अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बाल टूटते कम हैं। फिर हाँ, शैम्पू जो यूज़ कर रहे हैं वो सल्फेट फ्री होना चाहिए, आखिर ये बाल आपके हैं, कीमती हैं। और इसके साथ कंडीशनर, हेयर मास्क भी ज़रूर लगाएं। देखिए साथियों, बालों की ना 3 परत होती है, पहली परत से शैम्पू करने से वो खुल जाती है, खुलेगी तो गंदगी होगी, गंदगी जाएगी और उससे बाल उलझेंगे, टूटेंगे। इसलिए जो कंडीशनर हेयर मास्क जो होता है ना, उनका सुरक्षा कवच होता है, आप लगा के देखिए आपके बाल ज़रूर कम टूटेंगे। हाँ, एक तो हो तो चलता है, लेकिन जिस अनुपात में आपके बाल टूट रहे हैं वो उतने नहीं टूटेंगे, है ना। तो ये उपाय करके देखिए और अपने भोजन में आयरन, प्रोटीन और विटामिन ज़रूर लीजिए। उसके साथ ही आज की पाती में ना साथी, एक बहुत प्यारी सी बच्ची की पाती, हम उसकी फरमाइश का गीत सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं, ये छोटी सी बच्ची अभी देखिए स्कूल जा रही है, स्कूल अभी नई नई प्ले ग्रुप में है और प्ले ग्रुप में उसके दादा दादी छोड़ने जाते हैं, प्ले

ग्रुप में साथी हूँ। बच्चे ना बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाते हैं, बैग भी बहुत सुंदर सा है, और मेरे पड़ोस में रहती है, और आज गले मिल के बोली, आप क्या मेरी पसंद का गाना सुना दोगे क्या? तो मैंने कहा, कौन सा गीत सुनना है आपको, आप बताओ। तो बोली है, लकड़ी की काठी, तो प्रियदर्शनी की फरमाइश में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: और इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम मजदूर मंडल को यहीं संपन्न करने की कल्पना सरकार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा

0: कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत का एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशीय तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंद्र शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक ने इस्तीफा दिया था। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण यह दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 20 ओवर में 2 विकेट पर 110 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Union Agriculture and Farmer Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said that India has recorded a production of 376 million tons of food grains and 377 million tons of horticultural produce this year, despite challenges like climate change. Addressing a

सर्वोच्च होती है और सरकार जनता के हित में कार्य करती है। आधुनिक युग में लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि आधुनिक सभ्यता का नैतिक मापदंड बन चुका है। कोई भी राष्ट्र स्वयं को तब तक सभ्य नहीं कह सकता जब तक कि उसकी शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी सुनिश्चित न हो। लोकतंत्र जिसका अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस एवं क्रेसिया से मिलकर बना है, जिनका क्रम से अर्थ होता है जनता एवं शासन, जिसका शाब्दिक अर्थ निकलता है जनता का शासन। लोकतंत्र को सही अर्थों में परिभाषित करते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने सबसे सटीक परिभाषा दी है, जो है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन है। इस परिभाषा के प्रथम मुख्य शब्द जनता का से आशय है कि शासन की शक्ति का वास्तविक स्रोत देश की जनता है। सरकार देश के नागरिकों से बनती है और संप्रभुता जनता में निहित होती है। इस परिभाषा के द्वितीय शब्द जनता के लिए से आशय है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा करना होता है। तीसरे महत्वपूर्ण शब्द जनता के द्वारा से आशय है कि शासन चलाने वाले प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुने जाते हैं। भारत में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से देश का संचालन किया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के कार्यों को तीन प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित किया गया है। इन तीनों अंगों को लोकतंत्र के तीन स्तंभों के रूप में पहचाना जाता है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका का कार्य संविधान की रक्षा करना, कानून की व्याख्या करना और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तीन अंगों का आपसी समन्वय और संतुलन ही किसी भी लोकतंत्र की सफलता की कुंजी है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में न्यायपालिका द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावों पर निर्भर नहीं करती बल्कि संविधान, कानून के शासन, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्र न्यायपालिका पर भी आधारित होती है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर न हो। न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि किसी राजनीतिक लालच या मजबूरी में कार्यपालिका या विधायिका संविधान के विरुद्ध कार्य न करें। यदि सरकार या संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इस अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। इससे संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था सुरक्षित रहती है। लोकतंत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है। इसके साथ ही न्यायपालिका कानून के शासन को स्थापित करती है जिससे सभी नागरिक कानून की नजर में समान रहते हैं। न्यायपालिका सामाजिक न्याय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गरीब, कमजोर, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय समय समय पर महत्वपूर्ण निर्णय देते रहती हैं। जनहित याचिका के माध्यम से भी समाज के कमजोर वर्ग न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इससे न्याय सभी के लिए सुलभ बनता है। चुनाव लोकतंत्र का आधार है। न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को भी संरक्षण प्रदान करती है। चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा न्यायालयों द्वारा किया जाता है जिससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहती है। इससे जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होता है। न्यायपालिका भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जाँच और न्यायिक निर्णय प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देते हैं। न्यायपालिका के कठोर निर्णय शासन व्यवस्था में सुधार लाने और जनता का विश्वास बनाए रखने में सहायक होते हैं। भारतीय न्यायपालिका ने अपने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को न केवल सुरक्षित रखा है बल्कि उसे समय के साथ और अधिक मजबूत व पारदर्शी भी बनाया है। इस चर्चा में ऐसे दो महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करना अति आवश्यक हो जाता है। प्रथम, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में न्यायपालिका ने
संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन

0: कर संविधान संशोधन के तथाकथित असीमित संसदीय अधिकार पर अंकुश लगाया। द्वितीय निर्णय है भारतीय संविधान के 99 संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाना, जिसके माध्यम से सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक नया आयोग लाना चाहती थी तथा न्यायपालिका पर कार्यपालिकीय नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती थी। इन निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने यह संदेश दिया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए न्यायपालिका की स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि न्यायपालिका के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे अशिक्षित जनता में लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ की कमी, अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, न्यायिक प्रक्रियाओं का जटिल होना और संसाधनों की कमी, न्याय दिलाने में देरी जैसी समस्याएं लोकतंत्र की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। इससे आम आदमी का विश्वास लोकतंत्र के प्रति कमजोर पड़ता है। कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। इन चुनौतियों का समाधान न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने, आधुनिक तकनीक के उपयोग, ई कोर्ट प्रणाली को मजबूत करने, न्यायिक सुधारों को लागू करने तथा जनता में लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ को बढ़ाने से किया जा सकता है। प्रसिद्ध विद्वान गार्नर ने कहा है कि न्यायपालिका के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका न केवल संविधान की संरक्षक है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी रक्षक भी है। लोकतंत्र की मजबूती में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण, व्यापक और अनिवार्य है। न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए एक सशक्त और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अत्यंत आवश्यक है।
1: विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रित वार्ता, लोकतंत्र की मजबूती में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर। वार्ताकार थे डॉ. सुरेंद्र पाल सिंह। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की करेंगे शुरुआत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन समेत 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला

0: सम्मेलन, उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा को पांचवीं या छठी कक्षा से शुरू करने का दिया सुझाव। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से करेंगे। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित होगी, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,570 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन स्टेशन समेत 20 राज्यों में 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा लगभग 24 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ऐशबाग जंक्शन स्टेशन का अपग्रेडेशन किया गया है। इस आधुनिकीकरण से हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों पर यात्रियों के बैठने की क्षमता बढ़ाने, सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाने, वेटिंग हॉल को आधुनिक रूप देने समेत कई अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने आज वाराणसी में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत आयोजित पहले पंच सम्मेलन में हिस्सा लिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और प्रदेश के ग्राम विकास विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्ति को काम भी मिलेगा।
1: विकसित भारत जी राम जी है, इसमें पीएम गति शक्ति के नाम का एक पोर्टल है। जो सड़क पहले लोग बनाते थे, गांव की कच्ची बनावे चाहे पक्की बनावे, जो तालाब पहले खोदते थे चाहे वह खोद के फिर से उसको भरे और फिर खोदने का काम करें, अब यह डुप्लीकेसी नहीं होगी। पीएम गति शक्ति का मतलब है कि अगर आपने गाँव के हर घर तक आप आवागमन और जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसकी कार्य योजना आपको बनाना पड़ेगा।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकास परक बनाना है।
2: विकसित भारत जी राम जी जो 1 जुलाई से पूरे देश में एक साथ लागू हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब इसकी कल्पना की गई तो सिर्फ ये कल्पना नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना था कि हमारा जो श्रमिक है 12 करोड़ से ऊपर के लोग इस देश में एक घंटा भी बिना काम के वो न रहे। ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है, पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा माध्यम। अपने गाँव को कैसे विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए आप कितना खड़े हैं यह आपके ऊपर।
0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता मामले में पुलिस ने आज एंटी करप्शन कोर्ट में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की एक हफ्ते की कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन दिया है। रिमांड पर कल सुनवाई होगी। इससे पहले विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट से अनुमति लेकर आज सुबह लगभग 1 घंटे दोनों से पूछताछ भी की। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के कुकरेल आरक्षित वन में देश की पहली नाइट सफारी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश

0: सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक आवेदन पर कल ये आदेश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को नाइट सफारी का काम शुरू करने से पहले विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करने और अनुमतियां प्राप्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि परियोजना के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी भी प्राप्त करनी होगी। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने बताया कि नाइट सफारी राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो गई है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी श्रद्धालुओं ने रथ यात्राएं निकाली। वाराणसी में तीन दिवसीय ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले का आज शुभारंभ हो गया है। आज भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती में भाग लेकर सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। हापुड़ में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा से सुशोभित रथ को श्रद्धालुओं ने बारी बारी से खींचा। भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती गई और ड्रोन कैमरे की मदद से रथ यात्रा पर निगरानी रखी गई। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया रूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें चार बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाराबंकी में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है। केंद्रीय जल आयोग के जूनियर इंजीनियर आकाश प्रताप ने बताया कि प्रशासन जलस्तर पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
3: पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। पिछले एक दिन में जो है लगभग 40 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है और अगर बारिश ऊपरी क्षेत्रों में लगातार होती रहेगी तो जलस्तर इसी तरह से बढ़ेगा। वार्निंग लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको जलस्तर की सूचना दे दी जाएगी।
0: मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी जनपदों में बौछारें पड़ने और पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की करेंगे शुरुआत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन समेत 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा को 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का दिया सुझाव। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी

0: बारिश का अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
2: मीडियम वेव 401.68 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर
3: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साहित्यकारों और प्रेस की भूमिका विषय पर। श्रोताओं, हमारे देश की स्वतंत्रता केवल तलवार और संघर्ष का परिणाम नहीं थी, बल्कि लेखनी और विचारों की शक्ति ने भी इस आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की चेतना जगाई। उस समय कविताएं, उपन्यास, नाटक और गीत केवल साहित्य नहीं थे, बल्कि जन जागरण के प्रभावी माध्यम बन गए।

0: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणादायी उद्घोष बना। रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं से देश प्रेम की भावना को जन जन तक पहुंचाया। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी ने वीरता और बलिदान का ऐसा संदेश दिया जिसने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
1: बल्ली कित है?
2: वाहे गुरु,

दूसरी ओर प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने और ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रोताओं, उस समय समाचार पत्र जनता की आवाज बन गए थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के केसरी और मराठा, महात्मा गांधी के यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, इतना ही नहीं गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप जैसे समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता, स्वराज और सामाजिक सुधार के विचारों का व्यापक प्रचार किया। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस की बढ़ती शक्ति को देखते हुए बहुत से कठोर कानून बनाए और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का भरसक प्रयास किया। अनेक पत्रकारों और संपादकों को जेल भेजा गया, लेकिन वे अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे।

श्रोताओं, वास्तव में साहित्यकारों की लेखनी और प्रेस की निर्भीक आवाज ने भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। उन्होंने स्वतंत्रता को केवल एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक बना दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साहित्य और प्रेस ने एक मौन किंतु अत्यंत प्रभावशाली योद्धा की भूमिका निभाई। उनकी प्रेरणा, विचार और संघर्ष ने हमारे देश की स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया। आज भी उनका योगदान हमें सत्य, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है।

श्रोताओं, साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं से देशभक्ति की भावना जगाई तो प्रेस ने सत्य का दीप जलाकर जन जन को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में जितना योगदान रणभूमि के वीरों का है, उतना ही योगदान लेखनी के उन अमर सिपाहियों का भी है जिन्होंने शब्दों को हथियार बनाकर गुलामी की बेड़ियों को चुनौती दी। आज कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश के माध्यम से हम उन सभी साहित्यकारों, पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनके त्याग, तप और विचारों ने हमें स्वतंत्र भारत का गौरव प्रदान किया।

इसके साथ ही कार्यक्रम को समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। श्रोताओं नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द गीत। आज का कार्यक्रम केंद्रित है दिल पर। तो सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं शिकार फिल्म का गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वर में। प्रवीण भारद्वाज के गीत को संगीत दिया है आनंद राज आनंद ने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत परदेश फिल्म से। इसे गाया है कुमार सानू ने। परदेश फिल्म के इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अब आइए सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत के बोल लिखे हैं असद भोपाली ने, धुन बनाई है राम लक्ष्मण ने।

0: से कर लीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे रंग फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में। समीर के गीत को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मस्ती फिल्म का गीत। स्वर और संगीत है आनंद राज आनंद का। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

अभी आप सुन रहे थे मस्ती फिल्म का गीत आनंद राज आनंद के स्वर में। गीत लिखा था समीर ने। इसके साथ ही दिल पर केंद्रित कार्यक्रम शब्द गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं शेषनाग फिल्म का गीत सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अब आइए सुनते हैं सरफरोश फिल्म का गीत अलका याग्निक के स्वर में। समीर के गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: सरफरोश फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार।

0: समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही

0: चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
2: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच

0: पाबंदी लगाए कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
2: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
3: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी डीजे और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में

0: आज 1 डॉलर की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ।
1: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind railway station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees. US expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates. 2 Indian men boxers clinch gold while 3 bag silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in men's cricket, second ODI between India and host England underway in Cardiff. And now the news in detail. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana.

0: Akashwani News.
1: The India Meteorological Department, IMD, has forecast enhanced rainfall activity over east and northeast India, eastern Uttar Pradesh and western Himalayan region during the next 7 days. Isolated extremely heavy rainfall is also likely to prevail over Odisha today. The weather department said that Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh are expected to experience isolated to scattered rainfall tomorrow. According to IMD, similar conditions will also prevail over Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab during the next 3 to 4 days and Rajasthan till the 22nd of this month. On to sports now. Two Indian men boxers clinched gold while three others bagged silver at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta today. India concluded its campaign at the championships with strong performances in the finals. Vishwanath Suresh in 50 kilograms and Ganga in 55 kilograms won gold in the Under-23 men's category. Vanshaj in 65 kg settled for silver. In the Under-19 men's finals, Aditya in 55 kg and Shubham Rajput in 90 kg also finished with silver medals. In men's cricket, India have set a target of 234 runs for host England in second one-day international of the three-match series at Cardiff. India were all out for 233 in 44 overs. Earlier, England skipper Harry Brooke won the toss and opted to field. India had defeated England by 6 wickets in the first one-day international in Birmingham on Tuesday. In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu outclassed world number 5 Han Yui of China to storm into the quarterfinals of the Japan Open in Tokyo today. She will next face Nozomi Okuhara of Japan tomorrow. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in the US to set up the title clash with European powerhouse Spain. The summit clash will be on Sunday night at New Jersey Stadium in the US. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Orissa's Puri draws lakhs of devotees. US expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade. Tehran retaliates. Two Indian men boxers clinch gold while three bag silver at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta. And in men's cricket, India set a target of 234 runs against host England in second ODI in Cardiff. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत ने सामाजिक तहफ्फुज के फ्रेमवर्क के तहत 1 अरब से ज्यादा शहरियों को शामिल करते हुए अहम संगे मील उबूर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के दरमियान बराह रास्त कमर्शियल परवाज का आगाज हो गया है, जिससे फिजाई कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत हो गई है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा में लाखों अकीदतमंद शरीक हो रहे हैं। अमेरिका ने शुमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 2 मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि 3 मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे जीते हैं। और मर्दों के क्रिकेट में कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत में सामाजिक तहफ्फुज का दायरा 1 अरब से तजावुज कर गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत में सामाजिक तहफ्फुज की कवरेज जो साल 2015 में 19% थी, साल 2026 में बढ़कर 68.4% हो गई है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा शहरी सामाजिक तहफ्फुज के दायरेकार में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मोदी हुकूमत की सबका साथ सबका विकास के अहद की अक्कासी करता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के अपने दौरे के दौरान जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रो

0: हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर मुल्क में ही डिजाइन, तैयार और इंजीनियर की गई है। इसकी तैयारी में घरेलू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो जदीद रेलवे इंजीनियरिंग के शोबे में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों की अक्कासी करती है। इस ट्रेन के आगाज के साथ ही भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पहले से ही कामयाबी से चल रही हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका शामिल हैं। इस ट्रेन की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा है, ताहम इस मखसूस रूट पर इसे 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। माफ कीजिए, ये रिपोर्ट हम आपको बाद में सुनवाएंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ जाएंगे, जहां वो 6,600 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट सेहत, तालीम और सड़कों के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता हैं। इसके बाद जनाब मोदी जालंधर जाएंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना और खित्ते की माशी तरक्की को रफ्तार फराहम करना है। वजीर आजम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अजसरेनो तैयार किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का भी इफ्तिताह करेंगे, जिनमें जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के आवाम के दरमियान रेलवे, सेहत, सकाफत, राबता, तालीम और दीगर शोबों से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के मुंतजिर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स अवाम, खासतौर पर मुल्क की युवा शक्ति की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। ज़िराअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली जैसे चैलेंजेस के बावजूद भारत ने इस साल 376 मिलियन टन गजाई अजनास और 377 मिलियन टन बागबानी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार का रिकॉर्ड कायम किया है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब साइंसदान बराह रास्त खेतों में किसानों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,657 साइंसी टीमों ने 728 जिलों में, खासतौर पर एल नीनो से मुतासर इलाकों में तकरीबन 1 करोड़ किसानों से राबता कायम किया है।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनों के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत मिशन आईसीआर 100 के तहत 100 यंग साइंटिस्ट ग्राम चैलेंज का आगाज करेगी, जिसमें नौजवान साइंसदान मसनूई जहानत, एआई, रोबोटिक्स, जदीद ज़राअत और आबोहवा की तब्दीली के लिहाज से स्मार्ट ज़राअत जैसे शोबों में कौमी सतह पर मुकाबले मुनक़द किए जाएंगे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत आबोहवा की तब्दीली के लिहाज से 100 स्मार्ट गांव भी तैयार करेगी, जो पायदार, जदीद और आबोहवा की तब्दीली से हम आहंग ज़राअत के मिसाली नमूने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ज़रई तहकीक की भारतीय काउंसिल आईसीएआर ने पिछले एक साल में 44 फसलों की 386 बेहतर अकसाम तैयार की हैं, जिनमें 94% आबोहवा की तब्दीली के खिलाफ मजाहिम फसलें और 29 अकसाम गजाइत से भरपूर हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साइंसी इदारों, सनत और रियासती हुकूमतों के दरमियान मजबूत इश्तराक की अपील की, ताकि मुल्क भर में स्वदेशी तर्ज पर तैयार करदा टेक्नोलॉजियों के बड़े पैमाने पर निफाज को यकीनी बनाया जा सके। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR की एक साल तवील प्लेटिनम जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि बुनियादी ढांचे की भारत की गैर मुतवक्क तौसी ने साइंसी इदारों को सड़कों, पुलों और ट्रांसपोर्ट निजाम के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों में ताउन करने का अहम मौका दिया है। मरकज के जिला इंतजाम इलाके दमन के लिए एक अहम संग मील के तौर पर आज नए तामीर शुदा नमो हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए पहली कमर्शियल परवाज का आगाज किया गया। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ने मजकूरा हवाई अड्डे पर एक खसूसी तकरीब में इस पहली परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पेशरफ्त हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नमो हवाई अड्डे के इफ्तिताह के बाद हुई है। बराह रास्त फिजाई राबते से दमन में सियाहत, तिजारत और सरमायाकारी को नुमाया फरोग हासिल होगा। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में नमो हवाई अड्डे से मुल्क के दीगर बड़े शहरों के लिए भी परवाजें शुरू करने का मंसूबा।

0: सुबह है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उड़ीसा का पवित्र शहर पुरी अकीदत से सरचार है क्योंकि भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा पूरी मजहबी अकीदत के साथ शुरू हो गई है। नामवाफिक मौसमी हालात के बावजूद अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ग्रैंड रोड पर मौजूद है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने की आलमी शोहरत याफ्ता रस्म बारिश के बाद दिन भर के लिए मुअत्तल रही। इससे पहले तकरीबात पर उस वक्त असर पड़ा जब मुबैना तौर पर भगदड़ जैसे वाकये में एक अकीदतमंद की मौत हो गई। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: श्री गुंडीचा मंदिर के करीब भगदड़ जैसे वाकये में एक अकीदतमंद की मौत हो गई जबकि दिगर कई जख्मी हो गए। शदीद जख्मी अफराद को इलाज के लिए करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। उड़ीसा हुकूमत ने इस वाकये की आला सतही जांच का हुक्म दिया है जबकि रथ यात्रा के बाकी हिस्से के लिए हिफाजती इंतजाम और भीड़ को मुनजम करने के तरीकेकार को मजीद मुस्तहकम किया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
0: हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने परिवर्तन स्कीम के रहनुमा उसूलों को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम का मकसद ट्रांसपोर्ट से होने वाली फिजाई आलूदगी और गाड़ियों से कार्बन के अखराज में कमी लाने के लिए पुरानी गाड़ियों की जगह नई और माहौलियात के लिए साजगार गाड़ियां लाने की हौसला अफजाई करना है। ये स्कीम खासतौर पर कौमी राजधानी खिता NCR में चलने वाले ज्यादा आलूदगी फैलाने वाले पुराने ट्रकों और बसों को भारत स्टेज BS6 मेयार से हम आहंग करना या बैटरी से चलने वाली गाड़ियों से तब्दील करने में मदद फराहम करेगी। इस स्कीम के तहत गाड़ी खरीदने वालों को मोटर गाड़ियों के टैक्स में रियायत, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, गाड़ी के कर्ज में 5% सूद की रियायत और रियायत की हकदार नई गाड़ियों पर साजो सामान के ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से कम अज कम 8% रियायत दी जाएगी। भारत के रिजर्व बैंक RBI ने मुल्क के मालियाती शमूलियाती इशारिये FI इंडेक्स में बेहतरी का इंदराज किया है। इसके मुताबिक ये इशारिया मार्च 2025 के 67 से बढ़कर मार्च 2026 में 70 हो गया है। ये मुतवातिर इजाफा मुल्क के मालियाती खिदमात के बढ़ते दायरे की पेशरफ्त और मुल्कगीर सतह पर मालियाती मसरूफियात की वसूत का अक्कास है। कंपोजिट FI इंडेक्स 97 इशारियों का अहाता करता है जिसमें कोई बुनियादी साल नहीं होता। वहीं ये तीन बुनियादी पैमानों पर भारत के मालियाती इको निजाम को भी परखता है। FI इंडेक्स की शुरुआत मार्च 2021 में खत्म होने वाले माली साल के लिए अगस्त 2021 में हुई थी और इसे सालाना बुनियाद पर शाये किया जाता है। अमेरिका ने आज सुबह सवेरे ईरान पर अपने हमले मजीद तेज कर दिए हैं। अमेरिकी फौज ने शुमाली इलाकों में भी कई अहदाफ को निशाना बनाया और एक बहरी जहाज पर भी फायरिंग की। अमेरिका ने इस जहाज पर इल्जाम लगाया कि वो ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके जवाब में ईरान ने मिजाइलों और ड्रोन्स के जरिए खित्ते में मौजूद अमरीका के इत्तेहादियों को निशाना बनाया और खबरदार किया कि हमलों में मजीद शिद्दत आ सकती है। ईरानी हुकाम के मुताबिक हालिया अमरीकी हमलों में 35 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं और 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस बीच ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने खबरदार किया कि अगर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की उन बार बार दी जाने वाली धमकियों पर अमल होता है जिनमें ईरान के पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने की बात कही गई है तो ईरान खित्ते के अहम बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ईरान अमरीका को आमनाए हुरमुज में मदाखलत करने की इजाजत नहीं देगा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा जरई तहकीक की भारतीय काउंसिल ICAR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मंगीलाल जाट के साथ भारत के जरई शोबे की पेशरफ्त में ICAR के ताउन पर एक खसूसी बातचीत नशर करेगा। इस खसूसी बातचीत को मुल्कगीर हफ्तावार प्रोग्राम में आज रात 9:30 बजे सुना जा सकता है। ये प्रोग्राम FM गोल्ड चैनल और इजाफी फ्रीक्वेंसीज पर भी सुना जा सकता है। जकार्ता में आज 19 और 23 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी मुहिम का अख्तिताम किया। विश्वनाथ सुरेश ने 50 किलोग्राम के जुमरे में और गंगा ने 55 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता। 23 साल की उम्र तक के मर्दों के फाइनल में भारत ने सोने के 2 तमगे जीते हैं। वंशज ने फाइनल में 65 किलोग्राम के जुमरे में भरपूर मुकाबला किया लेकिन उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। मर्दों के 19 साल से कम उम्र के फाइनल मुकाबले में भारतीय बॉक्सर्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया लेकिन उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। मर्दों के क्रिकेट में कार्डिफ में 3-1 रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 234 रन का निशाना रखा है। इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह ईशान किशन को शामिल किया गया है। भारत को सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु आज टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दुनिया की 5 नंबर की चीनी खिलाड़ी हैन यू को सीधे सेटों में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दूसरे राउंड के इस मुकाबले में सिंधु ने सिर्फ 35 मिनट में आला दर्जे की चीनी खिलाड़ी को 21-16, 21-14 से हरा दिया। कल उनका सामना जापान की नोजोमी ओकुहोरा से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में मिक्स्ड डबल्स की भारतीय जोड़ी तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की शिकस्त के बाद सिंधु टूर्नामेंट में वाहिद भारतीय खिलाड़ी रह गई हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिनों में मुल्क के मशरकी और शुमाल मशरकी इलाकों, मशरकी उत्तर प्रदेश और ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि बाज़ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, जबकि राजस्थान में इस महीने की 22 तारीख तक इसी तरह के मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वो 21 जुलाई तक जुनूब मगरबी बहिरा अरब और अगले 2 दिनों तक जुनूबी खलीज बंगाल और इससे मुल्हिका इलाकों में जाने से गुरेज करें। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने समाजी तहफ्फुज के फ्रेमवर्क के तहत 1 अरब से ज्यादा शहरियों को शामिल करते हुए अहम संगे मील उबूर किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के दरमियान बराह रास्त कमर्शियल परवाज का आगाज हो गया है, जिससे फिजाई कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत हो गई है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा में लाखों अकीदतमंद शरीक हो रहे हैं। अमेरिका ने शुमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 2 मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि 3 मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
3: श्रोताओं, भारत कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत जहां एक तरफ बहुतायत में अनाज या अन्न का उत्पादन करता है तो दूसरी तरफ भारत की जो खेती है वो वैज्ञानिक और उन्नत है और तकनीकी रूप से सक्षम है। भारत की खेती को इतना उन्नत, तकनीकी रूप से सक्षम और भारत के अन्न भंडारों को लगातार भरने का जो एक बीड़ा उठाते हैं हमारे कृषक उठाते हैं, लेकिन कृषकों के समर्थन और उनकी सहायता के लिए बहुत से संस्थान भी काम करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक ऐसा ही संस्थान है जिसने लगभग 98 वर्षों से देश की सेवा की है, कृषि क्षेत्र को लगातार समृद्ध बनाया है। तो आज हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98 स्थापना दिवस के अवसर पर और जिस तरह से इस संस्थान ने भारत को कृषि प्रधान देश और उन्नत कृषि के मामले में सक्षम बनाने में जो भूमिका निभाई है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट कार्यक्रम में जुड़े हैं। डॉक्टर मांगीलाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सबसे पहले तो आपको जो ये लंबा सफर रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का और 98वां जो स्थापना दिवस मनाया है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और चर्चा की शुरुआत इससे ही करते हैं कि जो ये एक पूरा सफर रहा है, कैसे आप देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारत की खेती के लिहाज से इस सफर को, क्या सबसे बड़ा योगदान आप मानते हैं इस संस्थान का?
4: धन्यवाद। सबसे तो पहले मैं आज अपने श्रोताओं

0: को, स्पेशली हमारे किसानों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज इस 98वें स्थापना दिवस के मौके पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97 साल का ये सफर, क्योंकि 98वां स्थापना दिवस आज मनाया है, काफी गौरवशाली रहा है। यदि आप देखें तो हम खाद्यान्न में, हॉर्टिकल्चर में, लाइव स्टॉक सेक्टर में, फिशरीज सेक्टर में हमने जो सफर तय किया है वो बहुत अद्भुत है। हमें आयात पर निर्भर होना होता था, आज हमारे देश में अन्न के भंडार इतने भरे हुए हैं। आज हमारा जो एवर हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन जो इस साल का मैं बताऊं आपको, 376.7 मिलियन टन हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, 377 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, मिल्क का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, लगभग 20 मिलियन टन के आसपास फिश का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट। ये सारा का सारा जो जितना हुआ है इसके बैकग्राउंड में विज्ञान, तकनीकी, पॉलिसी, किसानों की मेहनत सारा शामिल है, और ये पूरा इकोसिस्टम के साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूरे देश में काम करता है। ये विश्व का एक सबसे बड़ा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हमारे जो 114 संस्थान, हमारे 731 कृषि विज्ञान केंद्र है जिनको हम काम करते हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं 80, उनके साथ में काम करते हैं, तो बहुत बड़ा नेटवर्क है जी। और काफी हमने प्रगति की है, और स्पेशली यदि हम आज, क्योंकि आज हमारा स्थापना दिवस है, एक रिफ्लेक्शन पिछले एक साल का यदि मैं करूं तो बहुत बड़ा काम इसमें हुआ है। पिछले एक साल में हमने 19.5 मिलियन टन के लगभग फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाया है एक साल में, 7 मिलियन टन के लगभग हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया है, फिशरीज का, लाइव स्टॉक का, और इन सब की यदि वैल्यू मैं करूं तो लगभग 2.25 लाख करोड़ के लगभग एडिशनल वैल्यू मैं बता रहा हूं जो एक साल में हुआ वो है। और इस सब के पीछे अनुसंधान का हाथ है, उसके साथ साथ पॉलिसी और किसान की मेहनत तो है ही है। तो ये गौरवशाली इतिहास है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का।
1: बिल्कुल, आपने जैसे कि बात की शुरुआत में ही कि जो भारत की कृषि है, या कृषि को हम अगर पूरी परिभाषा के साथ देखें तो इसमें फिशरीज है, डेयरी है, लाइव स्टॉक है, हर तरह का क्षेत्र शामिल है, और इसमें भारत के जो प्रगति है उसके आपने बहुत पॉजिटिव आंकड़े और एक समृद्ध देश के आंकड़े आपने प्रस्तुत किए। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन से अहम नवाचार, इनोवेशन या रिसर्च या फिर खेती के लिए बड़े पॉलिसीज रही हैं जिन्होंने भारत की खेती की तस्वीर को बदला है इन बीते कुछ वर्षों में, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है।
0: सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो है बीज, और क्वालिटी बीज, हाई यील्डिंग सीड, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड, इसके ऊपर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बहुत काम किया है। हमारा पिछले 10-11 साल का देखें तो 3000 से ज्यादा क्रॉप वैरायटीज जो हमने रिलीज किए हैं उनमें से ज्यादा वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलिएंट है। और इसी को यदि आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में चाहे वातावरण की विषम परिस्थितियां रही हो उसके बावजूद भी हमारा प्रोडक्शन घटा नहीं, बढ़ा है। तो क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने में बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे क्रॉप्स की हो चाहे हॉर्टिकल्चर की हो। उसके साथ साथ में पशुधन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ब्रीडिंग और बाकी मटेरियल, इंप्रूव्ड ब्रीड और उनकी तो बात है ही है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके कॉन्टेक्स्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो वैक्सीन पे काम किया है, हमने क्विकली उसको जो रेस्पॉन्ड किया है, चाहे फुट एंड माउथ डिजीज हो, चाहे लंपी स्किन डिजीज हो, और मैं मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज हमने फाउंडेशन डे के दौरान एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का वैक्सीन रिलीज किया है जो एक अपने आप में ब्रेक थ्रू है। तो उसके कारण से जो एनिमल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। हमारे प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, चाहे वातावरण हो, उसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। लैंड डिग्रेडेशन जो वाटर से होता था 125 मिलियन हेक्टेयर वो कम होके 80 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। उसके अलावा सेंड्यून स्टेबिलाइजेशन, चाहे आप डेजर्ट की बात करते हैं तो उसपे काम हुआ है। हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेज बना के जो काम किया है और उसका अपस्केलिंग किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। हमारी ऊसर भूमि और इस तरीके की जो भूमि थी डिग्रेडेड उनका रिक्लेमेशन का बहुत बड़ा काम हुआ है। हमने फार्म मैकेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा काम किया है और फार्म मैकेनाइजेशन का लेवल काफी बड़ा है क्योंकि अभी लेबर की अवेलेबिलिटी और टाइमलीनेस ऑफ द ऑपरेशन ये काफी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, तो मैकेनाइजेशन पे बहुत बड़ा फोकस हमने किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाना सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है।
1: बिल्कुल, अगला सवाल मेरा डॉक्टर मांगेलाल इसी पर ही था कि जैसे ही आपने बहुत से प्रयोगों की बात की, लेकिन प्रयोगशाला से लेकर किसानों तक, खेतों तक उस तकनीक को पहुंचाना ये कितना बड़ा कदम रहा है और कैसे इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया है संस्थान द्वारा, इस पर भी आप प्रकाश डालें। और क्योंकि हम इन दिनों बहुत कुछ ऐसा भी सुन रहे हैं कि भविष्य में जो बीज की तकनीक है वो बिल्कुल बदलने वाली है और जो प्रयोगशालाओं में इस पर शोध भी हो रहे हैं, और हमने पहले भी देखा है कि जो एक जैविक प्रयोग होते रहे हैं फसलों को लेकर, बीजों को लेकर, ये तकनीकें किसानों तक पहुंचे, धरातल पर इनका क्रियान्वयन हो, तो कैसे संस्थान ने बड़ी भूमिका निभाई है इसमें?
0: बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं ये बताना चाहता हूं कि डिस्कवरी और डिलीवरी आइसोलेशन में नहीं हो सकती, और हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो पूरा फोकस है वो है डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम। और डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा फोकस है डिमांड ड्रिवन रिसर्च। हम रिसर्च वो करें जिसकी किसान को जरूरत है, जो किसान मांगता है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में वन वे ट्रैफिक नहीं करते हुए ये हम पार्टिसिपेटरी जो काम करते हैं कि टेक्नोलॉजी लैब में बनती है लेकिन उसका पार्टिसिपेटरी वैलिडेशन इवेल्युएशन जो हमारे प्रोग्राम्स हैं केवीकेज के थ्रू एक्सटेंशन के थ्रू उस पे काफी काम करते हैं। और डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके संज्ञान में होगा कि पिछले साल मई जून में हमने एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया। हमारे वैज्ञानिकों की 2000 से ज्यादा 2100 से ज्यादा टीम 15 दिन तक खेतों में थी पूरे देश में 730 लगभग जिलों में, और 15 दिन में हमने लगभग 1,35,00,000 किसानों से सीधा संवाद किया। ना उस संवाद से एक तो है कि टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंचाएं, लेकिन दूसरा तथ्य उसका ये भी था कि हम किसान की डिमांड साइड को समझें, और उसी को लेते हुए हमने हमारी रिसर्च में क्या हमें नया करना है, किस चीज की डिमांड है वो कर रहे हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लैब टू लैंड का जो फोकस है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून के बीच में चलाया। देश में लगभग 1,650 से ज्यादा टीम उस पे फिर जुटी, और उसमें सिर्फ ICAR की बात नहीं है, हमारा फोकस है एक देश एक कृषि एक टीम, और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हम कृषि विश्वविद्यालय स्टेट्स का जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स का जो अमला है वो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ICAR हमारे इंस्टीट्यूशन सभी लोगों को यूनिवर्सिटीज को मिला के और इसके ऊपर काम किया, क्योंकि इस साल विशेष परिस्थितियां रही है और उसमें खेत बचाओ में यही है कि फर्टिलाइजर का जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है उसको कैसे ठीक किया, बैलेंस कैसे करें, तो उस पे जागरूकता, प्राकृतिक खेती पे देश का बहुत बड़ा एक फोकस है तो उसकी जानकारी किसानों को वो पहुंचाएं। उसके अलावा जो एलनीनो का इफेक्ट है तो कौन सा वैरायटीज, कौन सा सीड, कौन सी क्रॉप कहां पे, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वो हम उसके अलावा ये भी कर रहे हैं कि जैसे मैं एलनीनो की बात करूं तो हमने 315 जिले जो वल्नरेबल देश के हैं उनके लिए कंटिजेंसी प्लान बना के सारे स्टेट्स के राज्यों के साथ में डिस्कशन करके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको पहुंचाया है। तो हम एक्सटेंशन की दिशा में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारा एक पूरा एक्सटेंशन का डिवीजन है।
1: क्योंकि आपने एलनीनो की चर्चा की, उसी से मेरे मन में सवाल आया कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक चुनौती तो ये रहेगी पूरी दुनिया के सामने कि दूध या खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने रहे, हमारे देश में भी एक इतनी बड़ी जनसंख्या की पेट भरने के लिए दूध उत्पादन की एक बहुत बड़ी टारगेट रहेगा, तो ऐसे में जो फसलें और जलवायु परिवर्तन भी एक चुनौती है, तो क्लाइमेट रेजिलियंट फसलें हों, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो, इन सब की चुनौतियों को लेकर क्या लक्ष्य रखता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने सामने?
0: मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी हमारा फोकस है ये क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर ही है, और जो आज भी जैसे हमने वैरायटीज रिलीज की है तो 94% वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज है। हमारा सारा का सारा फोकस क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने पे है, और उसी का परिणाम है कि हमारा प्रोडक्शन क्लाइमेट की रिस्क होते हुए भी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। लेकिन मैं क्रॉप वैरायटीज की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे लाइव स्टॉक की ब्रीड हो, चाहे फिश की ब्रीड हो, सभी में क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। नाउ ये तो हो गया ब्रीडिंग वैरायटीज ब्रीड्स की बात, लेकिन हमारा बहुत बड़ा फोकस क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर पे है। यदि आप देखें तो पिछले 15-20 साल में यदि रेनफेड एग्रीकल्चर जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है क्लाइमेट चेंज के कारण से, जहां रेनफॉल की अनसर्टेनिटी होती है, डिग्रेडेड लैंड होती है, वहां पे हमने प्रोडक्टिविटी गेन्स इवन इरिगेटेड एरिया की तुलना में, मैं कंपेरेटिव गेन्स की बात कर रहा हूं, वो ज्यादा किए हैं, तो हमारी क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ी है। क्योंकि रेनफेड एरियाज में वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो हमारे सारे एफर्ट्स हैं कि सोयल का इरोजन कम हो, वाटर का कंजर्वेशन हो, सोयल हेल्थ इंप्रूव हो। अब ये मृदा का स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक इश्यू है।
1: और आखिर में आपसे मैं यही समझना चाहूंगा डॉक्टर मांगेलाल, सस्टेनेबल खेती के मॉडल को लेकर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें हम आपसे थोड़ी सी चर्चा ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी करना चाहेंगे, जिसमें जो खादों का प्रयोग है वो सस्टेनेबल तरीके से हो और मिट्टी भी स्वस्थ रहे। तो ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, इसको लेकर भी कितने प्रयास हैं और कैसे इस विषय को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है संस्थान की ओर से?
0: फूड इज मेडिसिन, उस लाइन पे हम काम कर रहे हैं। और हाल ही में हमने ICAR और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया है, सेहत स्टैंड फॉर साइंस एक्सलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत है। और उसमें जो हमारी बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज जो न्यूट्रिशियस होती है उस पे फोकस है, उसका वो क्लिनिकल ट्रायल करके उसको हम आगे कैसे लेके जाएं। लेकिन उसके अलावा जो छोटे किसान है, हमारे जो छोटा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ फसल ही नहीं हो, उसमें हॉर्टिकल्चर भी हो, उसमें लाइव स्टॉक भी हो, उसमें सेकेंडरी एग्रीकल्चर की एंटरप्राइजेज भी हो, सारी होगी, तो एक तो किसान की आमदनी बढ़ेगी, जो क्लाइमेटिक शॉक्स हैं उनसे रेजिलियंस बढ़ेगा, लेकिन ये वो डाइवर्सिफाइड फूड होगा तो सस्टेनेबल एंड हेल्थी डाइट जो कंट्रीब्यूट कर देगा तो वो ह्यूमन हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो फूड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के बहुत ज्यादा हैं। एक तो फूड और एक हमारी लाइफ स्टाइल, वो दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो हम एग्रीकल्चर को हेल्थ के साथ में कनेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं जिसमें ये सारी की सारी चीजें आती है। और इन सब चीजों के पीछे यदि हमारी मृदा स्वस्थ रहेगी, सॉयल हेल्थ हमारा फाउंडेशन है, तो हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे, पौधे स्वस्थ रहेंगे तो उसमें जो दाने आएंगे उसको खाके मानव स्वस्थ रहेगा, उसका चारा खाके पशु स्वस्थ रहेगा, और यदि सारा स्वस्थ रहेगा तो हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। और इसलिए भारत सरकार का एक कमीशन है वन हेल्थ, तो ये सारा वन हेल्थ की तरफ कंट्रीब्यूट करता है और हम इसी चीज को लेके आगे बढ़ा।
1: जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर मांगीलाल जाट, आप कार्यक्रम में जुड़े,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: Countrywide.

0: श्रोताओं, अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड इनसाइट्स। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, रात्रि के 10 बजे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं पावस कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं सर्वश्री सोम ठाकुर, उमाकांत शर्मा, ललित कुमार बंसल, और इस कवि गोष्ठी का संचालन कर रही हैं डॉक्टर मंजुलता शर्मा।
1: नमस्कार, ये आगरा आकाशवाणी का केंद्र है। यहाँ पर पावस ऋतु को लेकर एक काव्य गोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ कवि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नव गीतों से लोगों के बीच में एक नया उद्बोधन देने वाले आदरणीय डॉक्टर सोम ठाकुर जी हैं। कुमार ललित, जो अपनी ललित काव्य कृतियों से जाने जाते हैं, आगरा से हैं, और उमाकांत जी हमारे बीच में एटा से पधारे हैं, और मैं स्वयं मंजुलता शर्मा आपके बीच में काव्य पाठ के लिए उपस्थित हूं। इस कविता का प्रारंभ, इस गोष्ठी का प्रारंभ हम कुमार ललित की उन कविताओं से करेंगे जो आपको अंदर तक भिगो जाएंगी उस पावस ऋतु में। दो पंक्तियां कहूंगी पहले पावस ऋतु पर। आ गई पावस ऋतु, छा गई पावस ऋतु, आ गई पावस ऋतु, छा गई पावस ऋतु, पहन करके हरित साड़ी, पहन करके हरित साड़ी, बूंद की ये पायलें, पहन करके हरित साड़ी, बूंद की ये पायलें, एक दुल्हन की तरह शर्मा गई पावस ऋतु, एक दुल्हन की तरह शर्मा गई पावस ऋतु। तो वो पावस ऋतु आ गई है, और कुमार ललित जी से कहूंगी वो अगवानी करें उसका। तो कुमार ललित जी, आप आइए और अपनी कविता पाठ कीजिए।
2: बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर मंजुलता शर्मा जी। पावस ऋतु पर आधारित इस काव्य गोष्ठी में मेरा सौभाग्य है कि मुझे आदरणीय सोम दादा के श्री चरणों में काव्य पाठ करने का सौभाग्य मिल रहा है। आइए कुछ पंक्तियों से शुरुआत करता हूं।
3: स्वागत है, पढ़िएगा।
1: स्वागत स्वागत।
4: अंबर की बारिश में दुनिया भीग रही, अंबर की बारिश में दुनिया भीग रही, अंबर की बारिश में दुनिया भीग रही, पर आंखों की बारिश कौन समझता है। अंबर की बारिश में दुनिया भीग रही, पर आंखों की बारिश कौन समझता है।

सकता है अंतर मन की भाषा, जो भाषा से ज्यादा मौन समझता है वो पढ़ सकता है अंतर मन की भाषा, जो भाषा से ज्यादा मौन समझता है। तो आइए पावस के मौन को भी समझें और बूंदों की छमछम को भी समझें, दोनों ही बातों को कहने की कोशिश की है। दो तीन दोहे निवेदित कर रहा हूँ, सुनिएगा। धरती जब होने लगी गर्मी

0: घंटों छत पर भीगना, घंटों छत पर भीगना, आंखों से
1: वाह
0: संवाद।
1: वाह
0: घंटों छत पर
1: भीगना,
0: भीगना,
1: वाह
0: आंखों से संवाद। तो जब याद आती है छत पर भीगने की और आंखों से संवाद की, तो एक गीत जन्म लेता है। छोटा सा एक गीत निवेदित कर रहा हूं
1: स्वागत।
0: अपने काव्य पाठ के अंतिम क्रम में। बादलों ने ढक लिया है दिन,
1: बादलों ने ढक लिया है
0: बादलों
1: दिन,
0: ने
1: ढक
0: ढक
1: लिया है।
0: लिया।

0: एहसास
1: बहुत बढ़िया,
0: होता
1: बहुत
0: है
1: सुंदर,
0: आज तुम भी रुक न
1: देह का एहसास
0: पाओगी,
1: होता है,
0: देह को
1: देह
0: एहसास
1: को
0: होता है।

0: पास हो प्रियतम हमारे तो फिर न कोई पास होता
1: क्या
0: है।
1: बात है,
2: बहुत
1: पास

0: थी,
1: वाह
0: खिलखिलाकर होठ हंसते थे, किंतु आंखें खूब रोती
1: क्या बात है,
0: थी।
1: वाह वाह
0: जी सको

खास होता है। बादलों ने ढक लिया है दिन, रात का आभास होता।

0: बहुत
1: वाह
0: सुंदर,
1: वाह
0: बहुत सुंदर।
1: बहुत
0: कुमार
1: बढ़िया।
0: ललित, जैसा आपका नाम है उतने ही लालित्यपूर्ण रचना आपने प्रस्तुत की यहाँ। ये आभास अपने क्रम में फिर आगे बढ़े, उसी क्रम में मैं उमाकांत जी को निमंत्रित कर रही हूँ। आप एटा से पधारे हैं और इन चार पंक्तियों से आपका आह्वान करती हूँ। आज फिर से शब्द को सहला रहा हूँ, आज फिर से शब्द को सहला रहा हूँ, मन की लोरी अर्थ से बहला रहा हूँ, मन की लोरी अर्थ से बहला रहा हूँ, गीत मेरे यूं सदा आवाज देते, आज पावस ऋतु में नहला रहा हूँ,
1: वाह वाह
0: आज पावस ऋतु में नहला रहा
1: स्वागत
0: हूँ।
1: है भाई साहब।
0: स्वागत है आपका।
1: मुझे

मन उपवन में कलियों जैसे खिल जाओ तुम, भूले भटके इस जीवन की राहों में मिल जाओ तुम। आज मेरे मन उपवन में

0: आओ
1: क्या बात,
0: तुम
1: वाह
0: और बरसों से यह प्यासा चातक आस लगाए बैठा है,
1: वाह,
0: अपर शशि अपनी

0: वाह वाह,
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: सुंदर,
1: सुंदर, बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर।
0: प्यारा गीत पढ़ रहे थे आदरणीय उमाकांत शर्मा जी एटा से। और आइए एक ऐसे स्वर को आवाज दें जो हम सभी को बहुत ही प्यार से आमंत्रित कर रही थी, पावस की एक प्यारी सी घटा बनकर जो इस गोष्ठी में उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए, आदरणीय डॉक्टर मंजूलता शर्मा जी को, इन पंक्तियों के साथ कि तुम निकलकर आ गई घर से, तुम निकलकर आ गई घर से, चल पड़े ज्यों बूंद अंबर से।
1: बहुत
0: तुम
1: बढ़िया,
0: निकलकर आ गई घर
1: वाह
0: से,
1: वाह वाह
0: चल पड़े ज्यों बूंद अंबर से। आइए स्वागत है डॉक्टर मंजूलता शर्मा जी का।
1: वाह, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार ललित जी इस आमंत्रण के लिए। दो छोटी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत
0: जी हाँ,
1: करूंगी।
0: प्रस्तुत कीजिए।
1: हाँ जी, आज फिर से घिर रही पावस ऋतु की बदलियां,
0: वाह, आज
1: आज
0: फिर
1: फिर
0: से
1: से घिर
0: घर
1: रही
0: रहे।
1: पावस ऋतु की बदलियां, आंख से क्यों अश्रु बनकर गिर रही हैं बदलियां,
0: आह क्या
1: आंख
0: बात
1: से
0: है,
1: क्यों अश्रु बनकर गिर रही हैं बदलियां। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं सदा, जो कह रहे थे रात दिन।
0: क्या बात है,
1: हम
0: वाह वाह,
1: तुम्हारे हैं सदा,
0: बोलिए।
1: जो कह रहे थे रात दिन। वे हुए गिरगिट अचानक, हंस पड़ी तब
0: क्या
1: बदलियां।
0: कहने, बहुत
1: वे
0: अच्छा है,
1: हुए गिरगिट अचानक,
0: हंस पड़ी
1: हंस
0: तब
1: पड़ी तब
0: बदलिया,
1: बदलियां। आज फिर से घिर रही पावस ऋतु की
0: बहुत
1: बदलियां।
0: अच्छा है।
1: आए वो बैठे मगर कुछ लग रहे थे अनमने,
0: हाँ
1: आए वो बैठे मगर कुछ लग रहे थे अनमने, लेके आए थे उल्हाने, रह गई चुप बदलियां।
0: हाँ बहुत अच्छा
1: लेके
0: है,
1: आए थे
0: वाह वाह वाह, क्या
1: उल्हाने, रह
0: कहने।
1: गई चुप बदलियां। आज फिर से घिर रही पावस ऋतु की बदलियां। होठ पर मुस्कान, दिल में द्वेष का तूफान था। होठ पे
0: वाह, मुस्कान
1: मुस्कान,
0: दिल
1: दिल
0: में
1: में द्वेष का तूफान था।
0: तूफान
1: नाव डूबी थी भंवर में, कह
0: था।
1: न पाई
0: वाह
1: बदलियां।
0: वाह, क्या
1: नाव
0: कहने,
1: डूबी थी
0: वाह
1: भंवर
0: वाह
1: में,
0: वाह,
1: कह न पाई बदलियां। आज फिर से घिर रही पावस ऋतु की बदलियां।
0: वाह वाह,
1: प्रखर होकर के सदा सूरज ने रास्ते तय किए,
0: वाह
1: प्रखर
0: वाह,
1: होकर के सदा सूरज ने रास्ते तय किए। आज उसके तेज को ढकने चली हैं
0: क्या
1: बदलियां,
0: कहने, क्या
1: आज
0: कहने,
1: उसके तेज
0: वाह वाह,
1: को ढकने चली हैं बदलियां। आज फिर से घिर रही पावस ऋतु की बदलियां।
0: वाह,
1: चार कंधों के सफर ने द्वार पर दी दस्तकें,
0: क्या कहने,
1: चार कंधों के सफर ने द्वार पर दी दस्तकें। कर ना पाए हाय हम कुछ हाथ मलती बदलियां,
0: बहुत अच्छा
1: वाह
0: है, वाह वाह,
1: कर ना पाए हाय हम कुछ
0: हाथ
1: हाथ मलती बदलियां। आज फिर से घिर रही पावस ऋतु की
0: बहुत
1: बदलियां।
0: सुंदर,
1: चमक बिजली सी रही, चमक बिजली सी रही और सफल जीवन मेघ सा,
0: क्या
1: चमक
0: बात है,
1: बिजली सी रही और सफल जीवन मेघ सा। हम रहें या ना रहें पर बिलखती अब बिजलियां,
0: हाँ हाँ वाह
1: हम
0: वाह वाह
1: रहें
0: वाह
1: या
0: वाह,
1: ना
0: क्या
1: रहें पर बिलखती अब बदलियां। आज फिर से घिर रही पावस ऋतु की बदलियां, आंख से क्यों अश्रु बनकर गिर रही हैं
0: कहने,
1: बदलियां।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: एक और
0: बहुत
1: रचना है,
0: जी
1: ये
0: जी
1: मेरे अपने अनुभूति जन्य रचना है कि हरियाली तीज पर एक वृद्धावस्था में एक महिला क्या सोच पाती है।
0: जी जी
1: याद आते हैं वो दिन, हर पल हर क्षण,
0: याद
1: याद
0: आते
1: आते हैं
0: हैं
1: वो दिन, हर
0: हर
1: पल
0: पल हर
1: हर
0: क्षण।
1: क्षण, जब कभी मेरी मुंडेर पर कौआ आके बैठता था, जब कभी मेरी मुंडेर पर कौआ आ बैठता था तो लगता था मन भावन, क्योंकि जरूर मेरा भाई लेने आएगा, आ गया है सावन।
0: वाह
1: क्योंकि
0: वाह, क्या
1: जरूर
0: बात
1: मेरा
0: है,
1: भाई लेने आएगा, आ गया है सावन। माँ बस भेजती ही होगी, माँ बस भेजती ही होगी, आज या कल। तीज आ रही है, मन होता था बहुत विकल,
0: वाह,
1: तीज आ रही है, मन होता था बहुत विकल, परंतु अब सब कुछ छूट गया है, लगता है हमारा वो बचपन हमसे रूठ गया
0: क्या
1: है।
0: कहने, वाह वाह वाह,
1: परंतु अब सब कुछ छूट गया है, लगता है वो बचपन हमसे रूठ गया है। माँ के हाथों बने पकवानों की

0: खुशबू आज भी मन में बसी है। माँ के हाथों बने पकवानों की खुशबू आज भी मन में बसी है। झूले की ऊंची उड़ान जिंदगी जैसे वहीं रुकी है। झूले की ऊंची उड़ान जिंदगी जैसे वहीं रुकी है। बात ये नहीं सावन अब भी है। बात ये नहीं सावन अब भी है। निमंत्रण अब भी है, मायका अब भी है। सावन अब भी है, निमंत्रण अब भी है, मायका अब भी है, परंतु उसमें मनोहार नहीं। बस होता है यही कहना, बुआ जी आ जाओ खाना यहीं खा लेना। बुआ जी आ जाओ खाना यहीं खा लेना। अब हाथों की मेहंदी बालों में आ गई है।
1: बहुत अच्छा है।
0: अब हाथों की मेहंदी बालों में आ गई है। चेहरे की सलवटें गालों पे छा गई है। आंखों में आज भी सावन है।
1: क्या बात,
0: आंखों में आज भी सावन है। दादी माँ होकर भी बिटिया बन जाने का मन है।
1: क्या बात,
0: दादी माँ होकर भी बिटिया बन जाने का मन है। अब ना तो मायका है ना ससुराल। अब तो ना मायका है ना ससुराल, ना दुलार है ना जिम्मेदारियों का जाल। अपने ही सूने घर में हंस रो लेते हैं। अपने ही सूने घर में हंस रो लेते हैं। ना जाने कितने सावन बिन बारिश के ही बोलेते हैं। ना जाने कितने सावन बिन बारिश के ही बोलेते हैं। अब तो कोए को मुडेर पर बैठा देखकर भी कोई भाव नहीं जगता है। अब तो कोए को मुडेर पर देखकर भी कोई भाव नहीं जगता है। क्योंकि ना डाकिया ना बारिश ना ही बूंदों की रिमझिम का कोई अर्थ लगता है। क्योंकि ना डाकिया ना बारिश ना ही बूंदों की रिमझिम का कोई अर्थ लगता है। एक अकेलेपन के साथ उम्र का हर वर्ष रीत रहा है। एक अकेलेपन के साथ उम्र का हर वर्ष रीत रहा है। सच पूछो बस उन्हीं बीती यादों में ये सावन बीत रहा है। सच पूछो तो उन्हीं बीती यादों में ये सावन बीत रहा है। इन्हीं पंक्तियों के बाद मैं यहाँ पर हमारे सबसे वरिष्ठ कवि, जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप में स्वयं एक परिचय है, एक विधा है, तो मैं आज उन्हें यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे यहाँ आए और अपनी रचना पढ़ें। उससे पूर्व उनके सम्मान में मैं ये चार पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहती हूं कि उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो सतही नहीं हैं, वो डूब कर लिखी हुई रचनाएं हैं, इसलिए वो हम लोगों के लिए कण्व हैं, ऋषि कण्व जैसे हैं। कि डूबना आकंठ प्राणों का जरूरी है। डूबना आकंठ प्राणों का जरूरी है। केवल पांव धोने के लिए संगम नहीं होते। केवल पांव धोने के लिए संगम नहीं होते। और कल्पना दुष्यंत की प्रतिपल भटकती है। कल्पना दुष्यंत की प्रतिपल भटकती है। क्योंकि हर कथा में कण्व के आश्रम नहीं होते। क्योंकि हर कथा में कण्व के आश्रम नहीं होते। ऐसे ओजस्वी और प्रखर कवि आदरणीय सोम ठाकुर जी को मैं आवाज दे रही हूँ कि वो मंच पर आए और काव्य गोष्ठी को ऊंचाइयां प्रदान करें। आदरणीय सोम ठाकुर जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मंजुलता शर्मा, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ।
0: निवेदन है,
2: निवेदन है

रात झमाझम अमराई में झूले भी खूब पड़े, आम्र वृक्ष भीग गए खड़े खड़े, दिन में भी हुआ आज रातों का भ्रम, भीगी है अमृत में राजधम खूब।

0: वाह
1: भीगी
0: वाह
1: है अमृत में रात
0: क्या
1: झमाझम,
0: बात है,
1: तप तप कर गर्म हुए घबराए दिन,
0: वाह
1: सहे नहीं जाते अब दिन के
0: वाह
1: पलछिन,
0: वाह
1: ऋतुओं का कैसा है सुंदर संगम,
0: वाह वाह वाह वाह
1: भीगी है अमृत में रात झमाझम। और
0: हाँ
1: एक गीत और प्रस्तुत है, निवेदन किया है।
0: जीता था स्वागत।
1: देह हुई फागुन तो क्या हुआ,
0: हाँ
1: देह
0: हुई
1: हुई
0: फागुन
1: फागुन तो क्या हुआ, रे मितवा मनवा।

0: क्या
1: मनवा
0: बात है,
1: तो
0: क्या बात है,
1: सावन
0: क्या बात
1: सावन
0: है।
1: रहा, बस इतना ही धर्म कर्म भाया, अपनाया जो जीवन भर अपनाया,
0: वाह
1: हमको तो सदा प्रेम मंदिर का, हर रज कन चंदन चंदन
0: वाह
1: रहा, रे
0: वाह,
1: मितवा मन अप मनवा तो सावन सावन रहा। अंत में
0: जी।
1: कौन रखे याद इस कहानी को, कहाँ मिले शरण आ

0: रहा रे मितवा, मनवा तो सावन सावन रहा, देह हुई फागुन तो क्या हुआ।
1: बहुत सुंदर, एक और रचना
2: आशीर्वाद, मन नहीं भरता, मन करता है और सुनते रहे दादा।
0: एक रचना और मैं निवेदित है। रिम झिम के फूल झरे, रिम झिम के फूल झरे रात से, बूंदों के गुच्छे मारे मेघा। रिम झिम के फूल झरे रात से, कल तक देखे हैं हर खेत में, अनुभीगे वे दिन मन मार कर। बिना बात अम्मा भी खुश हुई, हल बैलों की नजर उतार कर। उमस उमस उम्र कैद काट कर, जाने क्या सगुन बिचारे मेघा। रिम झिम के फूल झरे रात से, पहली बौछारों भीगी धरा, दाह बुझा न दिया की देह का। घुल घुल कर

0: हरे और निवेदन किया है, लहराई जलधारा इस तरह रात रात झूलों के नाम है, घेर घेर कर गहराई घनघटा लगता दिन दोपहर ही शाम है, दिशा दिशा झूम झूम घूम कर, दिशा दिशा झूम झूम घूम कर सागर का कर्ज उतारे मेघा।
1: क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह वाह,
0: रिमझिम के फूल झरे रात। अंत में क्षितिजों तक इंद्र धनक बन, क्षितिजों तक इंद्र धन बना, कभी उभरे है कभी स्वर्ग चित्र सा, बार बार किरण घुले रंग में, महके कुछ धरती के इत्र सा, खोजे जाने किसको जन्म से, जाने क्या नाम पुकारे मेघा, बूंदों के गुच्छे मारे मेघा।
2: तो इतनी सुंदर रचनाओं के साथ में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मेघ ऋतु स्वयं उतर आई है लहराती बल खाती। तो कुमार ललित से हम कहेंगे कि एक रचना वो और सुनाएं हमारे बीच में, इस वर्षा ऋतु की अगवानी फिर से करें।
3: बहुत बहुत आभार। आइए, जैसा कि चित्र बना ही दिया है आदरणीय दादा ने, उसी चित्र को विस्तार देते हुए
2: स्वागत
3: और गजल के कुछ शेर निवेदित कर रहा हूं सुनेगा।
2: स्वागत।
0: भीग रहा संसार
3: झमाझम बारिश में,
0: क्या बात,
3: भीग रहा संसार झमाझम बारिश में, तुम भी नाचो यार
2: झमाझम बारिश में,
3: भीग रहा संसार झमाझम बारिश में, तुम भी नाचो यार झमाझम बारिश में, दिल के छेड़ो तार झमाझम बारिश में, आओ कर लो प्यार झमाझम बारिश में। और ये शेर खास दादा सुनिएगा कि सेंदूर बिंदिया काजल सब पानी पानी,
2: वाह,
3: सेंदूर बिंदिया काजल सब पानी पानी, बरस रहा श्रृंगार झमाझम बारिश, बरस रहा श्रृंगार झमाझम बारिश में, और हाथ थामकर बीबी का टीवी देखो, हाथ थामकर बीबी का टीवी देखो, बंद हुआ बाजार झमाझम बारिश,
2: बहुत
3: बंद हुआ बाजार झमाझम बारिश में। और एक और शेर, एक चित्र देखें कि बाल खोल

0: कर पगड़ी को खूंटी पर टांग,
1: बाल
0: खोलकर
1: पगड़ी
0: को खूंटी पर टांग, नाच रहे सरदार झमाझम बारिश
2: क्या बात है, आपने
0: बाल खोलकर पगड़ी को खूंटी पर टांग, नाच रहे सरदार झमाझम बारिश में, चाय पकोड़े टीवी बीबी गीत गजल, चाय पकोड़े टीवी बीबी गीत गजल, सजा हुआ दरबार झमाझम
2: बारिश।
0: और ये शेर देखें कि तुम भी आ जाओ छत पर होकर तैयार, तुम भी आ जाओ होकर छत पर तैयार, हम भी हैं तैयार झमाझम बारिश
2: क्या
0: में
2: बात है?
0: हम भी हैं तैयार झमाझम बारिश में, लेकिन झमाझम बारिश में सब कुछ अच्छा ही नहीं है, क्या विडंबना है। एक चित्र रखता हूँ, सुनिएगा कि चोरी हत्या रेप रहजनी बमबारी,
1: क्या बात है,
0: चोरी हत्या रेप रहजनी बमबारी, रोता है अखबार झमाझम बारिश में। और एक और शेर की, फिर कच्चा घर बैठ गया है दीनू का, फिर कच्चा घर बैठ गया है दीनू का, है गरीब लाचार झमाझम बारिश में, है गरीब लाचार झमाझम बारिश में, और सड़कें सब तब्दील हो गई गड्ढों में, बैठ गई सरकार झमाझम बारिश में। और अंतिम शेर पढ़ता हूँ कि अबके एक हो जाएं राम रहीम सभी, अबके एक हो जाएं राम रहीम सभी, गिर जाए दीवार झमाझम बारिश
2: बहुत बढ़िया,
0: दिल के छेड़ उतार झमाझम बारिश,
2: बहुत आनंद आया,
0: आओ कर लो प्यार
2: झमाझम बारिश में। और इस झमाझम बारिश में ये संगोष्ठी संपन्न हुई है हमारे बीच, काव्य गोष्ठी बहुत आनंद प्रद रही, और ये आगरा आकाशवाणी के इस केंद्र पर आयोजित पावस ऋतु की बहुत ही आनंदित गोष्ठी थी। इसमें हमारे बीच में थे कुमार ललित जो आपको अभी बारिश में भिगो रहे थे, उमाकांत शर्मा जी एटा से जिन्होंने सुंदर प्रेम गीत प्रस्तुत किया, और आदरणीय सोम ठाकुर जी जिन्होंने सुंदर बारिश के बिंब प्रतिबिंब भाव से मन विभोर कर दिया, और मैं स्वयं मंजुलता शर्मा आपको पहुंचा रही थी बारिश के उन किनारों तक। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे पावस कवि गोष्ठी, प्रतिभागी कवि थे सर्वश्री सोम ठाकुर, उमाकांत शर्मा, ललित कुमार बंसल, और इस कवि गोष्ठी का संचालन कर रही थी मंजुलता शर्मा। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, रात्रि के 10:30 हुए हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर सत्यभान शर्मा का राग मल्हार में धमार गायन।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सत्यभान शर्मा का राग मल्हार में धमार गायन। इसके साथ ही कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए।